ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण

0: के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का एक और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानशेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आरंभ में सुनिए समूह स्वर में ये मात्र वंदना। रचना है वीरेंद्र मिश्रा की।

समूह स्वर में मातृवंदना अभी आपने सुनी। लीजिए अर्चना कार्यक्रम में अब सुनिए उषा उत्थुप के स्वर में हलीम शब्बीर की रचना।

उषा उत्थुप के स्वर में अभी आपने ये मसीही गीत सुना, और आइए अब सुनते हैं शर्मा बंधुओं के स्वर में ये भजन।

शर्मा बंधुओं के स्वर में अभी आपने पंडित रामानंद शर्मा की लिखी ये रचना सुनी। और आइए अर्चना कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं राजेंद्र काचरू की गाई ये भक्ति रचना।

राजेंद्र काछरू की गाई इस भक्ति रचना के साथ ही कार्यक्रम अर्चना अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:25 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण में सभी श्रोताओं का स्वागत है और अब से थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

प्रादेशिक समाचार सुबह 7:10 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे हमारी साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। सुबह 8:00 समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत बाल सभा। नन्हे श्रोताओं का मन पसंद कार्यक्रम आप सुनेंगे आज सुबह 8:30 पर। और आपको बता दें हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ऑथेंटिक पब्लिक स्कूल ग्राम बरौदा सागर। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूं। शाम 6:30 पर सुनेगा सदाबहार फिल्मी नगमे। शाम 6:45 पर आप सुनेंगे बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। शाम 7:20 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक रंग और शाम 7:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। रात्रि 8:15 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम डगर विकास की। इस कार्यक्रम का विषय होगा जल जीवन मिशन जो कि आकाशवाणी इंदौर का योगदान होगा। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी और रात्रि 9:00 आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा का समापन होगा। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ। गायक स्वर है अनूप जलोटा का।

पक्षीराज गरुड़ को श्री रामचरित तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनाने वाले पुण्यात्मा काकभुशुंड के चरित्र में एक लक्षण सब ही मानप्रद आपु अमाना के दर्शन इस प्रसंग में होते हैं, जहां वे कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त और किसका भजन किया जाए, जिन्होंने मुझ जैसे वज्र मूर्ख पर इतना स्नेह बरसाया। पक्षियों में सबसे नीच

सब प्रकार से अपवित्र क्या मैं प्रभु के भजन का अधिकारी हूँ? किंतु मुझ जैसे अधम अपवित्र को भी प्रभु ने जगत को पवित्र कर देने वाला प्रसिद्ध कर दिया। और एक सच्चे संत की भांति ही काकभुशुंडी गरुड़ के प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने उनसे ये अति पवित्र और पतित पावनी कथा पूछी और सुनी। कहते हैं, मैं धन्य हूँ जो श्री राम ने मुझे अपना जाना और आप जैसे साधु की संगति का सुअवसर प्रदान किया। जिनके चरण शिव तथा ब्रह्मा द्वारा पूजे जाते हैं, उनकी दया मुझ जैसे अकिंचन को प्राप्त हुई, ये उस भक्त वत्सल की मृदुलता ही तो है। साधक, सिद्ध, जीवन मुक्त, विरक्त, कवि, विद्वान, कर्मयोगी, सन्यासी, कोई भी भगवत भजन किए बिना भव सागर पार नहीं कर सकता।

गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं आशा भोसले मन्ना डे और साथियों की आवाजों में बूट पॉलिश फिल्म से गीत, शब्द रचना दीपक की, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: Come on boys, let's go practice.
1: अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया।
0: अरे तो बैंक को कंप्लेन करना।
1: बैंक को लिखे एक महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं।
2: तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो।
3: रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम फूले बिसरे गीत में आइए आप सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आन फिल्म का ये गीत, जो लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीत है नौशाद का।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: कार्यक्रम फूले बिसरे गीत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है, और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं आशा भोसले और चितलकर की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, संगीत श्री रामचंद्र का, फिल्म का नाम है बारिश।

0: रखा। रोक सको तो रोको हमको, रोक सको तो रोको हमको, हम तो नैनाचार करेगा
1: नहीं डरेगा,
0: नहीं डरेगा, हम तो जाने प्यार करेगा, प्यार करेगा, प्यार करेगा।

0: अभी आपने बारिश फिल्म से ये गीत सुना और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है।
1: मैं सागर हूँ, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से।
2: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब आप संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं संप्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचनेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य ईशा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति सन्धिं सुदृढयितुं चर्चाम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरन्तर प्रगतेः विषये प्रधानमन्त्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शान्ति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च सम्भाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शान्तिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतृणां एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह कनाडा देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मंत्रालयेन सूचितं यत् श्री गोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्य सूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-2000 वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतं इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नई स्थिते ICF इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं संबोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तर प्रदेशाय पूर्वीय मध्यप्रदेशाय विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी संचेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तर पश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपय क्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि 7 दिवसपर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वन्द्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां 71 शतधावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 7 क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं मुम्बय्याम् अपराह्णे 3:30 मुम्बई इण्डियन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वन्द्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। सुबह सुबह सुन रहे सभी श्रोता स्वीकार करें हमारा नमस्कार। श्रोताओं, एक दार्शनिक ने कहा है कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता। कुछ नहीं बोलने और कुछ नहीं सोचने से आदमी मर जाता है। इस विचार के अनुसार मानव शरीर जब तक धरती पर चेतन अवस्था में रहता है तब तक उसका मस्तिष्क कुछ ना कुछ सोचता रहता है, और जब दिमाग में विचार चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो अभिव्यक्त भी होते हैं उस इंसान की जुबान से। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो सिर्फ सोचता हो। यदि वो सोचेगा तो उन बातों को कहेगा भी, और अगर कोई इंसान कुछ कह रहा है तो उसके पीछे सतत कोई विचार काम कर रहा होता है। और कुछ सोचने या

कुछ कहने से आशय सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमने कुछ भी सोचा और तुरंत कह दिया। दरअसल हम जो सोचते हैं उस सोच के पीछे भी वर्षों पुराने वो विचार होते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे परिजनों ने और हमारे समाज ने हमें दिए हैं। इन्हीं विचारों को अपनी पूंजी मानकर हम इन्हें दोहराते हैं और फिर ये बातें हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए रवायत बन जाती हैं, पवित्र परंपराएं कहलाती हैं। और फिर उन रवायतों को छोड़ना, उन परंपराओं को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये परंपराएं हमारे दिल, दिमाग और यहाँ तक कि हमारी नसों में बहने लगती हैं। अगर हम बहुत गहराई में जाकर सोचें कि हम अपने लिए जी रहे हैं या उन परंपराओं के लिए जो दुनिया और समाज ने हमारे लिए बनाकर रखी हैं, क्या हम वाकई में वो इंसान हैं जिसे प्रकृति ने अपने तरीके से जन्मा था? अगर हम वाकई वो इंसान हैं जिसे प्रकृति ने अपनी तरह से जन्मा था, तो हमें प्रकृति के ही नियमों का अनुकरण करना चाहिए। और प्रकृति एक ही चीज सिखाती है, दूसरों को देना, दूसरों की खुशियों में खुश होना। पर कभी कभी हम देखा सीखी में उन लोगों का अनुकरण करने लगते हैं जिन लोगों ने जीवन में तमाम सुख सुविधाएं अर्जित की। क्या दुनिया की कामयाबी ही एकमात्र मापदंड है सफलता का? क्या वो लोग जो पैसा नहीं कमा पाए या फिर जिन्होंने पैसा कमाना एक तरफ रख दिया और मानवता के लिए बहुत कुछ किया, क्या वो सच्चे अर्थों में कामयाब नहीं है? ऐसे अनगिनत प्रश्न हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और इन्हीं प्रश्नों को हम बार बार दोहराते रहते हैं। कुछ बातें उम्र के साथ खारिज हो जाती हैं और कुछ बातों को स्वीकारिता भी मिल जाती है, पर सोचना हमें फिर भी पड़ता है कि सत्य क्या है। एक वो सत्य जो परंपराओं से हमें मिला, या वो सत्य जो अपनी आत्मा से हमें मिला? और अगर हमने अपने इस सत्य को जानकर दूसरों तक पहुंचा दिया, तभी हमारा जीवन सार्थक है। तो श्रोताओं, हमारी आज की सुबह का लबोलबाब यही है कि हम अपनी अंतरात्मा से चिंतन करें, सोचें कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है, और फिर इस सच्चाई को उतनी ही शिद्दत से बोल दें, कह दें, क्योंकि जो सच हमने पाया है वो सिर्फ हमारा नहीं है, वो संपूर्ण मानवता का है। और संपूर्ण मानवता के लिए सोचना भी पड़ता है और बोलना भी पड़ता है। सुबह सुबह में आज बस इतना ही।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कृषि संकेत। कार्यक्रम में आज का विषय है हल्दी और अदरक की खेती। विशेषज्ञ हैं आरडी चौबे।
1: मई जून में ही हल्दी का रोपण किया जाता है, हल्दी फसल लगाई जाती है। और हल्दी और अदरक दोनों एक ऐसी फसलें हैं जो कंदी फसल हैं। विशेष रूप से हमारा ये सौभाग्य की बात है कि हमारे बुंदेलखंड में, विशेष रूप से पृथ्वीपुर और टीकमगढ़ जिले में, पूरे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अदरक का उत्पादन होता है। और इसी तरह से हल्दी के मामले में कहें तो आजकल हल्दी सभी जगह उगाई जाने लगी है। और ऐसी किस्में भी आ गई हैं जो 6 महीने में, हल्दी की 9 महीने की फसल है, लेकिन एक प्रगति किस्म करके ऐसी आई है कि वो प्रगति की फसल जो है 6 महीने में आ जाती है। तो 9 महीने की यदि 6 महीने में आ जाएगी तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा। उत्पादन अच्छा होगा तो हम जल्दी से मार्केट में उसको विक्रय करके उसका फायदा ले सकते हैं। तो कंदी फसलों के लिए सबसे अच्छा तरीका है ये 15 मई से 15 जून के बीच में हम इनकी खेती करते हैं। तो किसानों को सबसे पहले क्या है, खेत की जुताई करके अच्छी तरह से उनका पलावा कर लेना चाहिए, और जो उसमें कंकड़ पत्थर या खरपतवार उनको साफ करके और उनमें क्यारी बना लें। आजकल तो क्यारी बनाने के लिए बहुत सारे उपकरण भी हमारे सरकार अनुदान पर उपलब्ध करा रही है। तो क्यारी बनाने के लिए मेड़ पद्धति से यदि लगाएंगे आप, तो इन फसलों की क्या होता है, कंद बढ़ते हैं। तो कंद को जितनी अच्छी हवा मिलेगी, मिट्टी भुरभुरी होगी और उनको फायदा होगा, तो जितनी अच्छी विकास कंद फसलों का बलुई दोमट मिट्टी में होता है उतना किसी में नहीं होता है। जहाँ पानी ना भरे ऐसी स्थान का चयन कर लें, बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम है। बीज की मात्रा 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसके कंदों का पहले से परचेज करके रख लें या हम ले के रख लें। हमारे अदरक के लिए और हल्दी के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों में या ऐसी संस्थाएँ जो ICAR के माध्यम से जो संस्थाएं हैं उनके पास इसका बीज भी उपलब्ध होता है। तो सबसे पहली चीज़ बात यह है कि बीज विश्वसनीय संस्थान से प्राप्त करें, कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लें। तो बीज की गुणवत्ता अच्छी रहे, और गुणवत्ता के साथ साथ उसमें क्या देखना है कि कोई रोग बीमारी पहले से उस कंदों में ना हो। कंदों को लेके हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनको उपचारित कर लेंगे। उपचार के लिए बहुत तरीके हैं, जैविक उपचार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ट्राइकोडर्मा ब्रिडी से अच्छा उपचार करना अच्छा रहेगा। उसको क्या करें, फसल को एक जो हमने बीज ला के रखा है उसको क्या करें हम कि 1 ड्रम पानी में, 200 लीटर पानी में ट्राइकोडर्मा ब्रिडी मिक्स करके और उसमें डाल दें, और 200 लीटर में लगभग 1 किलो के आसपास आप उसमें ट्राइकोडर्मा ब्रिडी डाल के पूरी फसल को उसमें डाल दें। फसल को डालने के बाद कम से कम 1 घंटे तक उसमें फसल को डला रहने दें। फसल को डला रहने के बाद उसको निकाल के छाया में उसको सुखा लें, चाहे अदरक हो या हल्दी हो, और उस कंदों को छांट लें। यदि कुछ खराब कंद हैं तो उनको अलग भी कर लें। और इसके बाद जब उपचारित कर लें, जब पानी उसका निकल जाए या थोड़ा सा कंद सूख जाए छाया में, तो उनको उठा के हमें बोनी करना है। कोशिश ये करें कि जो बोनी करें तो कंद से कंद की दूरी हमें कम से कम 6 इंच रखनी है। 6 इंच से पास रखेंगे या 6 से 8 इंच रख सकते हैं, 1 फुट भी रख सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि कंद की दूरी इससे कम ना रखें, क्योंकि आपकी कंद के विस्तार को उसको भी जगह चाहिए। जगह चाहिए, ये अच्छा स्पेस रहेगा दोनों तरफ तो कंद का विस्तार अच्छा होगा। और उसमें प्रति हेक्टेयर 8 से 10 टन यदि हमें गोबर की खाद उपलब्ध है तो गोबर की खाद खेत में मिला लें। यदि उपलब्ध नहीं है, बर्मी कंपोस्ट है, 5 से 10 टन आप बर्मी कंपोस्ट का उपयोग भी कर सकते हैं। और यदि कहीं उपलब्ध भी नहीं है तो फिर आप उसमें विभिन्न प्रकार के जो आते हैं उसके बाद भी आप खाद दे सकते हैं उसमें। लेकिन अभी हमें जो प्राथमिक उपचार करके और बोना है उस समय हमारी जो मेड़े हमने बनाई हुई हैं उसमें खाद का पर्याप्त मिलान होके खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। तैयार करने के बाद कंद से कंद की दूरी जो बताई गई है उसके हिसाब से आप कंद की कंद रखते जाएं। और रखने के बाद करना ये है आपको कि उसको आपको मल्चिंग करना है। मल्चिंग कैसे करना है, जो फसल हमने लगाई है उसके ऊपर धान का पैरा या हमारा जो सागौन के पत्ते आते हैं या छेवले के पत्ते आते हैं जो हमारे पास उपलब्ध हों, उन पत्तों से उस पूरे खेत को जहाँ आपने बोनी करी है कंदों की उनको ढाक दें और पानी आप शुरू कर दें
0: जी। कार्यक्रम कृषि संकेत अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:10 होने वाले हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनेंगे।
2: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर। त्विषा शर्मा की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई। और प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और जनमानस को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने के लिए प्रत्येक नगर में गीता भवन के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास कार्यों के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का भी विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कल सिंगरौली महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने सिंगरौली को प्रदेश का सबसे विकसित और आधुनिक शहर बनाने की घोषणा की।
1: हमने अपने बच्चों के प्रोत्साहन को देने के लिए उनके साथ भी समय बिताया। विकास के लगभग 550 करोड़ के अलग अलग कामों का लोकार्पण किया। 1,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की स्वीकृति सिंगरौली में हुई है। आने वाले समय में सिंगरौली सुव्यवस्थित शहर में सबसे अच्छा शहर बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
0: इससे पहले डॉक्टर यादव ने 513 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया। बैढ़न में लगभग 12 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आधुनिक खेल परिसर का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री ने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पहले रक्षा उपकरणों का आयात करता था, लेकिन आने वाले कुछ समय में यह रक्षा उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक बनकर उभरेगा। उन्होंने कल महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सांवली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा।
2: सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5,000 आइटम्स की तैयार की है। हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। यह इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहले स्थान पर है। अब तक लगभग 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड-19 की अवधि को छोड़कर विगत 10 वर्षों में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन किया गया है। किसानों को अब तक उपार्जित गेहूं का 20,680 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू त्विषा शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कल स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ सुनवाई कर सकती है। टुषा के शव का आज एम्स भोपाल में दोबारा पोस्टमार्टम होगा। इसके लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम हाईटेक इक्विपमेंट के साथ राज्य सरकार के चार्टर्ड विमान से भोपाल पहुंच गई। इससे पहले आरोपी समर्थ सिंह को कल अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगादशमी पर कल प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य शासन ने समस्त जिलों में गंगादशमी पर आयोजित गतिविधियों एवं कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले मुख्य अतिथियों की सूची जारी की है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा में और अन्य मंत्री जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शिवपुर में भी कल गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में जिले भर में दीपदान, जल स्रोतों का पूजन, कलश यात्राओं के आयोजन के साथ रामेश्वर धाम त्रिवेणी संगम पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधी जिले के ग्राम कसीहवा में शॉर्ट सर्किट से हुए एक हादसे में 3 बच्चों की मृत्यु की घटना पर शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि मृत बच्चों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 6-6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला रेडक्रॉस सोसाइटी सीधी की ओर से परिजनों को 20,000 रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता राशि दे दी गई है। वहीं रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील के सागौर ग्राम में कल 3 बालिकाओं की कुएं में डूबने से मौत हो गई। वे गांव के पास एक कुएं पर नहाने गई थीं। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। अब रुख करते हैं खेल की खबरों का। रांची में 25 मई तक आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नितिका आकरे ने महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। नितिका ने 4.10 मीटर की शानदार छलांग लगाकर न केवल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया बल्कि एशियन गेम्स 2026 के लिए निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क भी हासिल कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने 9 से 12 जुलाई तक ऑर्डोस चीन में आयोजित होने वाली प्रथम एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नितिका आकरे को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं आईपीएल में लखनऊ में खेले गए मुकाबले में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के 197 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 2:30 PM और दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 शुरू होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग समेत कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं। गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले का नौगांव सबसे गर्म रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा खजुराहो में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। गुना जिले में भी गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पर तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में भेल दशहरा मैदान पर कल मशहूर संगीतकार एआर रहमान का लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया गया। रहमान को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। खंडवा से होकर गुजरने वाली जयपुर और हैदराबाद के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन को अब स्थायी साप्ताहिक ट्रेन के रूप में संचालित किया जाएगा। गुना के जिला पंचायत विश्राम गृह में 26 मई को युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्त्री रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और इंदौर में 9 से 13 जून तक ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर। टुषा शर्मा की मौत के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई और प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 PM पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:20 हो चुके हैं। लीजिए अब सुने हमारी साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर। संकलन व निर्माण है साहिबा नासिर का, संयोजन व प्रस्तुति है दीपक निषाद की।
2: गागर में सागर।
3: पत्रिका गागर में सागर को लेकर हाजिर हूँ मैं साहिबा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश है सागर मंथन।
2: सागर मंथन।
3: सागर कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल जी ने जनगणना 2027 के अंतर्गत मकान गणना का कार्य समय से पूर्व पूर्ण करने पर 4 अधिकारियों और तथ्यपूर्ण सही जानकारी प्रदान करने पर नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी।
4: सागर ने जो अपना ग्रामीण क्षेत्र का सेंसस का कार्य है, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ सभी नगरीय निकायों का लगभग कम्प्लीट कर लिया है। एक सागर नगरीय निकाय के कुछ HLBs जरूर बचे हुए हैं, लेकिन HLBs अपने अर्बन को छोड़ करके वो सभी कंप्लीट हो गए हैं। अपने सभी 4 अधिकारी जो 40 से अधिक थे, उन्होंने 4,000 से अधिक HLBs में जो सेंसस का कार्य है वो समय रहते कंप्लीट किया है। इसके लिए पूरी टीम जो है वो बधाई का पात्र है। और इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ देखने को ये मिले कि हमारी टीम जो फील्ड पर काम करने गई है उनको रहवासियों के जो रिस्पॉन्स हैं वो बहुत पॉजिटिव मिले, बहुत तथ्यपरक जानकारियाँ रहवासियों द्वारा प्रस्तुत की गई। तो सागर जिले के जो सभी नागरिक हैं उनको भी मैं बधाई देती हूँ।
3: सागर में पद्माकर सभागार में महानाट्य हमारे राम का मंचन हुआ। श्री आशुतोष राणा अपनी नाट्य कृति हमारे राम का मंचन देश के कई शहरों में कर चुके हैं। वहीं विदेशों में भी कई जगहों पर इस नाटक का मंचन हो चुका है। आशुतोष राणा खुद सागर यूनिवर्सिटी के परफॉर्मिंग आर्ट्स विभाग के छात्र रहे हैं और आज देश दुनिया में अपने अभिनय के लिए मशहूर हैं। खास बात यह है कि इस नाटक में रावण के किरदार को आशुतोष राणा जी ने निभाया है। श्री राम भगवान की भूमिका श्री राहुल भूचर जी ने की। उन्होंने बताया,
5: जब हम सच्ची शिद्दत से और सच्चे मन से कोई भी काम करते हैं और जब हम कोई पॉजिटिव काम करने के लिए निकलते हैं तो अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं। ये प्रभु श्री राम के साथ भी हुआ, जब वो अयोध्या जी से निकले और अपने वनवास को गए तो जितने भी अच्छे लोग थे वो उनके साथ जुड़ते चले गए, क्योंकि वो एक अच्छे काज के लिए निकले थे।
3: रावण की भूमिका श्री आशुतोष राणा जी द्वारा अभिनीत है। उन्होंने कहा,
6: मेरा ये मानना है कि रामायण अपने आप में अतुलनीय है। तो जब भी जो भी व्यक्ति राम की कथा को कहता है वो इसलिए लोगों को प्रिय होता है क्योंकि वो अतुलनीय चरित्र की किरदार को, कथा को हम सबके साथ साझा कर रहे हैं। और हम लाइव शो करते हैं, मंचन करते हैं और सागर शहर में ये हमारा 470वां प्रोग्राम हो पूरे देश भर में 2 साल के अंदर।
3: स्वास्थ्य विभाग सागर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा सागर एवं स्वास्थ्य विभाग सागर के संयुक्त तत्वावधान में विश्व अस्थमा दिवस के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहली में एक विशेष अस्थमा जागरूकता एवं स्वास्थ्य शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। डॉक्टर तलहा साद ने बताया,
7: आज के अवसर पे विश्व अस्थमा दिवस, उसमें किस तरह से मरीजों को इससे बचाया जा सकता है और बुनियादी तौर पे गुटखा और दारू से बचने की सलाह भी दी गई। साथ ही साथ जो अस्थमा के लिए जरूरी चीज है वो है नियमित तौर पे दवाई करना और उसके लिए परहेज करना। परहेज में जो कि सबसे बुनियादी चीज है वो है आपका जरूरी तौर पे मास्क लगा करके या रुमाल लपेट करके धूल वाली जगहों पे जाना और ठंडे खट्टे चीजों से बचाव करना।
3: सागर विधायक श्री शैलेंद्र कुमार जैन जी द्वारा आयोजित की गई 15 दिवसीय चित्रकला कार्यशाला रंगों की पाठशाला।
8: हमने बात की
3: कार्यशाला का आयोजन कर रहे
8: श्रार जी से और जानना चाहा इस खास पाठशाला के बारे में।
9: देखिए ये आयोजन जो है हमारे माननीय विधायक श्री शैलेंद्र जैन के माध्यम से हो रहा है। उनका ये आइडिया था कि एक वर्कशॉप की जाए बच्चों की और ऐसे बच्चों को शामिल किया जाए जो ऐसे समर के हम में नहीं जा सकते या जो पेंटिंग तो करते हैं मगर बच्चे सीख नहीं पा सकते या स्कूल कोई कोचिंग नहीं कर सकते, खासतौर से उनको शामिल किया जाए। तो वो ध्यान में रखते हुए ये एक वर्कशॉप का आयोजन कर रहे हैं। 15 दिन का ये आयोजन है जो संदापनी स्कूल है एमएलयू स्कूल क्रमांक 1 में जो है नई बिल्डिंग में उसमें इसका आयोजन होगा। सुबह 9 से और 11 बजे तक ये हम लोग बच्चों को पेंटिंग सिखाएंगे। इसके लिए गूगल फॉर्म एक बनाया गया है उसमें QR कोड उसमें जनरेट किया गया है। बच्चे अपने मोबाइल से उसमें स्कैन करें और उसमें एक फॉर्म खुलेगा तो उसको फॉर्म फिल कर दें।
3: प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए निशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। हमने बात की संस्था की प्राचार्य महोदया से।
10: नमस्कार।

नमस्कार। गागर में सागर पत्रिका के माध्यम से मैं श्रीमती बबीता सोनी, प्राचार्य परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र सागर, जो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा सिरोंजा गांव में संचालित है, जहां समस्त प्रति

0: एक संपर्क करें।
1: पीली कोठी का उर्स सागर में सर्वधर्म सद्भाव के प्रतीक के रूप में संपन्न हुआ। उर्स के आखिरी दिन आयोजित कव्वाली कार्यक्रम में हिंदुस्तान के मशहूर फनकार चांद कादरी और शब्बीर सदाकत साबरी की टीमों के बीच शानदार मुकाबला हुआ। कव्वाल पार्टियों ने बेहतरीन कलाम पेश किए। इन सूफियाना कलामों पर लोग जमकर झूमे और लगातार तालियां बजाकर फनकारों का हौसला बढ़ाया।
2: नहीं है कोई भी माहौल।

0: सागर में इस वक्त गर्मी के इस सीजन में सबसे भीषण गर्मी पड़ रही है। लू और झुलसाने वाली गर्मी से लोग हलकान हैं। दिन का पारा उछलकर 45.2 डिग्री तक पहुंच गया है। लगातार बढ़ते पारे से लोग दिन के साथ रात में भी गर्मी महसूस कर रहे हैं। सुबह 8:30 बजे से ही सूरज की किरणों में चुभन महसूस हो रही है। दिन चढ़ने के साथ ही तल्ख धूप से लोग झुलस रहे हैं। दोपहर के वक्त बाजार की सड़कों पर सन्नाटा पसर रहा है। लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी भीषण गर्मी का अलर्ट जारी है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक गर्मी और लू का असर सबसे ज्यादा रहेगा। इस दौरान लोग अति जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें। भीषण गर्मी को देखते हुए सागर में स्वास्थ्य विभाग ने लू और गर्मी से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। लू के लक्षण हो तो व्यक्ति को छायादार जगह पर लिटाएं, व्यक्ति के कपड़े ढीले करें, उसे पेय पदार्थ कच्चे आम का पना वगैरह पिलाएं, तापमान घटाने के लिए ठंडे पानी की पट्टियां रखें, प्रभावित व्यक्ति को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर चिकित्सीय परामर्श लें, सिरदर्द, बुखार, उल्टी, अत्यधिक पसीना और बेहोशी आना, कमजोरी महसूस होना, शरीर में ऐठन, नब्ज असामान्य होना लू के लक्षण हैं। और अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर, शिखर की ओर।
1: शिखर की ओर।
0: आज इस प्रोग्राम में लाए हैं मातृ वंदना योजना से संबंधित उपयोगी ये बातें। ये हैं महिला बाल विकास विभाग सागर के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री भरत सिंह राजपूत।
2: जी नमस्कार, मैं महिला बाल विकास का जिला कार्यक्रम अधिकारी भरत सिंह राजपूत। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गर्भावस्था के दौरान होने वाले श्रम दिवसों के नुकसान के भरपाई के लिए प्रारंभ की गई है। इस योजना में हम उन महिलाओं को जो गर्भधारण करती हैं, उन्हें पहले गर्भधारण पर 5,000 रुपए की राशि 2 किस्तों में देते हैं। जब महिला का रजिस्ट्रेशन आंगनबाड़ी में हो जाता है और उसकी पहली सभी जांचें हो जाती हैं, तो 3,000 रुपए की राशि, और जब उस महिला का जब प्रसव हो जाता है तो प्रसव के बाद जो संतान उत्पन्न होती है उसका टीकाकरण का प्रथम चक्र होता है तो उसे 2,000 रुपए की राशि दी जाती है। अगर दूसरा प्रसव है तो दूसरे प्रसव में यदि बालिका होती है तो बालिका के जन्म के उपरांत 6,000 रुपए की राशि दी जाती है।
3: जी सर, एक प्रश्न ये आ रहा है कि क्या सभी महिलाओं के लिए ये योजना है या किसी खास सीमा में बंधी होनी चाहिए या मापदंड?
2: बिल्कुल, इसमें 8 प्रकार के ग्रुप महिलाओं के सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें जो दिव्यांग महिलाएं हैं वो 40% दिव्यांगता जिनको है, वो BPL राशन कार्ड धारी, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के हितग्राही, ई श्रम कार्ड धारी, PM

0: किसान योजना के तहत जो किसान हैं उनके परिवार की महिलाएं मनरेगा जॉब कार्ड धारी 8 लाख से कम वार्षिक 8 लाख इनकम से कम महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और आशा जो खाद्यान्न की पात्रता पर्ची धारी ये महिलाएं इनमें सम्मिलित हैं
1: जी। अब बात आगे आती है, जब हमारा जो बाल शिशु है वो आ जाता है तो उसके लिए उसके पोषण के लिए या माता के पोषण के लिए भी कुछ महिला बाल विकास में योजनाएं?
0: बिल्कुल, जब माँ के पेट में कोई शिशु आता है और वो अपना रजिस्ट्रेशन आंगनबाड़ी में कराती है तो उसका रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात हम आंगनबाड़ी केंद्र से उसमें पोषण आहार उपलब्ध कराते हैं जो कि पूरक पोषण आहार कहलाता है, पैकेट के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त जो है उसकी सभी प्रकार की जांचें आंगनबाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से होती है। शिशु गर्भ में आने के बाद शिशु जब तक 6 माह का होता है, 6 माह का तब तक माता को पोषण आहार आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से दिया जाता है।
1: अब जैसे आपने सर कहा कि जांचें भी होती हैं आंगनबाड़ी में, तो यदि उसमें जैसे इंजेक्शन लगना हुआ या ऐसा कुछ हुआ तो टीकाकरण वगैरह भी हमारी तरफ से होता है?
0: बिल्कुल, टीकाकरण हमारे यहाँ होता है, उनकी जांचों का निर्धारित है, उसका प्रोटोकॉल है, वो जांचें हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे होती है। और जो गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था के बाद जो देख रेख महिला के लिए आवश्यक होती है वो स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से महिला बाल विकास उपलब्ध कराता है
1: जी। ये भी देखा गया है कि कुछ गोलियां भी दी जाती हैं, जैसे आयरन की जरूरत है या है तो वो भी निशुल्क शायद व्यवस्था है?
0: बिल्कुल, निशुल्क दी जाती है। इसके अलावा भी जब प्रसव होने को होता है तो हम जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से संस्थागत प्रसव इनको कराते हैं, संस्थागत प्रसव में भी उन्हें प्रोत्साहन की राशि दी जाती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और अब बारी है इस पत्रिका के अगले चरण की, सागर के मोती।
3: सागर के मोती।
2: आज के इस अंक में शामिल है संगीत जगत का उभरता सितारा शान चौबे।
4: शान, आपको गीत संगीत का शौक कब से हुआ?
5: जी, बचपन से ही मेरा संगीत की तरफ बहुत झुकाव रहा है। जब कभी भी कहीं गाने बजते हुए सुनता तो मेरे मन में यही आता था कि क्यों ना मैं भी संगीत से जुड़ जाऊं और कुछ सीखूं। शुरू में मेरा आकर्षण ड्रम की तरफ काफ़ी ज़्यादा था। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो मैंने सीखा वो ड्रम ही सीखा था। स्कूल के दिनों में जब मैंने पहली बार ड्रम देखा था तो मन में एक अलग ही उत्साह था कि एक दिन मैं भी इस ड्रम को बजाऊंगा, क्योंकि ड्रम जब आप बजाते हैं तो इट्स ऑल अबाउट एक्शन, ग्रूव्स एंड काफ़ी एनर्जेटिक होता है। तो बचपन से ही मेरा था कि क्यों ना ड्रम सीखा जाए, एंड फिर धीरे धीरे मैंने अभ्यास शुरू किया और फिर संगीत कब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया पता ही नहीं चला। तो फिर देखा, मैंने लोगों को गिटार बजाते हुए देखा, फिर धीरे धीरे मन में ये आया कि क्यों ना मैं भी गिटार सीखूं। और आज जब कभी भी थोड़ा भी समय खाली मिलता है तो मैं गिटार या ड्रम प्ले करना पसंद करता हूं।
4: आपको गीत गाने का शौक ज्यादा है कि बजाने का?
5: मुझे सबसे ज़्यादा ड्रम बजाना ही पसंद है, क्योंकि उसमें बीट्स होते हैं, उसमें ग्रूव्स होते हैं एंड काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं हम जब एक ड्रम प्ले करते हैं, और खासकर जब देशभक्ति के गीतों की ताल हो तो एक अलग ही एहसास होता है। शायद एनसीसी से जुड़ने की वजह से एक देशभक्ति मेरे अंदर है, और ड्रम मेरे दिल के काफ़ी करीब है क्योंकि मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट रहा है और मेरी संगीत की यात्रा भी ड्रम से ही शुरू हुई थी। तो आई जस्ट लाइक टू प्ले ड्रम, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं ड्रम ही पहले प्ले करता हूँ और फिर बीच बीच में कभी गिटार भी बजा लेता हूँ।
4: जैसा आपने कहा कि गीत संगीत से आप जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना पहले कुछ गायकी का हुनर हमारे श्रोताओं तक पहुंचा दिया जाए?
5: जी, मैं गीत संगीत से भी काफ़ी जुड़ा हुआ हूं, तो कुछ पंक्तियां हैं जो मैं गुनगुनाना चाहूंगा जो कि देशभक्ति की प्रेरणा देती है हमें, तो आप सुनिएगा। बिखर कर शौर की खुशबू,

0: उड़कर बदन को चूम लेती है, वतन की धूल उड़ उड़कर बदन को चूम लेती है।
1: वाह, बहुत खूब गाते हैं आप। आपकी रगों में संगीत के साथ देशभक्ति भी बहता एहसास हुआ हम देख पा रहे हैं कि आपके साथ आपके साथी भी, तो क्यों ना उनसे भी गुजारिश की जाए कि ड्रम पर आप रहें और बाकी लोग भी हुनर का।
0: जी बिल्कुल, मैं दोस्तों के साथ भी परफॉर्म करता हूँ और उसका एक अलग ही मजा होता है। जब संगीत से जुड़े हुए सारे लोग एक साथ हों तो माहौल बड़ा खूबसूरत बन जाता है। तो जब हम सब साथ होते हैं तो एक पूरा रॉक बैंड का रूप हो जाता है। और फिर हम काफ़ी जगह हमने परफॉर्म भी किया है, काफ़ी लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि म्यूज़िक एक पहचान देता है, काफ़ी लोग मुझे म्यूज़िक के थ्रू जानते हैं।

0: आपको गीत संगीत का इतना शौक है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से और कब आई?
1: संगीत की प्रेरणा मुझे बचपन से ही मिली थी। मेरे मामा जी ने इस सफर में मुझे बहुत प्रेरित किया। उनका भी संगीत और शायरी की तरफ काफ़ी झुकाव रहा है, वो शेर व शायरी वगैरह लिखते हैं, और ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करता था कि उनके पास एक एक्स्ट्रा टैलेंट है, तो क्यों ना मैं भी कुछ एक ऐसी चीज़ जिसमें मेरी रुचि है उसको मैं करना चाहूँ। तो तब मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट जो मैंने सीखा वो ड्रम सीखा, फिर धीरे धीरे गिटार सीखा, एंड धीरे धीरे म्यूज़िक मेरे लाइफ का एक पार्ट बन गया, एंड नाउ आई कैन से यस म्यूज़िक इज़ माई लाइफ।
0: अब क्यों ना गिटार पर भी कुछ सुन लिया जाए आपसे?

0: संगीत से जुड़े हो तो क्या शिक्षा भी आप इसी क्षेत्र में प्राप्त कर रहे हैं या शिक्षा का क्षेत्र अलग?
1: जी, मेरा पढ़ाई का क्षेत्र अलग है, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, लेकिन संगीत मेरे दिल के काफ़ी करीब है। मुझे लगता है कि संगीत केवल एक कला नहीं है, ये हमको डिसिप्लिन रहना सिखाती है, हमको कॉन्फिडेंट बनाती है, हमको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाती है, और एक पेशेंस लेवल भी डेवलप हो जाता है जब आप म्यूज़िक सीख रहे हो। तो पढ़ाई के साथ साथ संगीत हमेशा मुझे अच्छा लगता है, ये एक मेंटल स्ट्रेस होता है उसको रिलीफ करने में मदद करता है, फ्रेशनेस देता है, एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। तो जब कभी भी समय मिलता है मुझे तो मैं संगीत से जुड़े रहने का प्रयास करता हूँ। मैं कभी ड्रम प्ले कर लेता हूँ तो कभी गिटार बजा लेता हूँ।
0: शान चौबे जी, आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं?
1: जी, आगे चलकर मैं अपने करियर में अच्छा करना चाहता हूँ, और अगर उसको मैं एक अपने पैशन को फॉलो कर पाऊँ उसमें, तो इसमें क्या ही दो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए कि अगर मुझे एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता है कि जहाँ से मैं अपने पैशन को फॉलो करते हुए एक करियर चूज़ कर पाऊँ, तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि म्यूज़िक को एज करियर चूज़ करूँ। और वैसे तो पढ़ाई के साथ साथ संगीत से जुड़े रहकर मेरा एक काफ़ी अच्छा बैलेंस बना हुआ है, और अगर मौका मिलता है तो जी हाँ, ज़रूर मैं म्यूज़िक को एज अ करियर पाथ चूज़ कर सकता हूँ।
0: यदि कोई और युवा भी आपकी तरह संगीत जगत में आना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?

0: जी, मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर संगीत या किसी भी कला के लिए जुनून है तो आपको उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एक छोटी सी शुरुआत आपको आगे चलकर एक अलग मुकाम भी दे सकती है। आज मेहनत करेंगे, अभ्यास करेंगे, एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और जब आपको लोग आपके हुनर से पहचानते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, जब आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप संगीत से जुड़ सकते हैं तो बिल्कुल आपको जुड़ना चाहिए, और संगीत आपको डिसिप्लिन रहना, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है। तो जी हाँ, युवाओं से मेरा यही कहना है कि संगीत से भी जुड़े रहना चाहिए।
1: बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए।
2: अगले पायदान पर है माटी की महक।
3: माटी की महक,
2: आज ई कार्यक्रम में हमारे संगे बुंदेली व्यंजन व अचार चटनी बनाने में माहिर जा भैया।
4: भैया का नाम तुम्हारो?
5: हमारा इंद्रजीत मिश्रा नाम है।
4: तो इंद्रजीत भैया, आज हम देख रहे कि आप भारी पकवान यहाँ लाइन से लगाए हो, और खास बात यह है कि बुंदेली सारे व्यंजन है। तो जी, बुंदेली व्यंजनों में का श्रृंखला का हाथ जरा बताओ तन्नक।
5: हमारे से गांव देहात में और पुराने समय से चावल वगैरह कड़ी वगैरह को मिला के कॉलोनी नाम से जानी जाती है, कॉलोनी कहलाती है, उसमें हम लोग कड़ी मिलाते हैं और चने की दाल पका के उसको मिलाते हैं, शुद्ध घी और शक्कर उसमें डाली जाती है, उसका नाम कहलाता है कॉलोनी।
4: कॉलोनी
5: आधुनिक नाम कहलाता है फ्राई राइस ऑन तवा।
4: अच्छा, तो अब जैसे एक तो आपने यो व्यंजन बता दो, और कौन कौन से का खास रहत जो अपन पार्टियों वगैरह में चलाते और आप बनाने में जात हो या बनात हो?
5: कुचियाँ बनाते हैं, हाँ। मठा में डाल के रूप होगा है बरा।
4: अच्छा बरा, हाँ, बरा तो खूब खाओ हमने।
5: हाँ हाँ, बरा मतलब उसका नाम है आधुनिक।
4: अच्छा,
5: पुराने समय में उसको कुचिया कहते।
4: हाँ,
5: मुर्दा की दाल को फलो के,
4: हाँ,
5: और सिल्वर टेपर पीस के फिर ओखो तेल में तल के,
4: हाँ,
5: और मठा में डाल देते, या फिर राई को पानी पीस के, राई पीस के पानी में मिला के ओ में डाल देते, ओखो हमारा कुचिया कहते। उसमें भी हम लोग जो है शक्कर और घी डाल के परोसा करते हैं लोगों के लिए, वो खूब पसंद आती है वो।
4: क्या बात है भैया, ऐसा मुंह में पानी आ जाए बंदे के सुनत सुनत। अब जा बता दू कि दाल बाटी और भरता जा अलग अलग कहा के एक साथ खाए जात का है?
5: हाँ, दाल बाटी और मतलब आजकल बैंगन बोलते हैं भटा के भरता को, तो बैंगन भरता और दाल बाटी होटलों में भी प्रचलित हो गई है। हमारे से दुकान पे भी दाल बाटी और भरता मिलत है, और दाल बाफले भी मिलत है दुकान पे।
4: का फर्क कहलात बाफले और बाटी में? कछु अंतर है?
5: हाँ, अंतर है। बाफले कहलाते हैं जो घी में तली, शुद्ध घी में तलते हैं बाटियों को।
4: अच्छा,
5: दो बाफले कहते हैं, और जो अंगारे पे सेकी जाती हैं गेहूँ की लोई को,
4: हाँ,
5: उसको बाटी कहते हैं।
4: अब हम जानना चाह रहे हैं कि अपन के बुंदेलखंड में अचार चटनी को बड़ो रिवाज।
5: हाँ हाँ, है बहुत है। बिना चटनी के तो शायद कोई मतलब कोई खाना होता ही नहीं है।
4: हाँ,
5: सबसे पहले चटनी तो जरूरी है, सब्जी में तो बड़ी दिक्कत बना थे।
4: साची कह रहे भैया, कौन कौन सी खास चटनी अपने इतने प्रचलित है?
5: हमारे से आरे की चटनी, ओके बाद आम की चटनी कहा होते जो केवल सीजन पे मिलत है। बिही की चटनी भी खूब खाते हैं आदमी। बिही के पेड़ लगभग देहात में हर घर में लगे रहते हैं, अपने टोरी और चटनी बना के नमक मिर्ची मिला के खाई। चटनी को बुंदेली ठंडी में विशेष महत्व है।
4: अच्छा, अब चला चला तो अपन इतो चीजें पूछ रहा है, तो अचार और पापड़ की सही पूछ ले।
5: पापड़ खाए जाते हैं ज्यादा, उर्दा के खाते हैं, मूंग के खाते हैं, कमो कमो घर है किसानों के ना चना की दाल होते है तो ओके भी पापड़ बना देते हैं।
4: बहुत ही अच्छो लगो भाई आपसे बात करत करत, ऐसा लग रहा हो कि कंधक कछु खाई लिया जाए। चलो, हमारी एक परंपरा जा भी है कि हम बुंदेली लोकगीत सोई सुनवाते हैं अपने श्रोताहरों को।
5: अब तो सागर में ये भी प्रोग्राम होते रहते हैं कहूँ कहूँ।
4: हाँ, चलो तो बुंदेली लोकगीत मानो सुनत रहत हुआ, तो अपन भी कार्यक्रम में जा बुंदेली लोकगीत आपके लाने और

0: इस सप्ताह चर्चा में अब बारी है इस सेगमेंट की।
1: इस सप्ताह चर्चा में
0: नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वहां के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। इसे मिलाकर अब तक प्रधानमंत्री जी को 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इससे पहले स्वीडन ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था। एक विश्व स्तरीय मैगजीन ने 2026 की टाइम 100 फिलैंथ्रोपी लिस्ट जारी की है। शीर्ष 100 परोपकारियों में भारतीय और भारतवंशी शामिल हैं। वो समाज और व्यवस्था की सूरत बदल रहे हैं। मेहता बंधु स्वास्थ्य सेवाओं के साथ झीलों व प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं, तो नाडर जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाकर अमरीका तक भेज रहे हैं। भारतवंशी राजीव शाह बच्चों को शुद्ध खाना दिलवाने का प्रण ले चुके हैं, तो वहीं दीपक भार्गव बुनियादी अधिकारों की राह मजबूत कर रहे हैं। रेडियो पत्रिका गागर में सागर का सफर अब यहीं तक। साहिबा को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। निर्माण व स्वर साहिबा नासिर का, प्रस्तुति व संयोजन दीपक निषाद का।
1: गागर में सागर।
2: हमारी साप्ताहिक रेडियो पत्रिका गागर में सागर अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:50 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं शंकर महादेवन की आवाज़ में जावेद अख्तर के अल्फाज़।

끄직

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: कार्यक्रम संगीत सरिता में सभी श्रोताओं का स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं श्वेता की आवाज में श्याम अनुरागी का लिखा ये गीत। संगीत है आनंद राज आनंद का।

श्रोता के गायस गीत के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे।

0: विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
1: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
1: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी रामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है।

0: बीजी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
4: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद लवली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोकसत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नव भारत टाइम्स के अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सबसे पहले शकुंतला शुक्ला और लक्ष्मी त्रिपाठी का गाया ये बुंदेली गीत। लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
7: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
8: फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी
9: एक ट्रेड में सिक्सर
10: ए अक्का
11: प्रसिद्ध। पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर,
9: मतलब नुकसान की है ट्रेड। इसीलिए RBI वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज लिस्ट जांचें। RBI कहता है
12: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: साथियों नमस्कार। सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्धन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और कुल आदि ग्रामवासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
2: क्या बात है, दोस्त लग रहा है।
3: 3 महीने में पैसे डबल,
4: वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी।

0: गेम है? कल तो नहीं थी यहाँ
1: और कल होगा भी नहीं।
0: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
2: ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं।
0: और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो, अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे
1: और फास्ट रिटर्न से बच के
0: और फास्ट बॉलिंग से भी।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
5: कार्यक्रम लोक संगीत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं राम नारायण गंगेला का गाया ये बुंदेली गीत।

राम नारायण गंगेले के गाए इस बुंदेली गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे बच्चों का मन पसंद कार्यक्रम बाल सभा।

0: कार्यक्रम बाल सभा के प्रायोजक हैं ऑथेंटिक पब्लिक स्कूल राजघाट रोड ग्राम बरोदा सागर।
1: ऑथेंटिक पब्लिक स्कूल
2: एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल राजघाट रोड विलेज बरोदा डिस्ट्रिक्ट सागर। चाइल्ड फोकस सिलेबस म्यूजिक एंड डांस आर्मी ट्रेनिंग सेल्फ डिफेंस गेम्स एंड स्पोर्ट्स
1: बाल एक्सपीरियंस्ड एंड एजुकेटेड टीचर्स
2: कल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज फोकस ऑन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज कैरियर फोकस स्टडी।
1: अवर कॉन्टेक्ट नंबर
2: 7474795291 8120439627।
3: स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा में और आप सभी बच्चों को ऋतु दीदी का जय हिंद। प्यारे बच्चों हमने कर ली है आपसे मुलाकात और हम आपसे करेंगे बहुत सारी बात। सबसे पहले करते हैं बाल धमाल की बात। जी हाँ बच्चों और बाल धमाल में बात होती है तो बात आती है आप बच्चों की और बच्चों अभी है समय छुट्टियों का और साथ ही गर्मियों का भी तो अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है ना बच्चों। बच्चों अच्छा स्वास्थ्य केवल बीमारी से दूर रहने का नाम ही नहीं है बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी ज़रूरी है। तो आइए छोटी छोटी बातें हम आपको बताते हैं जैसे कि खुलकर हंसना एक हल्की लेकिन प्रभावी एक्सरसाइज है जो तनाव को कम करने के साथ पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। बच्चों हंसने से एंडोर्फिन हार्मोन जिसे कि हम खुशी का हार्मोन कहते हैं ये बढ़ते हैं। पेट की मांसपेशियां यानी कि मसल्स सक्रिय होती हैं और हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है और हमें लाभ मिलता है। तो हुआ ना बहुत अच्छा व्यायाम। तो खूब हंसिए खुलकर हंसिए और मुस्कुराते रहिए स्वस्थ रहिए साथ ही व्यायाम

0: हड्डियां हमारे शरीर को सहारा देती हैं और हमें स्वस्थ रखती हैं। इसलिए व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है और पर्याप्त पोषण, नियमित व्यायाम से हम मजबूत बने रहते हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन डी जैसे पोषक तत्व बहुत ही ज़रूरी हैं, जो कि संतुलित पौष्टिक भोजन से हमें प्राप्त होते हैं। तो घर का खाना ज़रूर खाएं, फल, मौसम के अनुसार सब्जियां और संतुलित और पौष्टिक भोजन लें ताकि आप स्वस्थ बने रहें। इसी के साथ बच्चों, पर्याप्त नींद, जी हाँ, जो कि अभी तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन हमेशा ही पर्याप्त नींद लेना ज़रूरी है। आप बच्चों को 7 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है ताकि आप स्फूर्ति भरा महसूस करें और आपका दिमाग तरोताज़ा रहे, तंदुरुस्त रहे। और चलना, जी हाँ, क्योंकि आजकल तो हम कहीं जाने का मन ही नहीं होता, बस बैठे और पहुँच गए जहाँ जाना है, लेकिन चलना है ज़रूरी। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि आप खेलें, बाहरी खेल खेलें ताकि आपकी चहलकदमी हो, खेलें कूदें, इससे आपकी एक्सरसाइज भी होगी, चहलकदमी भी होगी और बाहरी खेल खेलकर आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। तो बच्चों, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें जिससे कि आप स्वस्थ बने रहें और इन गर्मियों में भी आप पूरी खुशी के साथ इन छुट्टियों का आनंद लें। और फिर सबसे ज़रूरी बात बच्चों, हाँ, ये सारी बातें तो हमने आपको बता दी, लेकिन एक बात जो आप बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ बच्चों, हाँ, आपके मन और शरीर दोनों के लिए ज़रूरी है सकारात्मक सोच, क्योंकि बच्चों हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम महसूस भी करते हैं। तो हमेशा ही अच्छा सोचें, हमेशा ये सोचें कि हम स्वस्थ हैं, हम तंदुरुस्त हैं, हम खुश हैं, ताकि आप हमेशा स्वस्थ बने रहें और यूं ही दीदी से मुलाकात करते रहें, बात करते रहें। और अब इंतज़ार है आपको बाल मंच का, तो आइए।
1: आ ए ए उ उ ओ लेकर आए बच्चों का शो
2: बाल मंच।
0: स्वागत है सभी बच्चों का जो हमारी स्टूडियो में आज पधारे हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे आज हमारे साथ हैं। देखिए, गर्मियां कितनी भी तेज हों, लेकिन बच्चों की जो एक मेहनत है, एक लगन है, एक शौक है, वो उन्हें हम तक खींच कर लेकर आया ही है। हाँ, मौसम का असर भरपूर है, लेकिन फिर भी बच्चे पूरे उत्साह में हैं, हमारे साथ हैं। तो आइए मिलते हैं, सबसे पहले मिलते हैं इस प्यारी सी बिटिया से। बेटा, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम प्रियांशी चौबे है।
0: प्रियांशी, किस क्लास में पढ़ते हैं?
3: मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ।
0: अभी तो आपकी छुट्टियाँ हो गई होंगी, तो इन गर्मियों की छुट्टियों में आप क्या कर रही हैं?
3: मैं बहुत सारा खेलती हूँ और मैं नाइट में होमवर्क भी करती हूँ छुट्टियों में भी।
0: देखिए, बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, बहुत ही लगन से, उत्साह के साथ। देखिए, छुट्टियाँ भले ही हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है, जरूरी है ना बच्चों?
4: जी दीदी।
0: अब बात करते हैं प्रियांशी की, आज आपके जो श्रोता आपको सun रहे हैं, उनके लिए आप क्या लेकर आई हैं? सुनाइए।
3: बाल सभा सुनने वाले सभी श्रोताओगणों को प्रियांशी चौबे की तरफ से नमस्कार। मैं एक छोटी निवेदन लेकर आई हूँ। आजकल फोन, लैपटॉप चलने लगे हैं, इनके बिना तो कोई काम ही नहीं होता। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग अपना नेट जितना यूज में आ रहा है, आप लोग उतना ही यूज करें। धन्यवाद।
0: प्रियांशी, बहुत ही अच्छी बात आपने की है। मिलते हैं एक और प्यारी बच्ची से। बेटा, क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम गौरव पटेल है।
0: गौरव, आप क्या लेकर आए अपने नन्हे दोस्तों के लिए?
5: मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ।
0: कहानी सुनाएंगे?
5: एक बार मैं अपने दादाजी के साथ खेत पर जा रहा था। वहाँ पर एक गाय लोगों की झूठी पत्तले चाट रही थी। मैंने दादाजी से पूछा, दादाजी, ये लोगों की झूठी पत्तले क्यों चाट रही है? दादाजी ने बोला, बेटा, इनके लिए खाने को कुछ नहीं है, घास है तो वो भी सूख गई है, इसलिए

0: लोगों ने इन्हें घर से छोड़ दिया है तो वो लोगों की झूठी पतली चाट रही है। मैंने दादाजी से पूछा, दादाजी गाय हमारी माता है पर ये लोगों की झूठी पतली क्यों चाट रही है। दादाजी ने बोला, बेटा जब तक गाय दूध देती रहे जब तक उसको घर में उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं और उन्हें अच्छे से पालते हैं, जब गाय दूध नहीं देती तो उसे घर से छोड़ देते हैं तो वो यहाँ वहाँ सड़कों पर भटकती रहती हैं। इसलिए आप लोगों से भी निवेदन है कि गाय की अच्छे से देखभाल करें और उनको अच्छे से पाले। धन्यवाद।
1: क्या बात है, देखिए हमारे नन्हे नन्हे बाल कलाकार हैं और कितनी अच्छी बातें ये लेकर आए हैं। और जहाँ तक हो यहाँ वहाँ कचरा ना फैलाएं ताकि हमारे जो गाय हैं वो इन अनुपयोगी चीज़ों को खाकर बीमार ना हो, स्वस्थ बनी रहें। यही कहना चाहते हो ना बेटा?
0: जी दीदी।
1: गौरव ये बताइए कि छुट्टियों का समय है
0: दीदी।
1: हाँ, तो इन छुट्टियों में खेलने के साथ साथ कुछ और नया सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं?
0: बैडमिंटन, क्रिकेट।
1: अच्छा, आपको अच्छा क्या लगता है खेल में?
0: क्रिकेट।
1: क्रिकेट अच्छा लगता है, खेलते हो? गौरव क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, है ना?
0: जी दीदी।
1: गौरव से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने दी। एक और प्यारी बिटिया से हम मिलेंगे। क्या नाम है बेटा आपका?
2: मेरा नाम चैतन्य सिंह है।
1: चैतन्य, ये बताइए कि आपका इतना प्यारा प्यारा सा नाम किसने रखा है?
2: दादी ने मेरे।
1: अरे वाह, दादी ने रखा है। चैतन्य ये बताइए कि आज आप क्या सुनाएंगी?
2: मैं पेड़ों के बारे में सुनाऊंगी।
1: बताइए।
2: मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ। मैं जब बस में सफर कर रही थी, मेरे बगल में एक दादी बैठी थी। मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती थी, पर उनके हाथ में एक पोटली थी। वो पोटली जैसे ही जंगल आता, वो अपनी पोटली खोल के कुछ डालने लगती। मैंने बहुत बार देखा, पर मैंने दादी से पूछा, आप यह क्या करती हूँ? तो उनने बताया, जो अपन फल खाते हैं उसके बीच हम कचड़ेदान में फेंक देते हैं, तो मैं उनको इकट्ठा करके ले जाती हूँ और ऐसे खुली जगह में डाल देती हूँ, जिससे हमारी धरती की रक्षा भी होगी और हमें उससे हमें फ्रूट मिलते हैं, फल फूल और ऑक्सीजन। जब हमें धूप लगती है तो अपन उसको छाया के नीचे भी आ सकते हैं। और
1: वाह, कितनी प्यारी बात चैतन्य। दादी वो जो बीज फेंक रही थी वो धीरे धीरे पौधे के रूप लेंगे, फिर पेड़ बन जाएंगे जो हमें छाया देंगे, फल देंगे, फूल देंगे, तो पूरी प्रकृति हरी भरी हो जाएगी। ऐसा ही होगा ना?
2: हाँ जी।
1: देखिए कितने छोटे बच्चे हैं और कितनी सीख भरी बात कह जाते हैं। अपने आसपास पर्यावरण को सुरक्षित रखें, पौधे जरूर लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण हरा भरा रहे और हम स्वस्थ रहें। चैतन्य, आप अपने दोस्तों को कुछ और भी कहना चाहती हैं?
2: मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती।
1: सुनाइए।
2: कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः, लवत केश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।

0: तुमको बंधन सबकी रखते लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन की जयकार।
1: इतनी सारी बातें, सीख भरी बातें और इतना प्यारा भजन इन्होंने हमें सुनाया है। चैतन्य, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मिलते हैं एक और बाल कलाकार से। आपका क्या नाम है?
2: मेरा नाम बादल पटेल है।
1: बादल? कौन सा वाला बादल? पानी वाला? तो भाई बरस जाओ, बहुत गर्मी है।
2: अभी थोड़ी देर बाद।
1: थोड़ी देर बाद, क्योंकि हर चीज का समय होता है। गर्मियों के मौसम में गर्मियाँ और बरसात के मौसम में बरसात।
2: दीदी,
1: आप क्या लेकर आए अपने दोस्तों के लिए?
2: मैं अपने दोस्तों के लिए एक छोटा सा गीत सुनाना चाहता हूँ।
1: सुनाइए।
2: समय का चक्कर अजीब था, मैं जीत कर भी हार गया। धर्म बचाने वाले को दुनिया ने कपटी बता दिया। तरह तरह की शाप मिली, आज

0: आंसुओं की बूंदें सूख गई, माँ गांधारी के श्राप से मेरी द्वारिका नगरी डूब गई। मेरी द्वारिका भी डूब गई, मेरी बांसुरी भी छूट गई, मैंने क्या ही पाया जीवन में जो मेरी प्रेमिका ही दूर गई।
1: बहुत अच्छा बादल, और बताइए बादल, और भी कुछ कहना चाहते हैं आप?
0: मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, गर्मियों के मौसम में आप सभी अपने अपने छत पे एक कटोरा बस पानी रखें, जिससे एक कटोरे पानी से बहुत सारी चिड़ियों की जानें बच सकती।
1: बहुत ही अच्छी बात बादल ने की है कि हम सब अपनी घर की छत पर, आंगन में, बालकनी में इन पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। हमारे ये पक्षी इन गर्मियों में सुरक्षित रहें और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित बना रहे, है ना बादल? और अब मिलते हैं, क्या नाम है बेटा आपका?
2: मेरा नाम माही जान है।
1: माही, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप इन छुट्टियों में क्या सीख रही हैं?
2: पढ़ाई कर रही हूँ, खेलने भी जाती हूँ।
1: क्या खेलते हैं आप?
2: मैं बैडमिंटन खेलती हूँ।
1: बैडमिंटन खेलते हैं?
2: जी दी,
1: बहुत अच्छी बात है। बैडमिंटन खेल के अच्छा लगता है ना?
2: जी दी, दी, जी।
1: एक्सरसाइज भी होती है?
2: मैं नाइट में पढ़ती हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है कि छुट्टियों का समय है लेकिन बच्चे फिर भी अपने जो नियमित है पढ़ाई, उसे जारी रखे हुए हैं। तो माही, अब ये बताइए कि आप क्या सुनाएंगे?
2: मैं यहाँ पे छोटी सी घटना सुनाने जा रही हूँ। एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रही थी, तभी मैंने देखा कुछ अंकल्स कुछ आंटी लोग आपस में बात कर रही थी। तभी वो लोग मूंगफली भी खा रही थी, मूंगफली के छिलके को फर्श पर फेंक रही थी। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कचड़े को कचड़े दान में डालें।
1: मतलब कहने का ये है ना माही कि हमें अपनी साफ सफाई का ध्यान स्वयं रखना चाहिए, है ना? और आजकल तो कितनी जानकारी भरी बात आप सब लोगों को बताते ही हैं स्कूल में भी कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डालें, है ना?
2: जी जी जी जी,
1: ये सारी जानकारियां आजकल आप लोगों को दी जाती है ना?
2: जी जी जी।
1: और साफ सफाई का ध्यान रखना तो बहुत ही जरूरी है। किसी भी स्थान पर जहां हम गए हैं वहां पर गंदगी नहीं फैलानी है।
2: जी जी जी,
1: बहुत ही अच्छी सीख देने वाली बात माही ने हमें बताई है। तो आप सब सुनने वाले बच्चे भी इन बातों को ध्यान रखें, कचरा कूड़ेदान में ही फेंकें, साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब मिलते हैं, क्या नाम है बेटा आपका?
3: मेरा नाम नमन कुर्मी है।
1: तो नमन, ये बताइए कि आप क्या लेकर आए?
3: मैं आप सभी श्रोतागणों के लिए छोटी सी घटना लेकर आया हूँ।
1: अच्छा, बताइए।
3: मैं एक दिन अपनी माँ के साथ छत पर बैठा था, तो मैंने एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन देखा। तो मैंने माँ से बोला, माँ ये यहाँ पे क्यों रखा है? तो मेरी माँ ने बोला, बेटा अपन इसमें पक्षियों के लिए पानी रखते हैं। मैंने माँ से बोला, माँ मैंने तो ये पहली बार देखा है। तो माँ बोल रही, बेटा कोई कोई इसमें पानी रखता है और कोई कोई रखता नहीं है, इसी वजह से अधिक पक्षियों की प्यास की वजह से जान चली जाती है।
1: गर्मियों का मौसम है, बहुत तेज चिलचिलाती हुई धूप है, ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम पक्षियों के लिए दाना पानी रखें।
3: जी जी जी।
1: हमारे नन्हे बाल कलाकार जो आपसे कह रहे हैं इन बातों का, हमारे छोटे छोटे नन्हे श्रोता भी ध्यान रखें, अपनी घर पर, छत पर, बालकनी में पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। और क्या शौक है आपको?
3: मुझे फिल्मी डायलॉग बोलना। मैं एक छोटा सा डायलॉग बोलूंगा, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, हार गए वो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असर है अपना।
1: बच्चों के जो शौक हैं उन्हें पूरा करने का ये सही समय है, छुट्टियों का समय है, इसे आप अपने जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपके शौक हो, उन्हें पूरा करने में उसके लिए प्रयत्न करिए।
4: ऑथेंटिक पब्लिक स्कूल
5: एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, राजघाट रोड विलेज बड़ौदा, डिस्ट्रिक्ट सागर। चाइल्ड फोकस सिलेबस,
6: म्यूजिक एंड डांस,
7: आर्मी ट्रेनिंग,
8: सेल्फ डिफेंस,
9: गेम्स एंड स्पोर्ट्स,
10: बाउ एक्सपीरियंस्ड।

0: Answer. Educated teachers.
1: Culture is various activities. Focus on English and Hindi language.
2: Career focus study.
0: Our contact number.
1: 7747915291.
2: 8120439627.
3: और अब मिलते हैं बेटे, क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम शिवांगी पटेल है।
3: शिवांगी, आज क्या अपने नन्हे श्रोताओं को सुनाएंगी?
4: बाल सभा में सभी श्रोतागणों को शिवांगी पटेल की तरफ से नमस्ते, जय हिंद। मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी कविता सुनाना चाहिए।
3: कविता सुनाएंगी?
4: यस,
3: सुनाइए।
4: हम भारत के बच्चे हैं, बस आगे बढ़ते जाएंगे, आए सौ तूफान सामने, रोक ना हमको पाएंगे। हमें न समझ नन्हे मुन्ने, हम साहस के पुतले हैं, दिल के हैं मजबूत बड़े, हम तन के लगते दुबले हैं।
3: और अब बात करते हैं एक और बच्चे से। बेटा, क्या नाम है आपका?
5: अरिहंत।
3: अरिहंत, आप किस क्लास में पढ़ते हैं?
5: मैं थर्ड।
3: और कहाँ से आए हो आप?
5: बड़ौदा।
3: यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में?
5: अच्छा।
3: और आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आज आप क्या सुनाएंगे?
5: मैंने देखा है कुछ कुछ बच्चे चींटी को मारते हैं, मेंढक के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, तितली के पंख में लौच देते हैं, टड्डे के पाँव में धागा बांध कर उड़ाते हैं, और पिल्ले के गले में रस्सी बांध कर खींचते हैं। अपी जी ने बोला है जियो जीने दो।
3: बहुत अच्छी बात है, महावीर जी ने कहा है जियो और
5: जीने दो।
3: जीने दो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमें हिंसा नहीं करनी, मारना नहीं है, चोट नहीं पहुंचाना है, है ना? किसी का खराब नहीं सोचना है, यही कहना चाहते हैं ना?
5: जी दीदी।
3: अरिहंत बहुत छोटे से हैं और हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही छोटे छोटे बच्चे आज हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी जानकारी भरी बातें ये हमें बता रहे हैं, शिक्षाप्रद बातें हम इनसे सुन रहे हैं। और बहुत प्यारी बात अरिहंत ने बताई है। और अब हमारे साथ हैं एक और प्यारी सी बिटिया, सबसे पहले जानते हैं इनसे इनका नाम। बेटा, क्या नाम है आपका?
6: मेरा नाम शिवानी पटेल है। मैं पढ़ाई के बारे में सुनाने जा रही हूँ। एक छोटी सी लड़की थी जो कि 8 या 7 साल की थी। उसे तो पता नहीं था कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाएं। धन्यवाद।
3: पढ़ाई का जो समय है उस समय पढ़ें, क्योंकि हर कार्य को करने की एक उम्र होती है ना?
6: जी दीदी।
3: तो अभी बच्चों का पढ़ने का समय है, खेलकूद का समय है। और जो हमारे घर के बड़े माँ बाप हमसे कहते हैं उस बात को हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अपनी उम्र के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यही कहना चाहती है ना शिवानी आप?
6: जी दीदी।
3: बहुत ही प्यारी बात शिवानी ने हमें बताई है। और अब बताइए शिवानी कि आपको क्या शौक है?
6: मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है।
3: फुटबॉल?
6: जी दीदी।
3: अरे वाह, तो खेलते हैं आप?
6: जी दीदी।
3: कहाँ पर?
6: स्कूल में।
3: बहुत अच्छी बात है शिवानी कि आप फुटबॉल खेलती हैं, क्योंकि फुटबॉल अपने आप में एक बहुत ही रोचक गेम है, मजा आता है ना? फुटबॉल एक बहुत ही प्यारा खेल है, एनर्जी लगती है, उसको खेलने के बाद बहुत थक जाते हैं ना?
6: जी दीदी।
3: फिर क्या करते हैं?
6: फिर थोड़ा बैठ के फिर से खेलते हैं।
3: और बीच बीच में खेल के बाद पानी भी पीते रहते हैं ना?
6: जी दीदी।
3: हाँ, खेल कोई भी खेलें, ध्यान रखें अपने शरीर में जो ऊर्जा है वो बनी रहे, इसके लिए क्या करें, बार बार पानी पीते रहें, है ना?
6: जी दीदी।
3: पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से हमारा शरीर जो है वो हाइड्रेट रहता है और हम स्फूर्ति भरा महसूस करते हैं और फिर खेल खेलने लगते हैं। ऐसे ही होता है ना शिवानी?
6: जी दीदी।
3: बहुत ही प्यारी बात शिवानी ने हमसे बताई है।
7: मेरा नाम शिव पटेल है।
3: शिव, शिव आप बताइए कि आज आप से जो आपको श्रोता सुन रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं?
7: एक जानकारी भरी बात सुनाने जा रहा हूँ।
3: बताइए।
7: एक बार की बात है, मेरी बुआ स्कूल में पढ़ा करती थी। वह रोज स्कूल की छुट्टी होने पर चबूतरे पर खेलने जाया करती थी। एक दिन की बात है, वह अपनी सहेली के साथ चबूतरे पर खेल रही होती हैं। वहां पर एक लड़की बैठी होती है। वह मेरी बुआ के पास आकर बोलती है, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी?

0: मेरी बुआ बोलती है, नहीं, मैं मेरी सहेली के साथ खेल रही हूँ। इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, और हमें अगर कोई अकेलापन महसूस कर रहा हो तो हमें उसका अकेलापन दूर करना चाहिए।
1: देखिए कितनी जानकारी भरी बात हमसे साझा कर रहे हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, आप बच्चों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, और कभी ऐसा लगे कि हमारा कोई दोस्त परेशान है, अकेला महसूस कर रहा है, तो उसे अकेला बिल्कुल भी ना छोड़ें, है ना
0: जी दीदी।
1: उसके साथ रहें और हो सके तो उसे खुश करने की कोशिश करें।
0: जी दीदी,
1: यही बात है ना।
0: मैं अपने छोटे छोटे श्रोता गणों से यह कहना चाहता हूँ कि वो शाम को ही बाहर खेलने निकलें और दोपहर में खेलने ना निकलें।
1: बहुत अच्छी बात कही है, तेज धूप से बचाव करें, और आप बच्चे तो सिर्फ शाम के समय ही बाहर खेलें, बाकी दिन में अपने घर पर ही रहें, है ना। इन गर्मियों का आनंद लेते हुए आप भी स्वस्थ रहें। आप सभी बच्चे हमारे स्टूडियो में पधारे, और आप सभी का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी बच्चों को जय हिंद।
2: जय हिंद।
1: और प्यारे बच्चों, मजा आया ना। हाँ, नन्हे नन्हे बाल कलाकारों को सुनकर आप बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। और अब इंतजार है आज दीदी, बातें तो हो गई, बाल मंच में प्यारे प्यारे नन्हे दोस्तों को, कलाकारों को भी सुन लिया, और अब चलते हैं मनोरंजन की ओर।

0: तो प्यारे बच्चों, आपकी हर ख्वाहिशें पूरी हों, यही तो हम चाहते हैं। और घड़ी की टिक टिक करती हुई सुई इशारा कर रही है कि समय हो चला है आप नन्हे श्रोताओं से अनुमति लेने का। तो इन्हीं दुआओं के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अपनी ऋतु दीदी को कार्यक्रम बाल सभा से अनुमति दीजिए। सभी बच्चों को जय हिंद।
1: ऑथेंटिक पब्लिक स्कूल
2: एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, राजघाट रोड, विलेज बरोदा, डिस्ट्रिक्ट सागर। चाइल्ड फोकस सिलेबस, म्यूजिक एंड डांस, आर्मी ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स,
1: बाल एक्सपीरियंस्ड एंड एजुकेटेड टीचर्स,
2: कल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, फोकस ऑन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, करियर फोकस स्टडी।
1: Our contact number
2: 7747915291 8120439627।
3: कार्यक्रम बाल सभा के प्रायोजक थे ऑथेंटिक पब्लिक स्कूल, राजघाट रोड, ग्राम बरोदा, सागर।

नन्हे श्रोताओं का मन पसंद कार्यक्रम बाल सभा अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

फिल्म संसार की जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट।
2: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

0: आप सुन रहे थे चित्रलोक कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज हमने राजेश रोशन और मजरूह सुल्तानपुरी की कहानी आपको सुनवाई।
1: आप सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम विविध भारती से। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार ए आर कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे के एल सह।

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरूह सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

0: मुझे।
1: दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एस डी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया।

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवन

0: सुनते हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
4: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
5: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
6: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दतिया जिले की चिट्ठी। आलेख मनोज गोस्वामी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का।

दतिया जिले में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और दोपहर के समय सन्नाटा छा जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बी के वर्मा ने बताया है कि अत्यधिक गर्मी और लू जानलेवा हो सकती है। गर्मी के दिनों में धूप में बाहर जाते समय हमेशा सफेद और हल्के रंग के ढीले सूती वस्त्रों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। भोजन करके एवं पानी पीकर ही घर से बाहर निकले। बाहर जाते समय भी अपने साथ पानी रखें और गर्मी के दिनों में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्हें धूप में घर से बाहर न निकलने दें और समय समय पर पानी पीने के लिए प्रेरित करें। दतिया जिले में युवा संगम रोजगार स्वरोजगार मेले का आयोजन कल किया जाएगा। युवाओं से दस्तावेजों के साथ इसमें शामिल होने की अपील की गई है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े की अध्यक्षता में जिले की कानून व्यवस्था के संबंध में 28 मई को एक बैठक का आयोजन भी किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा वृद्धजनों के सम्मान, मनोरंजन, बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाल वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल जिले में की गई है। रेडक्रॉस भवन में संचालित आनंद घर डे केयर सेंटर में वृद्धजनों के लिए सप्ताह के सातों दिन अलग अलग विभागों के समन्वय से विभिन्न रचनात्मक और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा रतनगढ़ माता मंदिर रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक जाँच और छापामार कार्यवाही बीते दिनों की गयी। टीम के द्वारा संदिग्ध वाहनों की जाँच की गयी। जाँच के दौरान कई वाहन चालकों द्वारा खनिज परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। वे बिना अनुमति और बिना वैध परिपत्र के खनिज का अवैध परिवहन, उत्खनन और भंडारण कर रहे थे। अभियान के दौरान प्रशासन की टीम ने ग्राम इंदरगढ़ क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1500 घन मीटर रेत जब्त की। बाद में इन अवैध रेत भंडारों को नष्ट करने की कार्रवाई भी की गयी। दतिया स्थित जिला जेल में मुलाकात कक्ष में लीगल एड हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। स्थापित हेल्प डेस्क में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक लीगल एड डिफेंस काउंसिल में नियुक्त अधिवक्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। हेल्प डेस्क में नियुक्त लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा मुलाकात कक्ष में बंदियों के परिजनों को मौके पर ही कानूनी सलाह और सहायता तथा केस की जानकारी और अपील संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दतिया जिले से अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग जाति के 532 छात्रों को छात्रवृत्ति राशि 91,59,000 रुपये का भुगतान किया गया है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला दतिया के द्वारा जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित

व्यंगजनों के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आगामी 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से तैयार किए जाएं। कलेक्टर स्वप्निल बानखेड़े द्वारा जनगणना के तहत चल रहे मकान सूचीकरण कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सुपरवाइजरों को प्रशस्ति पत्र देकर बीते दिनों सम्मानित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि सटीक मकान सूचीकरण न केवल जनगणना के लिए बल्कि भविष्य में विकास योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने सभी सुपरवाइजरों और फील्ड कर्मचारियों से अनुरोध किया कि जनगणना का कार्य निष्ठा और ईमानदारी से करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भरोसेमंद रिकॉर्ड बने। जिला स्तरीय परियोजनाओं, न्यायालयीन मामलों में समन्वय और विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा करने के उद्देश्य से प्रधान न्यायाधीश विजय चंद्र की अध्यक्षता में जिला मॉनिटरिंग सेल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय चंद्रा ने मॉनिटरिंग सेल की पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों की प्रगति रिपोर्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि न्यायालयीन व्यवस्थाओं और जिला स्तर पर चल रहे विकास कार्यों के बीच समन्वय बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि जनहित से जुड़े कार्य समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूर्ण हो। श्री चंद्रा ने बताया कि 21 अगस्त से 23 अगस्त तक 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पक्षकारों की सहमति से बैंकिंग, सिविल, मोटर दुर्घटना, उपभोक्ता विवाद, रेरा, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, किराया नियंत्रण आदि जैसे प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। दतिया जिले में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने बताया कि संपर्क अभियान में बिलों का सुधार किया जा रहा है। दतिया जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी दतिया जिले की चिट्ठी। आलेख मनोज गोस्वामी का था, वाचन था अभिषेक कटियार का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक हैं वीडा हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर सेंट्रल मोटर्स सागर।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक हैं वीटा हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर सेंट्रल मोटर्स सागर।
1: फोन करें गीत सुने इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं साहिबा। लेते हैं ये पहला फोन। हेलो,
2: नमस्ते सर।
1: नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका?
2: राम कुमार।
1: तो कहाँ रहते हैं भैया आप?
2: कनेरा नीकर में।
1: अच्छा, तो ये सागर से कितनी दूर पड़ता है?
2: सागर से 30 किलोमीटर है पश्चिम दिशा में।
1: अच्छा जी, कुछ अपने बारे में बताइए कि आप करते क्या हैं, दिनचर्या क्या रहती है?
2: विकलांग है, एक पार्क है, थोड़ी सी दुकान करें।
1: अच्छा, चाहिए कि जहाँ आप रहते हैं, आपने गांव का नाम बताया, तो वहाँ कुछ पर्यावरण के बारे में भी कुछ लोग जागरूक हैं कि इसको सुरक्षित रखना है, उसी से हम लोग सुरक्षित हैं?
2: हाँ, पेड़ पौधे लगाते हैं, काटते नहीं हैं।
1: वाह वाह वाह, देखिए आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा में आप भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा, खुद नहीं काटते या कोई और को आप देखते हैं कि पेड़ पौधों को खा रहे
2: हैं? भी रोकते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है। और भाई, पेड़ पौधों के साथ साथ क्या हम ऐसा भी करते हैं कि जो हमारे जल स्रोत हैं उनको हम सही रखते हैं?
2: हम जल स्रोत तो साफ सब सूख गए हैं, नदियाँ भी खाली हो गई, दशान नदी है, सब खाली हो जाते हैं अब तो।
1: बस यही तो सोचने की बात है भाई कि ये सब खाली हो क्यों रहे हैं, अगर हम दुरुपयोग थोड़ा रोक दें।
2: पानी को अधिक उपयोग हो रहा है।
1: अब आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि जो समस्या आई है क्यों ना हम उसके समाधान की ओर जाएं, और जब बारिश का मौसम आए तो हम ये सोचें कि हम उस पानी को संचित करें, ऐसा कुछ सोचते हैं? रोकना चाहिए। देखिए कितनी प्यारी बात आप कर रहे हैं, अगर हम सब मिलके ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप कुछ ना कुछ जल स्तर तो हम बढ़ा ही लेंगे।
2: पानी बह के ना जाए।
1: जी हाँ, बस यही तो समझदारियाँ हैं हम लोगों।

0: जो हमें इस समस्या का समाधान दिलाएंगी। आज कौन सा गाना सोचा था भाई आपने कि सुनेंगे?
1: अब गाना हमें चाहना है वो हमराज फिल्म का गीत।
0: अच्छा, कौन सा गाना?
1: तुम मगर साथ देने का वादा करो।
0: क्या बात है, महेंद्र कपूर जी की आवाज में ये बेहतरीन सा गाना है जो हम पहुंचा रहे हैं आप तक।

0: कम खर्च और ज्यादा बचत के साथ सेफ्टी का पूरा भरोसा, क्योंकि ये है वीडा हीरो इलेक्ट्रिक ई-वूटर स्कूटर हमारा, जो देता है फुल चार्ज में 100 किलोमीटर की रेंज, रिमूवेबल डुअल बैटरी और 13,900 रुपए की बचत के साथ टेंशन फ्री राइड। तो आइए हमारे प्रीमियर हीरो मकरोनिया या भगवानगंज हीरो शोरूम पर, संपर्क करें 7428274969। हीरो के भरोसे के साथ सागर अब वीडा चलाता है।
1: वीडा है तो वाइब है।
2: हेलो,
3: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी मैं ग्राम अमावनी से आपका नियमित श्रोता गुड्डू तिवारी जी बोल रहा हूँ। जी मैम नमस्कार, स्वीकार करें।
3: बहुत बहुत नमस्कार आपको, और गुड्डू जी आपने फोन लगाया, बड़ी खुशी हो रही है। हम जानते हैं कि आप हमारे नियमित श्रोता हैं। बताइए, जो गर्मी का इस वक्त मौसम चल रहा है उसमें कुछ सावधानियाँ रख रहे हैं अपनी?
2: हाँ बिल्कुल, सावधानियाँ रख रहे हैं मैम। क्या है अभी टेम्परेचर अपना ये 40 और 45 के बीच में चल रहा है मैम, तो ये बहुत ही ज्यादा लू लगने वाली अभी गर्मी और हवाएं चल रही हैं, तो इसमें तो क्या है अपन 11:30 से 3 बजे तक घर के अंदर रहते हैं, तभी अपने बच्चे लोग और अपन।
3: जी गुड्डू भाई, और पूछना चाहेंगे कि अमावनी में आप रहते हैं तो वहाँ का अगर हम प्राकृतिक सौंदर्य की बात करें तो क्या क्या है वहाँ पर?
2: वैसे तो घूमने के लिए विशेष जगह है अपने ये मौलाली बाबा साहब की दरगाह है। हाँ मतलब पहाड़ी है वहाँ पे।
3: अच्छा,
2: तो वहीं पे अपना ये दरगाह है, मौला अली बाबा साहब की दरगाह है, वहीं पे मतलब ये अपना पहाड़ पेड़ पौधे वगैरह हैं।
3: जी हाँ, तो हम
2: तो वो एक घूमने की जगह भी है और प्राकृतिक सौंदर्य, और अपना ये पूरा जो शहर है सागर,
3: जी जी जी,
2: वहीं से अपने खूबसूरत सागर नगरी का अपन को देखने को वहीं ऊपर पहाड़ी से बेहतरीन मिलता है।
3: क्या बात है। देखिए अब आपने जो मंजर खींचा गुड्डू भाई के, पेड़ पौधे हैं और प्राकृतिक सौंदर्य है, तो ऐसा लगा जैसे ये छटाएं हमारे सामने घूम गई। आज मुद्दे की बात यही है कि पर्यावरण की अगर हम सुरक्षा करेंगे
2: जी जी,
3: तो वो हमारे ही लिए बहुत ही फायदे की होगी।
2: जी जी,
3: तो इस दिशा में हम कुछ सोचते हैं, क्या विचार है आपके?
2: हाँ देखिए, ये पर्यावरण और सौंदर्य पेड़ पौधे जो है, ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मैम।
3: जी जी बिल्कुल,
2: जिससे हमारे लिए हर चीज, सांसों से लेकर हर चीज हमको इस पर्यावरण से प्राप्त होती है।
3: बिल्कुल, और अब तो गुड्डू भाई ऊर्जा के स्रोत भी अगर हम सौर ऊर्जा की तरफ आ जाएं तो और अच्छा हो।
2: जी जी,
3: अब तो इतने सोलर प्लांट्स आ गए हैं और आ गए, जिससे हम इस दिशा में भी सोच सकते हैं।
2: जी जी बिल्कुल, चलने लगे हैं।
3: तो गुड्डू भाई आज कौन सा गाना था ध्यान में जब आपने फोन किया?
2: आज शायद मैम ये हमारा एक रिकॉर्ड है मैम, सहेली फिल्म का गीत है, पुरानी है कोई।
3: हाँ,
2: फिल्म
3: जी जी जी,
2: जो आजकल वो नए फिल्म में आ गया है, हम भूल गए रे हर बात मगर तेरा प्यार, वो एक्चुअली में पुराना गीत है, तो मेरे को वही गीत सुनना है अगर।
3: बहुत खूबसूरत गीत का अनुरोध आपकी तरफ से, और अब देर नहीं करते आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: आप पूरा भरोसा, क्योंकि ये है वीडा हीरो इलेक्ट्रिक ई वूटर स्कूटर हमारा, जो देता है फुल चार्ज में 100 किलोमीटर की रेंज, रिमूवेबल डुअल बैटरी और 13,900 रुपए की बचत के साथ टेंशन फ्री राइड। तो आइए हमारे प्रीमियर हीरो मकरोनिया या भगवानगंज हीरो शोरूम पर, संपर्क करें 7428274969। हीरो के भरोसे के साथ सागर अब वीडा चलाता है।
1: वीडा है तो वाइब है।
2: नमस्कार मैडम।
3: नमस्कार बंधु, कौन बोल रहे हैं आप?
2: चतुरा वीरखेड़ी से बोल रहा हूँ मैं, गोवर्धन मिस्त्री।
3: गोवर्धन जी
2: अहिरवार
3: जी, गोवर्धन अहिरवार जी, आपने फोन किया है। आज मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कितने जागरूक हैं।
2: हमने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तो आप पेड़ पक्षी के लिए पानी यानी रखे और हर प्रकार से रक्षा रखनी चाहिए आप आदमी के लिए।
3: बहुत अच्छी बात कर रहे हैं गोवर्धन भाई आप, क्योंकि देखिए जो जैव विविधता है ना, हमें हरेक का ध्यान रखना है, तभी तो पर्यावरण सही रहेगा, है ना। हम सब एक डोर से बंधे हुए हैं और हर कोई उपयोगी है। तो आपने बताया कि आप पेड़ पौधों के साथ साथ पक्षियों का भी ध्यान रख, बहुत अच्छी बात की है आपने। और बताएं आजकल ये गर्मी का जो वक्त है कैसा गुजर रहा है?
2: गर्मी तो मैम बहुत ज्यादा तेज पड़ रही है, धूप भी तेज पड़ रही है, बाहर हल कर दिए तो उड़ के निकलते यार। हाँ। में रहती तो कूलर पंखा के यूज करते।
3: और देखिए अगर पेड़ लगाए हों तो उसकी छाया तो अपने आप इतनी अच्छी होती है कि हम
2: छाँव में ही बैठते हैं, पानी आनी भी डालते हैं हम।
3: जी जी जी, एक बहुत प्यारी सी पंक्ति याद आ रही है आपकी बात से, जो पेड़ मेरे पिता ने आंगन में लगाया है, पिता के बाद पिता सा ही उसका साया है। तो वो साया देते हैं और बहुत अच्छा एहसास भी देते हैं। अब हम आपसे गोवर्धन भाई ये पूछना चाहते हैं कि आज कौन सा वो गाना है जो आपको सुनवाएं हम प्रोग्राम में?
2: नसीब फिल्म को सुनने है मेरा।
3: कौन सा गाना?
2: नसीब फिल्म को कौन सा भी सुनवा।
3: तो हम आपको सुनवाते हैं फिल्म नसीब से ये गीत।

0: कम खर्च और ज्यादा बचत के साथ सेफ्टी का पूरा भरोसा, क्योंकि ये है वीडा हीरो इलेक्ट्रिक ई वूटर स्कूटर हमारा, जो देता है फुल चार्ज में 100 किलोमीटर की रेंज, रिमूवेबल डुअल बैटरी और 13,900 रुपए की बचत के साथ टेंशन फ्री राइड। तो आइए हमारे प्रीमियर हीरो मकरोनिया या भगवानगंज हीरो शोरूम पर। संपर्क करें 7428274969। हीरो के भरोसे के साथ सागर अब वीडा चलाता है।
1: वीडा है तो वाइब है।
2: हेलो
3: हेलो,
2: किससे बात हो रही है हमारी?
3: मैम नमस्ते।
2: अरे नमस्ते भाई, कौन बोल रहे हैं?
3: जी अम्बेडकर चौक टैगर वार्ड खोरई से, राम सखी परमानंद।
2: राम सखी परमानंद जी, बड़े दिनों बाद आपसे बात हुई और बड़ा अच्छा लगा। घर परिवार में सब सही हैं?
3: बढ़िया है मैम, बढ़िया। आप लोग कैसे हैं?
2: हम सब बढ़िया हैं। और देखिए आकाशवाणी परिवार के आप बहुत पुराने श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरा परिवार आपका जो है वो रेडियो सुनता है बड़ी
3: जी मैम।
2: तो आजकल कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं राम सखी जी आपको?
3: आपके नए नए कार्यक्रम आए चालू भाई, बेबी अच्छे है, जैसे घर में सागर
2: जी
3: और भेंट वार्ता है, स्वास्थ्य वार्ता है।
2: हाँ हाँ हाँ, ये सब अच्छा लग रहा है।
3: हाँ,
2: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप अभी भी आकाशवाणी से उसी जज्बे के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज जो मुद्दे की बात हो रही है भाई, वो है पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित। क्या विचार है आपके इस बारे में?
3: हमारे यहाँ क्षेत्र में, हमारी खुराई में फर्स्ट प्लास्टिक बिल्कुल बंद हो गया।
2: क्या
3: पर्यावरण के,
2: क्या
3: हाँ जी,
2: बहुत शानदार बात है। इस बात की जितनी प्रशंसा की जाए भाई, उतनी ही कम है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक का उपयोग है ना, इसे आप हम सबको बिल्कुल रोकना होगा
3: जी।
2: ये पर्यावरण के लिए बड़ी घातक चीज है।
3: दूसरी बात है मैडम, तो हम तो थैला लेके जाते हैं सामान लेने, कपड़े का थैला रखे हैं।
2: जी जी जी। और राम सखी जी, अगर याद हो हमारे बचपन की बातें, तो हमारी मम्मी लोग और जो घर के बड़े थे वो सब पहले इतने प्यारे प्यारे थैले सीते थे
3: जी।
2: कपड़े के थैले सीते थे और रखते थे कि ये सब्जी का थैला है और इसमें मसालों का थैला है, इसमें आएगा, ऐसा होता था। रंग बिरंगे थैले हमें बचपन से याद है।
3: रंग बिरंगे थैले भी जब हम स्कूल जाते थे, पास में कक्षा में अच्छी तरह ध्यान है तो अच्छा पेंट के अच्छे बना देती मम्मी,
2: बिल्कुल
3: हाथ से बना के दे देती थी थैला, स्कूल में ले जाओ अपने बैग में ऐसे टांगे, कंधा पे हाफ पैंट पहनो शर्ट पहनो चली जाती।
2: कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। सही बात यह है कि तब से उन्होंने ये नींव डाली थी कि घर के पुराने जो पेंट हैं या कोई चीज बचा कपड़ा है उससे हम थैले बनाएं और थैलों के उपयोग की आदत डालें। देखिए कितनी अच्छी बातें आपने की हैं। अब ये भी जानना हमारा फर्ज है कि कौन सा गीत आज आपको सुनवाया जाए।
3: जी भूल चूक माफ फिल्म का कोई भी गीत।
2: भूल चूक माफ फिल्म का कोई भी गीत आपने सुनना चाहा है तो हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: कम खर्च और ज्यादा बचत के साथ सेफ्टी का पूरा भरोसा, क्योंकि ये है वीडा हीरो इलेक्ट्रिक ई वूटर स्कूटर हमारा, जो देता है फुल चार्ज में 100 किलोमीटर की रेंज, रिमूवेबल डुअल बैटरी और 13,900 रुपए की बचत के साथ टेंशन फ्री राइड। तो आइए हमारे प्रीमिया हीरो मकरोनिया या भगवानगंज हीरो शोरूम पर संपर्क करें 7428274969। हीरो के भरोसे के साथ सागर अब वीडा चलाता है।
1: वीडा है तो वाइब है।
2: हेलो,
3: नमस्ते मैडम।
2: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
3: जी मैडम, सोहित दुबे बरोदिया कला से बोल रहे हैं। मैडम
2: सोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में।
3: जी मैडम, पहली बार फोन लगा है मेरा।
2: क्या बात है, चलिए तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपका फोन लग गया।
3: थैंक यू मैडम।
2: अब ये बताइए सोहित के आप जहाँ रहते हैं बरोदिया कला में, पेड़ पौधे जल स्रोत इनकी क्या स्थिति है?
3: जी मैडम, अच्छा है। अपने यहाँ पे एक तालाब है और पेड़ पौधे भी लगे हैं, पार्क भी बना है।
2: आहा, क्या खुश नसीब है आप, फिर तो पक्षी भी आते होंगे।
3: जी मैडम, पक्षियों के लिए अभी पानी की व्यवस्था भी की है मैडम।
2: अच्छा ये बताओ, एक बात हम पूछना चाहते हैं सोहित से कि जैसे अपने घर से कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, कचरा निकलता है, तो उसका क्या करते हैं आप?
3: जी मैडम, कचरा गाड़ी आती है जो मतलब सुबह।
2: हाँ
3: अच्छा, हाँ उसी में डालते हैं मैडम।
2: बिल्कुल, क्योंकि देखिए पर्यावरण को अगर हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना होगा।
3: जी मैडम,
2: है ना, जब हम कचरे का सही प्रबंधन करेंगे तो हमारा पर्यावरण उससे भी सही रहता है।
3: जी मैडम,
2: तो ऐसा आप कर रहे हैं सुन के बड़ी खुशी हुई। और इस दिशा में क्या करते हैं सोहित आप?
3: जी मैडम, अपनी होटल है मैडम नाश्ता की, तो उसी पर रहते हैं।
2: अच्छा, उस पे रहते हैं। आजकल तो गर्मी का मौसम है तो चाय नाश्ते पे कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि अब दिन में लोग आ नहीं रहे?
3: नहीं मानो, सुबह शाम का ज्यादा रहता है, दोपहर में थोड़ा डाउन हुआ है।
2: हाँ हाँ, वो तो बहुत जरूरी भी है। देखिए अगर हम लोग इतनी लू में बाहर निकलेंगे तो काफी नुकसान हो सकता है, है ना सोहित?
3: जी मैडम।
2: तो चलिए, हिसाब तो बराबर ही हो जाता है, सुबह शाम में जब सुहावना सा मौसम हो जाता है तो सब आ जाते हैं।
3: जी मैडम
2: जी। अच्छा, कौन सा गाना सुनेंगे?
3: जी मैडम, कुमार सानू का कोई भी सुनवा लें।
2: हम आपकी पसंद पर कुमार सानू जी का ये गीत सुनवा रहे हैं।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक थे वीटा हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर सेंट्रल मोटर्स सागर।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
2: हेलो
3: हेलो,
2: कौन बोल रहे हैं?
3: मैं राजेश कुमार बोल रहा है, आप आकाशवाणी सागर से बोल रहे हैं?
2: बिल्कुल, आकाशवाणी सागर से हम बोल रहे हैं। कार्यक्रम है फोन करें गीत सुने।
3: इस समय तो मैं इंदौर से बोल रहा हूँ। मैं
2: जी जी,
3: बाकी रहने वाले में चढ़ा का हूँ क्योंकि मैं सागर चैनल सुनता हूँ।
2: जी जी,
3: तो रहने वाला वहीं का हूँ।
2: जी जी जी, बड़ा अच्छा लगा। देखिए, आप यहाँ टड़ा के रहने वाले हैं, आजकल इंदौर हैं और आकाशवाणी सागर के कार्यक्रमों से आप आज भी जुड़े हुए हैं।
3: हाँ,
2: तो कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं आपको राजेश जी?
3: हमें सागर के पूरे जितने प्रोग्राम आते हैं पूरे सुनता हूँ। ये अभी भी रेडियो चल रही है।
2: आवाज आ रही है हल्की हल्की मुझको? हाँ,
3: एक यार पहले लगता नहीं था सागर, अब एक यार मोबाइल चल गया तो मोबाइल पे एक दिन मैंने सर्च करके देखा तो बहुत सारे चैनल लगाए थे।
2: देखिए, और अब तो हमारा ऐप है, आप ऐप के माध्यम से भी।
3: मेरे को काफी खुशी हुई कि जहाँ हमारी जन्मभूमि है वहाँ के चैनल चल रहे हैं।
2: जी जी,
3: इसलिए मेरे को बहुत, क्योंकि बहुत पहले दिन में लोक संगीत का कार्यक्रम चला था अपना सागर का।
2: जी जी,
3: तो मैं रेडियो पे सुनता था पहले।
2: अच्छा, तो आपको लोकगीत का भी शौक है?
3: हाँ,
2: गीत संगीत से जुड़े कहलाए।
3: गीत संगीत से नहीं, एक में चल रही है फरमाइश का, वो बता रही है कि नंबर उसमें आ गया था।
2: हाँ हाँ हाँ, तो आपको नंबर मिल, बहुत अच्छा लगा भाई कि ऐसे जागरूक हमारे श्रोता हैं कि नंबर सुना प्रोग्राम में और आपने देखिए कॉल भी कर लिया। हम जो मुद्दे की बात कर रहे हैं वो पर्यावरण की सुरक्षा पर है, तो हम चाहते हैं कि राजेश भाई के भी मूल्यवान विचार हम तक पहुँचे, हमारे श्रोताओं तक पहुँचे।
3: हाँ, पर्यावरण सबसे ज्यादा तो अब आजकल अभी चल रहा है के डीजल पेट्रोल की चल रही महंगाई, वो दूसरे प्रदूषण सबसे ज्यादा उसी से दौड़ रही है।
2: बहुत सही कह रहे हैं, तो इससे बचत करने के लिए आप करते क्या है राजेश भाई?
3: उसकी बचत के लिए 90% तो मैं साइकिल यूज करता हूँ।
2: बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया।
3: कभी जब हमारा डबल काम होता है ना तो फिर गाड़ी उठाता हूँ, क्योंकि फिर उसके समय के हिसाब से उठाना पड़ती है।
2: बहुत सही कह रहे हैं, और जब हम एक ही जगह से कई लोग साथ जा रहे हो तो ये भी हो सकता है साझा वाहन।
3: मैडम जी, आजकल क्या है व्यवस्था साइकिल में भी हो गई है, जैसे इलेक्ट्रिक वो मोटर लग रही है उसमें।
2: जी जी जी,
3: लाइट चार्जिंग वाले,
2: बहुत अच्छा
3: तो लगा। इतना प्रदूषण नहीं दौड़ता
2: है। क्या बात है राजेश जी, हम सबको इस दिशा में सोचना होगा और अपने पर्यावरण की सुरक्षा हमको खुद कर। और अब गीत की बारी आ पहुंची है, कौन सा वो प्यारा सा गाना है जो राजेश जी सुनेंगे और हम सब भी सुनेंगे साथ में?
3: जी मैडम, अपने पसंद का सुना दो। मेरी मम्मी का पसंद का था
2: जी
3: संतोष सिंह माता की आरती सिंह, बाकी उनका स्वर्गवास हो गया 2003 में।
2: तो चलिए उनको याद करते हुए जय संतोषी माँ फिल्म का ये भजन हम आप तक पहुँचा रहे हैं।

हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
2: हेलो,
3: कौन बोल रहे हैं
2: आप?
3: अभिषेक, कहाँ रहते हैं आप?
2: मैं सागर का रहने वाला हूँ, बट अभी इंदौर में रहता हूँ।
3: अच्छा, तो भाई क्या इंदौर में भी आप हमारे आकाशवाणी सागर के कार्यक्रमों को सुनते हैं?
2: हाँ मैम, सुनते हैं, जैसे कभी रेडियो पे आते हैं या फिर नंबर पे कॉल करके सुनते हैं।
3: आज जो मुद्दे की बात चल रही है वो अभिषेक भाई चल रही है पर्यावरण की सुरक्षा, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में?
2: मैम, पर्यावरण की सुरक्षा में तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि सब अपने आस पास की जो गंदगी है उसको साफ करें, अपने भारत को स्वच्छ रखें। और जो भी अभी जैसे पानी को लेके अभी थोड़ी बहुत समस्या देखने को आ रही, न्यूज में भी बहुत जगह, तो मैं बोलूंगा कि पानी को सेव करें।
3: देखिए, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है अभिषेक जी, क्योंकि हम पर्यावरण एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है जिसमें बहुत सारे बिंदु हैं। जैसे आपने कहा कि कचरा प्रबंधन करें, साथ ही साथ जल का संरक्षण करें, हाँ पेड़ पौधे लगाएं, ना जैव विविधता को संरक्षित करें, हम ऊर्जा की बचत करें, प्रदूषण ना होने दें, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनके बारे में हमको सोचना होगा। प्लास्टिक का बिल्कुल उपयोग ना करें। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप काफी जागरूक हैं और आप इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। कौन सा वो गीत है अभिषेक जी जो आप सुनना चाहते हैं आज?
2: मैम, एक गाना है तू लग जा गले, वो गाना सुनना चाहूंगा।
3: किस फिल्म का है?
2: लता मंगेशकर की आवाज में है।
3: अच्छा, ये मेरे ख्याल से वो कौन थी फिल्म का, लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो।
2: हाँ हाँ बिल्कुल
3: बिल्कुल, लता जी की आवाज में ये सुमधुर गीत हम पहुंचा रहे हैं आप तक।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
5: आकाशवाणी सागर से बोल रहे हैं, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
6: अच्छा अच्छा मैडम, नमस्ते मैडम।
5: नमस्ते, हमारी बात किससे हो रही है?
6: हम बरारू से बोल रहे हैं, गणेश प्रसाद प्रजापति।
5: दिनेश जी ने बरारू से फोन किया, तो भाई हम पूछेंगे कि बरारू में पेड़ पौधे पक्षी जल स्रोत प्रकृति का क्या क्या नजारा है?
6: बरारू मैडम क्या है, दर्शन मंदिर है तो वहाँ दर्शन करने जाते हैं।
5: प्रकृति को सहेजने में, पेड़ पौधे लगाने में भूमिका अदा करते हैं?
6: क्योंकि मैडम हम तो शिकारी से जाना जुड़े हैं, धार्मिक प्रवृत्ति है।
5: जी जी जी, तो जो आसपास पेड़ पौधे हैं उन्हें सुरक्षित रखते हैं?
6: हाँ मैडम, सब सुरक्षित है।
5: और हमारे यहाँ ये भी बताया गया है कि हर जीव की रक्षा करना, तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो जीव जंतु की रक्षा की दिशा में कुछ करते हैं?
6: जी मैडम।
5: तो चलिए, आपसे बात करके काफी अच्छा लग रहा है। कौन सा गीत है दिनेश जी जो आप सुनना चाहेंगे?
6: भोले बाबा को सुनना है हमारे लिए मैडम, शिव भजन सुनना है शिव जी का।
5: आपको बिल्कुल हम शिव जी का बहुत अच्छा सा भजन सुना रहे हैं। आपने प्रोग्राम में फोन लगाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
5: मुद्दे की बात। अब आपको इंतजार होगा कि क्या होगी अगले सप्ताह मुद्दे की बात। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा ये विषय पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ रहेगा। बेहतर पर्यावरण से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, तो पर्यावरण अच्छा हो तो हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे अगले कार्यक्रम में। तो हमें इंतजार रहेगा आपके फोन कॉल्स का। आपको नंबर बताते चलें, 240 800

0: इसमें रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में एक आयोजन हुआ था जहां दो नाट्य प्रस्तुतियां हम आमंत्रित श्रोताओं के सामने लेकर आए थे।
1: बिल्कुल।
0: और इसमें से पहली प्रस्तुति कौन सी थी?
1: सास बहू और हेलो फरमाइश।
0: जी हाँ, टाइटल से, शीर्षक से ही आपके समझ में आ गया होगा कि कितना मजेदार ये रहा होगा।
1: बिल्कुल, शीर्षक था सास बहू और हेलो फरमाइश। लेखक यूनुस खान, प्रतिभागी कलाकार ममता सिंह, मंदाकिनी जोशी, अनुश्री पाठक, यूनुस खान और जयंत पात्रिकर।
0: आइए सुनते।
2: हेलो
3: हेलो फरमाइश।

0: समझ में नहीं आता इन लोगों का कॉल कैसे लग जाता है। मैं तो 2 साल से कोशिश कर रही हूँ पर मुआ ये फोन लगता ही नहीं। जाने विविध भारती वालों ने क्या सेटिंग कर रखी है, देखना एक दिन मेरा फोन जरूर लगेगा। जरूर मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी। अरे बहू,
1: हाँ?
0: मेरी डायरी कहाँ रख दी तूने? कितनी बार कहा है मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। बहू
1: हाँ?
0: डायरी ला कर दे मेरी।
1: माँ जी मैंने नहीं ली ना आपकी डायरी, हाथ भी नहीं लगाया मैंने। वैसे आपको बता दूं सासू माँ, जिस काम के लिए आप डायरी खोज रही हैं ना वो होगा नहीं। हाँ
0: अरे काली जबान, जब देखो उल्टा ही बोलती है।
1: हुँ?
0: अच्छा बता कौन सा काम है?
1: अरे वही हेलो फरमाइश में फोन लगाने का काम
0: है।
1: अब हम तो क्या, पूरा मोहल्ला जानता है कि सुनीता देवी किसके पीछे पड़ी है।
0: आग लगे तेरी जबान को। इस उम्र में मैं किसके पीछे पड़ूंगी? किसी ऐसे वैसे के पीछे नहीं पड़ी हूँ, ये हेलो फरमाइश है। विविध भारती का हेलो फरमाइश, बड़ी मुश्किल से फोन लगता है इसमें।
1: अरे मुश्किल से फोन लगता है मत बोलिए सासू माँ, ये बोलिए कि फोन लगता ही नहीं है। 3 साल से तो मैं आपको कोशिश करते हुए देख रही हूँ, आज तक तो लगा नहीं और न ही लगेगा, देख लेना। हाँ
0: बकवास बंद कर और मेरा नाश्ता ला। कितनी बार कहा है भारत की गूंज से पहले नाश्ता, विविध भारती की गीत माला से पहले लंच और हवा महल से पहले मेरा डिनर दे दिया कर, पर हमेशा देर कर देती है तू।
1: हाँ सासू माँ मैं देरी करती नहीं, देर हो जाती है आपके पुकारने से पहले।
0: दफा हो जा,
1: नौटंकी मेरी जल जाती है।
0: दफा हो जा और जल्दी से नाश्ता ले आ। मैं जरा हेलो फरमाइश में कॉल लगा के देखती हूँ। 02225467।
1: आप जिस नंबर से संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें।
2: द नंबर यू हैव डायल्ड इज बिजी, प्लीज कॉल आफ्टर सम टाइम।
1: कहा था ना हमने सासू माँ ये फोन लगेगा नहीं। वैसे अगर फोन लग भी गया तो आप कौन से गाने की फरमाइश करेंगे ये तो बताओ। अच्छा रुको रुको, सुनो आइडिया सासू माँ, एक आइडिया, एक काम करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, मैं बनती हूँ अनाउंसर और आप बनना कॉलर।
0: खामोश, तुम कैसे बनोगी अनाउंसर?
1: क्यों?
0: और मैं कैसे बनूंगी कॉलर?
1: क्यों क्यों क्यों क्यों
0: क्यों क्यों क्यों क्यों? बड़ा कौन?
1: आप।
0: सास कौन?
1: आप।
0: तो सुनीता कौन?
1: आप।
0: तो अनाउंसर बनेगा कौन?
1: ना ना ना ना ना ना ना, एक मिनट। हाँ एक मिनट, फिर से करते हैं। अच्छा बताइए सुनीता देवी कौन?
0: मैं।
1: और विविध भारती की फैन कौन?
0: मैं।
1: इतने दिलों से कॉल कौन लगा रहा है?
0: मैं।
1: तो कॉलर बनेगा कौन?
0: मैं। करम जली डांस पीटी, ऐसा नहीं होगा। देख तू बहू है, बहू की तरह रह।
2: अरे बहू क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने?
1: पिताजी देखिए ना, अम्मा फिर पगला गई है, वो कहती है उन्हें विविध भारती पर हेलो फरमाइश करना है।
0: न्यूज चैनल की तरह बात को तोड़ मरोड़ कर पेश मत किया कर। अम्मा को विविध भारती पर

0: हेलो फरमाइश नहीं करना है, हेलो फरमाइश में फोन करना है, समझी?
1: तुम लोगों से तो बस बहस करवा लो।
2: पिताजी वही तो, बहस क्यों करना, चलिए ना पिताजी प्रैक्टिस करते हैं ना।
3: अरे वकालत की प्रैक्टिस तो हम कब की छोड़ चुके बहू।
2: अरे पिताजी वकालत की प्रैक्टिस थोड़ी करनी है, हेलो फरमाइश की प्रैक्टिस करनी है, प्लीज मान जाइए ना पिताजी, मान जाइए ना। तो चलिए आप दोनों बनिए कॉलर और हम बनते हैं अनाउंसर, ठीक है? हम बनेंगे टिम्मी मिश्रा। अच्छा शुरू करते हैं। फोन की घंटी बजी नहीं है अभी तक।
3: ट्रेन ट्रेन
4: ट्रेन ट्रेन
5: ट्रेन ट्रेन ट्रेन।
2: हेलो हेलो, हाँ हेलो फरमाइश, नमस्ते, हम हैं टिम्मी मिश्रा, हम ना आज विविध भारती पर हेलो फरमाइश कर रहे हैं, बताइए आप कौन, कहाँ से बोल रहे हैं, आपको कौन सा गाना सुनना है, आपके शहर का मौसम कैसा है, आपके घर में कौन कौन है, आपको कौन कौन से कार्यक्रम पसंद है, आप भी अपने शहर में किन दोस्तों के नाम लेना चाहते हैं।
1: चुप, एकदम चुप, खामोश, एक भी शब्द बोला तो ठीक नहीं होगा।
2: पिताजी वो हेलो फरमाइश
1: ना पति को बोलने देती है ना ससुर को, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश।
0: इसीलिए तो हम कह रहे थे कि हम बनेंगे अनाउंसर, इस घर में हमसे ज्यादा विविध भारती कौन सुनता है भला।
1: तुम बीच में कहां से टपकी? अरे जिंदगी भर तुमने बस फरमाइश की है और हमने पूरी की है, तो आज भी फरमाइश पूरी करने का काम हम करेंगे।
3: ट्रेन ट्रेन
4: ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन।
3: स्टूडियो में धीमी धीमी लाइट, मौसम कैसा है ये नहीं बता सकता क्योंकि कमेंट्री बॉक्स से बाहर का मौसम नहीं दिख रहा, स्टूडियो के बाहर का नजारा यहां से दिखता नहीं है। हाँ तो स्टूडियो में धीमी धीमी लाइट, अगले कॉल के लिए मैदान एकदम साफ, एक इंजीनियर फर्स्ट स्लिप में, एडिटर सेकंड स्लिप में और प्रोड्यूसर गली में खड़ा है और कुछ ही दर्शक मौजूद हैं जिनमें उत्साह की लहर नजर आ रही है। कॉलर नई बॉल के साथ तैयार, इस बीच रिंग टोन बजती है।
0: सुनो जी,
1: हेलो,
0: सुनो जी चुप रहो, बकवास बंद करो, ऐसे करते हैं हेलो फरमाइश, ऐसे करते हैं श्रोताओं से बात। अरे इसे क्रिकेट की कमेंट्री बना दिया है तुमने, सारा दिन बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, सारा जीवन क्रिकेट क्रिकेट। मैं तो तंग आ चुकी हूँ क्रिकेट के इस पागलपन से। इस घर में दो पागल हैं, एक ये है क्रिकेट प्रेमी,
1: एक शानदार बॉल और ये बल्लेबाज क्लीन बॉल,
0: और दूसरी है ये सिनेमा प्रेमी।
2: सौ सौ साल जियो हमारी सासू जी, हमको लागे मौ से प्यारी सासू जी, मेरी सासू माँ।
1: शट अप
0: शट अप। बहुत हो गया बहुत हो गया, इतने दिनों से कॉल लगा रही हूँ, हेलो फरमाइश में तो कॉल लगता ही नहीं है, मुझे ही पता लगाना होगा कि आखिर चक्कर क्या है, इसीलिए तो मुंबई आ गई हूँ। चुपके से चलती हूँ विविध भारती के अंदर, हेलो फरमाइश के स्टूडियो में, और पता लगाती हूँ कि आखिर चक्कर क्या है। लोग सोचेंगे कि आधी रात को ये बुढ़िया कहाँ चली आ रही है। अरे वाह अरे वाह, यहाँ तो फोन की रिंग लगातार बजे जा रही है, वाह वाह, उठाऊं क्या, उठा लेती हूँ, चलो उठाती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।
2: देवा देवा, मैं किती वेळ फोन करत आहे, अरे तुमचा फोन कधीच वाजत नाही, काय झालं, तुम्ही काय केलं तुमच्या मशीनला, तुम्हाला काय लोकांना त्रास द्यायलाच आवडतं का?
0: नमस्ते नमस्ते, हेलो फरमाइश, अरे सुनिए हेलो फरमाइश हिंदी कार्यक्रम है, समझिए आप, आपको हिंदी में बात करनी चाहिए, आप कौन बोल रही हैं और क्या कहना चाहती हैं आप?
2: अरे देवा लो, हिंदी में बोल देती है मैं, मी मृणमयी, यानी कि मैं मृणमयी बोल रही हूँ जलगांव से,
0: जलगांव से पानी गांव से।
2: पहले पहले तो ये बोलो तुमचा फोन कधीच वाजत नहीं, यानी कि तुम्हारा फोन लगता काय को नहीं,
0: क्या
2: मैं कितनी बार फोन करता है,
0: अरे
2: अरे यानी कि मैं कितनी देर से फोन कर रही हूँ,
0: क्या
2: अरे तुझा मशीन लगाए के लो तू,
0: अरे
2: अरे यानी कि आपने अपने मशीन को क्या

0: रखा है?
1: ये अनुवाद भी कर रही है?
0: अरे तुम्हाला लोकांना त्रास द्यायला आवडत का? क्या की लोगों को चिढ़ाने में मजा आता है क्या तुमको?
1: अरे ये तो अनुवादक है। हे भगवान, हे भगवान, दो दो भाषाएं मत बोलिए ना प्लीज। देखिए देखिए, देश भर के श्रोता कॉल करते हैं ना, इसीलिए आपका कॉल नहीं लगता है ना।
0: अरे मेरा ही कॉल क्यों नहीं लगता, यानी कि बाकी सबका क्यों लगता है? क्यों क्यों क्यों?
1: वो क्या है ना,
0: बहाने बनाओ का।
1: क्या है ना,
0: यानी कि बहाने मत बनाओ।
1: हे भगवान, हे भगवान, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
0: अरे आधीच सांगितलं होतं मी।
1: फिर मराठी?
0: यानी कि मैंने तो पहले ही बताया था आपको।
1: अरे अनुवाद भी कर दिया।
0: मी मृणमयी, यानी कि मेरा नाम है मृणमयी।
1: अरे
0: मृणमयी मई जलगांव से बोलता है, यानी कि मैं जलगांव से बोल रही हूँ, समझा?
1: समझा समझा समझा। मृणमयी, मृणमयी कितना प्यारा नाम है ना।
0: अरे बाबा, मृणमयी नहीं, मृणमयी।
1: बाप रे,
0: आया क्या समझ में? यानी कि मृणमयी।
1: अरे सुनिए सुनिए, मृणमयी मृणमयी ही सही होता है, मृणमयी नहीं।
0: आता तुम्ही मला शिकवाल, यानी कि तुम सिखाओगी मुझे मेरा नाम क्या है?
1: अरे अरे नहीं भाई, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है जी।
0: तो फिर कैसी बात है, यानी कि क्या बोलती है आप?
1: अच्छा अच्छा, ये बताइए कि आपका दिन कैसा जा रहा है आज?
0: बहुत बकवास
1: है,
0: एकदम एकदम बकवास जा रहा है। एक तो मैं 2 साल से फोन लगा रही हूँ, फोन है कि लगता ही नहीं है, यानी कि आप लगा है तो तुम बकवास किए जा रही हो।
1: बापरे,
0: कोई अच्छी बात करना नहीं आता क्या तुमको?
1: अरे
0: क्या नाम है तुम्हारा?
1: जी मेरा मेरा नाम है समता सिंह।
0: अच्छा, तो तुम हो समता सिंह?
1: जी मैं हूँ समता सिंह।
0: जी जी, क्या लगा रखा है? अरे जब भी तुम फोन इन प्रोग्राम करती हो मेरा कॉल क्यों नहीं लगता? यानी कि तुम्ही ने कुछ कर रखा है मशीन में।
1: क्या
0: है? अरे एक दिन मैं वहाँ आ जाऊंगी, यानी कि सर फोड़ दूंगी तुम्हारा वहाँ आके।
1: अरे बाप रे, अरे रे, सुनिए तो, ऐसे मार पीट की बात नहीं करते हैं। बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
0: अरे अरे, गाना तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले बताओ यानी कि मेरा फोन लगता क्यों नहीं है?
1: मुझे क्या पता, मेरा मतलब मुझे नहीं मालूम।
0: अरे तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? चलो चलो, अपने बॉस का नंबर दो।
1: बॉस का नंबर मतलब क्या मतलब?
0: बॉस का नंबर मतलब तुम्हारे बॉस का नंबर, यानी कि तुम्हारे साहब का नंबर।
1: ओ अरे अरे, वो सिर्फ छोड़िए ना, असल में मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
0: आपने सुना नहीं, पहले अपने बॉस का नंबर दो। बॉस का नंबर?
1: बाप रे, ये तो बड़ी खतरनाक कॉलर है, फोन काट देती हूँ। बाप रे, कितने खतरनाक लोग कॉल करते हैं यहाँ, मैं तो सचमुच में फंस गई, बड़ा ही मुश्किल काम है ये सचमुच। हे भगवान, हे भगवान, क्या करूं? फिर फोन बजने लगा। एक काम करती हूँ, फिर उठा लेती हूँ फोन। हेलो हेलो हेलो, फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं?
2: आप बोलती हो तो मिठास घुलती है, आप बोलती हो तो सूरज चमकता है, आप बोलती हो तो हम सुनते हैं, आप बोलती हो तो बोलती ही रहती हो। आवाज की दुनिया के दोस्त समता सिंह को इंदौर से सलीम आलियन वन का सलाम। अब बस एक कर दीजिए काम, हमको दे दीजिए इनाम, गाना सुनवा दीजिए जनाम
1: जनाम।
3: जनाम, ये जनाम क्या होता है?
2: जी वो तो बस तुक मिलाने के लिए जनाम कर दिया। जी जनाब हैगा असल में। हाँ।
3: और ये सलीम ऑल इन वन का क्या मतलब है?
2: जी, मैं हूँ ऑल इन वन, यानी मैं ही टेलर, मैं ही प्लम्बर, मैं ही मैकेनिक और मैं ही ड्राइवर।
3: अच्छा,
2: घर वालों जो भी करवाना हो काम, गाना सुनवा दो जनाम।
3: है? फिर जनाम हदे जी, अरे कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
2: हाजी सुनना तो बाद में चाहते हैं, पहले तो सुनवाना चाहते हैं। हाँ बोलो। हाँ
3: हाँ
2: सुनवाऊं?
3: हाँ।
2: अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अशकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के, कर दिया खून देखो मेरे एतबार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सीला दिया। अच्छा लगा?
3: बहुत अच्छा लगा। अच्छा सीला दिया तूने मेरे प्यार का, पूरा गाना तो आपने सुनवा दिया, अब हम क्या सुनवाएं आपको?
2: हाजी हाजी ऐसा कीजिए, मुझे आप कुछ मत सुनवाइए, हमें एक और गाना सुनवा देते हैं आपको।
3: हाँ?
2: तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है,
3: नाता
2: ये
3: है।
2: नाता है।
3: अरे मिस्टर ऑल इन वन, अरे मिस्टर ऑल इन वन, सुनिए तो।
2: कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे, दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। अजी वाह वाह तो कीजिए, मिटाने।

0: mi piace
1: carriesca, carriesca fun. Dice mi piace carita ta. गाना सुनना चाहते हैं कि सुनवाना चाहते हैं ये तक क्लियर नहीं है इसका। ये पता नहीं कहाँ से आ गया ये गायक। ये विविध भारती वालों का काम तो सचमुच बहुत मुश्किल है यार। मुझे तो जरा सी देर में समझ में आ गया कि कैसे कैसे संभालना पड़ता है।
2: ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन,
1: अरे फिर बजने लगे घंटे। अब क्या करूं? फिर लेती हूँ, फिर लेती हूँ, एक कॉल फिर लेती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश। हेलो जी, मैं समता सिंह बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं जी?
3: बोल नहीं रहे हैं, है? बोल रही हूँ।
1: अरे बाप रे। जी हाँ जी हाँ, हेलो फरमाइश, बताइए आपको कौन सा गाना सुनना है, कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप
3: हेलो फरमाइश से बोल रही हैं क्या?
1: हाँ
3: हेलो, गाना तो हम बाद में सुनेंगे, पहले तो हमें आपसे कुछ बात करनी है।
1: बात? हाँ हाँ कीजिए कीजिए, जरूर कीजिए।
3: मैं पुणे से मनीषा बोल रही हूँ, मुझे अपनी सास की शिकायत करनी है आपके यहाँ।
1: है? सास की शिकायत?
3: हाँ,
1: पर ये कोई सास शिकायत केंद्र नहीं है, ये तो हेलो फरमाइश है।
3: तो क्या हुआ? आप लोग हमेशा कहते हैं ना, कहिए अपने दिल की बात
1: है,
3: तो आप सुनिए, यही है मेरे दिल की बात। मेरी सास ने मेरे दिल की वाट लगा रखी है, खड़ूस कहीं की।
1: अरे अरे अरे अरे, ऐसा नहीं बोलते। हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो, आपकी सास आपका भला चाहती हो।
3: गलत फहमी? अच्छा बताओ, किसकी सास है, आपकी या मेरी?
1: आपकी।
3: तो सच किसे पता होगा?
1: आपको।
3: तो कौन बोलेगा
1: आप?
3: और सुनेगा कौन?
1: आप वो मेरा मतलब माँ, मैं सुनूंगी।
3: सिर्फ सुनना नहीं है, हर बात पर हाँ हाँ भी करना है आपको।
1: हाँ से आ गई है कॉलर। हाँ
3: देखो, अब मुकर नहीं सकती आप।
1: हाँ
3: मेरी सास खड़ूस है, बोलो हाँ।
1: अरे हम हाँ कैसे कह सकते हैं, हमें क्या पता?
3: अभी अभी आपने कबूल किया कि हमें सब पता है, तो बोलो हाँ।
1: हाँ
3: मेरी सास खड़ूस है।
1: हाँ,
3: हाँ, वो मुझे सताती हाँ, है।
1: अब मैं ये कैसे कह दूँ?
3: चुप चुप, बोलो हाँ वरना।
1: हाँ हाँ भाई हाँ।
3: उसकी कितनी बुराई की जाए वो कम है, बोलो हाँ।
1: आप गाने की फरमाइश कीजिए ना, हमसे हाँ हाँ क्यों बुलवा रही है, कहाँ से आ गई आप?
3: जितना कह रही हूँ करती जाओ, समझी? बोलो हाँ
1: हाँ हाँ हाँ।
3: घर के सारे काम अब तक मैंने किए, अब मेरी सास करेगी, बोलो हाँ।
1: अरे ये मैं कैसे कह दूँ?
3: देखो मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, आपने एक्सेप्ट किया है कि आपको हाँ बोलनी है।
1: हाँ
3: तो अब सारे काम सास से करवाने चाहिए।
1: हाँ हाँ,
3: और उनके हर काम में मीन मेख निकालनी चाहिए कि नहीं?
1: अरे पर ये तो हेलो फरमाइश है बाबा।
3: बकवास मत करो, सीधे बोलो, समझी तुम?
1: अरे हाँ हाँ हाँ,
3: हर वक्त सास को कोसना भी चाहिए।
1: हाँ
3: बोलो हाँ।
1: नहीं पर हाँ,
3: सास से हमेशा डांट कर बात करनी चाहिए।
1: हाँ हाँ हाँ, अरे अरे बाप रे, मैं कहाँ फंस गई, कहाँ फंस गए रे बाबा। हाँ हाँ हाँ,
3: और उन्हें घर से निकाल देना चाहिए ना।
1: अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
3: हेलो
1: भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ना से रोग हरे से पीरा, ना से रोग हरे से पीरा, जपत निरंतर हनुमवीरा। ना से रोग हरे से पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन नाम जो लावे। फोन काट देती हूँ, फोन काटने देती हूँ, बड़ी खतरनाक कॉलर थी, कहाँ से आगे चिल्लाती हुई है। मर्ज करम जली नास पीटी, मर गए। ये मैं कहाँ फंस गई थी, ओफो। मैंने तो सोचा था कि हेलो फरमाइश बड़ा ही मजेदार प्रोग्राम है, पर यहाँ तो बाप रे, ये कॉल लूं, ये कॉल लूं कि नहीं लूं? हम लेती हूँ। हेलो हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं?
4: सासू जी, आठ बज गए हैं, उठ जाइए ना।
1: मैं समता सिंह बोल रही हूँ।
4: समता सिंह? अरे तबीयत तो ठीक है आपकी सासू माँ?
1: आप कौन बोल रही हैं?
4: हे भगवान, क्या हुआ है इन्हें? बताइए कौन सा गाना? अरे क्या कह रही है ये?
1: बताइए, मैं समता सिंह बोल रही हूँ। आप बताइए कि आपको कौन सा गाना सुनना है।
4: हे भगवान, लगता है पानी डालकर जगाना होगा सासू माँ को। ये लो
5: छुपा।
1: अरे ये क्या कर रहा? करप चली नाथपीटी, ये क्या क्या? मेरे ऊपर पानी क्यों डाला तूने?
4: अरे तो क्या करती सासू माँ? हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रही हैं? समता सिंह है, ये क्या था सब?
1: अरे लगता है मैं कोई सपना देख रही थी।
4: हेलो फरमाइश का सपना?
1: पता नहीं मेरा ये सपना कब सच होगा।
6: सौ सौ साल पगलाओ
4: हमारी सासू जी।
6: हेलो फरमाइश में फोन लगाओ
4: सासू जी।
6: सौ सौ साल पगलाओ
4: हमारी सासू जी।
6: हेलो फरमाइश में फोन लगाओ
4: सासू जी।
1: हेलो फरमाइश, मैं समता सिंह।
7: हेलो फरमाइश।
8: था प्रहसन सास बहु और हेलो फरमाइश जिसे यूनुस खान ने लिखा था और उसमें हम और आप शामिल थे। उसके साथ मनुश्री पाठक जी थी, ममता सिंह जी भी थी और यूनुस खान खुद भी थे इसमें। और इस दिन एक और प्रस्तुति हुई थी। हम जानते हैं कि नाट्य प्रस्तुतियां केवल नाटक से नहीं होती, कई बार किसी कोई लेख हो, कोई कविता हो, इससे प्रेरणा लेकर भी नाटक लिखे जाते हैं।
9: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी दिन एक और नाट्य प्रस्तुति हुई थी जो दिनेश चौधरी के लेख का नाट्य रूपांतरण था।
8: जी हाँ।
9: और जिसे प्रस्तुत किया था जाने माने अभिनेता नरोत्तम बेन ने,
8: और उसका शीर्षक था ये उन दिनों की बात है। तो मंदाकिनी जी, ये जो शीर्षक है ये उन दिनों की बात है। असल में उन दिनों की बात है जब हम केवल और केवल सिनेमा देखा करते थे।
9: बिल्कुल
8: हाँ। और सिनेमा देखने के लिए किस तरह से प्लानिंग होती थी, कैसे टिकट निकाला जाता था, और फिर सिनेमा देखने के बाद में कैसे आकर के उसकी बड़ी वर्णनात्मक शैली में हम उसकी कहानी सुनाया करते थे।
9: बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ जयंत जी कि ये उन दिनों की बात है जब तांगे में बैठकर कोई व्यक्ति जोर जोर से अनाउंसमेंट किया करता था, आइए फिल्म देखने आइए, इस तरह की उद्घोषणा

0: जी विशेष फरमाइश पर आपके शहर में दोबारा आइए आइए ब्रांड न्यू प्रिंट में कल्पना एयर कूल्ड में एक बार फिर से जुबेल थीप देवानंद वहीदा रहमान शानदार संगीत से भरपूर जुबेल थीप पहली बार देखिए अशोक कुमार को गद्दार के रोल में। आखिरी तक आपको पता नहीं चलेगा कि पिक्चर के गद्दार है अशोक कुमार, तो देखना नहीं भूलिए जुबेल थीप आपकी विशेष फरमाइश पे ब्रांड न्यू प्रिंट में कल्पना एयर कूल्ड में जुबेल थीप।
1: उन दिनों की बात है जब कोई शहर या कस्बा कितना बड़ा है इस बात का अंदाजा इससे लगाया जाता था कि वहां कितने सिनेमा हॉल हैं। जिनके पास 8-10 होते वो मेट्रो वाली ठसन मारते, एक से एक सिनेमा हॉल का ऐसा खाका खींचते थे जैसे ताजमहल के प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड भी ना कर पाते हों। गप गोष्ठियों के वो शान होते थे और अमूमन हमेशा ही महफिल लूट ले जाते थे। जिनके पास इतनी ना हो उन्हें बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता, वो जब तब कहते कि भाई हमारे यहां तो बस एक ही टॉकीज है, और उनके भीगे हुए स्वरों से ऐसा प्रतीत होता कि मानो वो मूलतः उन्हीं का कसूर हो। और कुछ बे औलाद किस्म के भी होते जिनके नसीब में एक भी सिनेमा हॉल नहीं बदा होता। लोग दिलासा देते कि फिक्र ना करो भाई, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। अलबत्ता इसके लिए किसी ने कोई झाड़ फूंक करवाई हो ऐसी कोई इत्तला मेरे पास अभी तक तो नहीं है। अपने यहां क्या था कि अपने यहां तो दो थी, अपने दो टॉकीज थी और एक बंद पड़ी थी। कोई पूछता कि तुम

कोई और फिल्म चला दी जाती। इस छापामार कार्रवाई से शत्रु भौचक रह जाता और नगर में कई दिनों तक इसकी चर्चा बनी रहती और कई बार तो फिल्म को जबरन हिट कराने के लिए कृपया फिल्म के गानों और डायलॉग पर पैसे ना फेंकें, ऐसी उद्घोषणाएं भी चलाई जाती, जिससे यह साबित होता है कि जुमला संस्कृति कोई आज की विधा नहीं है और इसकी जड़ें अपने महान देश में आदिकाल से मौजूद रही हैं। तो दोनों टॉकीज के सामने की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं तो बाईं ओर जो थी वो मुकुट टॉकीज थी और दाईं ओर विष्णु टॉकीज थी। नाम से जाहिर होता कि मतलब लोग धार्मिक होते थे, धार्मिक भावना से अपने काम करते थे, तो यही नाम भी वो उस तरह से रख लिया जाता था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि उस समय फिल्म देखना भी अपने आप में एक धर्म होता था, बड़ी शिद्दत से देखा करते थे फिल्म। इसीलिए फिल्म शुरू होने से पहले आरती बजती थी, मुकुट टॉकीज में बजती थी वो, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। और विष्णु में बजती थी, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मतलब क्या माहौल होता था फिल्मों का, आप कुछ सोचिए। अच्छा, सामान्यतः मुकुट टॉकीज में ओल्ड क्लासिकल टाइप की फिल्म रखती थी और विष्णु में नई। टॉकीजों की भी होती ना कैटेगरी, भाई यहाँ ऐसी देखेंगे वहां वैसी देखेंगे, तो लोगों की मानसिकता वैसी बन जाती है। तो सकल वार्षिक घरेलू आय, परिवार के वयस्क अवयस्क सदस्यों की संख्या और तत्कालीन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर तब घरों में सिनेमा देखने का अलग से बजट होता था। हम लोगों को आमतौर पर महीने में एक बार फिल्म देखने की अनुमति होती थी, एक बार देख लिया करते थे, जिनमें से किसी भी प्रकार का संशोधन सामान्य प्रक्रियाओं के द्वारा संभव नहीं था। मेहमान के रूप में जब कभी जीजा फूफा चाचा ताऊ वगैरह आ जाते थे ना, तब बच्चे बड़े खुश होते थे कि अतिरिक्त फिल्म देखने का सुयोग बनेगा और ये राशि जो है अमूमन उन्हीं की जेब से खर्च करवाई जाती थी। अच्छा, जेब खर्च के चोचले तब नहीं होते थे, लौट कर आए हुए खुले पैसों में से कभी मतलब 5-10 पैसे मिल जाए तो उन्हें जतन से संभाल कर रख लिया जाता था। तब थर्ड क्लास की टिकट जो थी वो 60 पैसे में मिल जाती थी। बात वालों ने शायद मेरे ख्याल से 1 रुपए 60 पैसे इस तरह का भी देखा होगा, तो 60 पैसे में मिल जाती थी। 50 या 55 पैसे इकट्ठे होते ना होते सब्र का बांध टूट जाता, सिनेमा हॉल पहुंचकर किसी दयालु मित्र की तलाश की जाती जो खुद भी दीगर मौकों पर जरूरतमंद हो सकता था या जिस पर अपना कोई पुराना एहसान होता था, है ना। उससे कहा जाता कि भाई यार 10 सी कम पड़ रही है, मिला दे भाई, मिला दे यार, सुन तो समझना, 10 सी कम पड़ रही मिला दे यार। और वो क्या करता, वो जो है मान जाता था और इस तरह से शांतिपूर्ण से अस्तित्व की भावना के प्रचार का वाहक बन जाता था। हम लोग आमतौर पर सबसे आगे वाली सीट हथियाते थे और इस बात पर हैरानी जाहिर करते थे कि यार लोग ज्यादा पैसे देकर पीछे क्यों बैठते हैं, बड़ा अजीब सा मामला था। तो आरती के तुरंत बाद 16 कुदरती जड़ी बूटियों से युक्त वीको वज्रदंती वाला एड शुरू हो जाता। फिर फिल्म डिवीजन की कोई फिल्म चलती जिसे न्यूज रील कहा जाता था, कई लोग मजा लेते थे कई लोग बोर होते थे, लेकिन अपन को तो सिनेमा हॉल में ज्यादा से ज्यादा देर रहना होता था ना, तो हम तो भाई मजा ही लेते, समझ आए या ना आए कोई बात नहीं है। तो न्यूज रील की लंबाई हॉल में भरने वाले दर्शकों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती थी और जब हॉल भरने पर भी फिल्म शुरू ना हो तो कोई ना कोई व्याकुल दर्शक ऑपरेटर के चरणों में कोई मोटी सी वजनदार गाली सादर अर्पित कर देता जिसका अनुमोदन शेष दर्शक सीटियां बजाकर या रोष ध्वनि के साथ करते थे। फिल्म शुरू होने पर पहला दृश्य जब आता था तब सब सांस रोककर उसे देखते थे, ये होता था सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट जिसमें फिल्म की लंबाई दर्ज होती थी। अगर 16-17 रील की फिल्म होती तो वो छोटी मानी जाती थी और आमतौर पर दर्शकों की आ निकल जाती। 21-22 रील की फिल्म होने पर उसका स्वागत सीटियों के साथ किया जाता। कभी कभी मुझे लगता है कि ये सीटी बजाने की कला का आविष्कार हिंदी सिनेमा के मद्देनजर ही किया गया होगा। इसके उद्भव और विकास की प्रक्रिया पर कोई ठोस अध्ययन हो तो इस तथ्य की पुष्टि मतलब की जा सकती है। तो फिल्म शुरू होने के बाद सबके सब किसी सम्मोहन से बंधे एक अलग दुनिया में प्रवेश कर जाते। ये वो चिर परिचित दुनिया होती जिसे हम केवल अपने सपनों में देख पाते थे। यहां हवा में उड़ते बादल होते, बादलों को चीर कर सफेद अश्व आते, अश्वों के बाजुओं में पंख लगे होते और उस पर बैठे नायक का चेहरा सबको अपना लगता। सिर्फ 60 पैसों में यह दुनिया
3 घंटों के लिए किराए पर मिल जाए।

तो इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता था। अच्छा, उस समय हर सिनेमा हॉल में ना दो प्रोजेक्टर नहीं होते थे, कईयों में एक होते थे, तो हर पार्ट के बाद एक इंटरवल होता था, जिसमें दो होते थे वैसा तो सामान्य इंटरवल होता था। तब सिनेमा हॉल में एक ही प्रोजेक्टर मशीन हुआ करती थी, इसीलिए इंटरवल के पहले और बाद में एक शॉर्ट इंटरवल हुआ करता था। पहले शॉर्ट इंटरवल में गेट पास नहीं दिया जाता था, कभी कभी कोई पुरानी फिल्म लगी हो और ज्यादा भीड़ ना हो तो गेट पास भी नहीं दिया जाता। पक्की खबर होने पर हम ऐसे मौकों का लाभ उठा लेते और इंटरवल के बाद आधी फिल्म अधिकार पूर्वक देख लेते। गुलजार साहब की आंधी मैंने ऐसे ही इंटरवल के बाद देखी थी, और पता नहीं किस मुहूर्त में देखी थी कि पहले वाली आधी फिल्म आज तक नहीं देख पाया। हाँ, वो कमलेश्वर जी वाला नॉवेल जो है वो पूरा पढ़ लिया है। अच्छा, इंटरवल की कालावधि के दो मुख्य प्रयोजन होते थे। पहला लघु शंका वाला, कई बार इंटरवल के बाद जब कोई गाना आता तो टॉकीज के बगल वाली गलियों में उन मकानों के पिछवाड़े हिस्से में जहां थोड़ा अंधेरा और थोड़ी ओट होती, ये काम अधिकार पूर्वक निपटा दिया जाता। और दूसरा प्रयोजन होता था अपने लिए ठेले वाले से गरम चने या मूंगफली हासिल करना। इसकी गुंजाइश तभी बनती जब फिल्म देखने के लिए पैसे आधिकारिक रूप से घर से स्वीकृत किए गए हों। जेब में पैसे कुछ ज्यादा हों तो जैन होटल के समोसे बड़े मशहूर हुआ करते थे। तो जिस दिन फिल्म के साथ समोसों का भी स्वाद हासिल हो जाए वो अपने लिए बड़ा दिन हुआ करता था भाई, और इसकी याद तब तक बनी रहती जब तक अगला सुअवसर हाथ ना आए। जैन होटल का जिक्र के साथ एक भीड़ भरी इंटरवल से कुछ पहले का किस्सा याद आ गया, पर इस मूल कथा से पहले मतलब एक सहायक कथा पर भी थोड़ी सी नजर डाल देते हैं। यह कथा यूनियन मीटिंग के दौरान कॉमरेड M.N. प्रसाद सुनाया करते थे। सोवियत क्रांति से पहले जारशाही के दिनों में जब वहां गंभीर खाद्यान्न संकट था, लोगों को परखने के लिए लेनिन चौराहों पर टोकरी लेकर बैठ जाते। टोकरी में रोटियां होती, कोई इंसान आकर रोटियां उठा ले तो उसे कुछ नहीं कहते, जो रोटियां मांगता उसे मना कर देते, चल। उनके एक साथी ने इसका सबब पूछा कि भाई क्यों यार तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने जवाब दिया, जो खुद आकर रोटियां उठा रहा है वो अपने अधिकारों को समझता है, मांगने वाला जो है वो अपने काम का नहीं है। तो मूल कथा यह है कि इंटरवल से ठीक पहले जैन होटल में एक देहाती किस्म के इंसान का प्रवेश होता है। बंदा आता है, बढ़िया दो तीन किस्म की मिठाइयां खाता है, फिर दो समोसे मंगाए जाते हैं, एक समोसा और मंगाया जाता है, आखिरी में चाय आती है। चाय भी बड़ी इत्मीनान से सुर्र सुर्र करके पी जाती है, जब तक कि इंटरवल की घंटी ना बज जाए तब तक। घंटी बजते हुए बंदा उठता है और कितने हुए कहते हुए काउंटर तक पहुंचता है। इधर बेरा अपना हिसाब लगा रहा है, उधर सिनेमा वाली भीड़ टूटने को है, बस यही संक्रमण काल है। ठीक इसी क्षण वो पूरे आत्मविश्वास के साथ 200 मीटर की लंबी दौड़ लगाकर आंखों से ओझल हो जाता है। सिनेमा वाली भीड़ काउंटर पर पहुंच चुकी है और काउंटर पर बैठे चश्मे वाले सेठ को सूझ भी नहीं पाता कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। भागने वाले ने गालियां तक बकने का मौका नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था कि जैन होटल का सेठ लेनिनवादी नहीं है। अच्छा, इंटरवल से हॉल में लौटने की भी कुछ तयशुदा परंपराएं थीं। सिने पर्दे की मायावी रंग बिरंगी रोशनी बालकनी वाली सीटों से कुछ ही ऊपर से आती थी। नाचती खेलती कई रंगों वाली रोशनी मुझे बहुत आकर्षित करती थी और कई बार सिनेमा देखना छोड़कर इन्हीं रंगों में खो जाया करता था। रोशनी के निकास के लिए दीवार पर कुछ छिद्र बने होते थे। छिद्र के उस पार की दुनिया मेरे लिए बड़े कौतूहल का विषय थी। मैं सोचता था कि यार वो कौन सा जादू है जो पर्दे पर ऐसी दुनिया रच देता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं पाते। उस कमरे के दरवाजे पर अंदर आना मना है, ऐसी इबारत होती। और मुझे अफसोस है कि मैं अपने जीवन में बड़ी बड़ी चक्रियों पर चलती फिल्मों की रील की उस तेज गति की नंगी आंखों से नहीं देख पाया जो पर्दे पर जीवन रचते थे। तो यहां से फैलने वाली रोशनी और पर्दे के बीच जब किसी दर्शक का सिर आ जाता तो एक बड़ी सी काली छाया उभर आती। कोई विनोदी दर्शक हॉल में मौजूद होता तो चिल्ला कर कहता, अबे बैठ जा। बेचारा अनजान छाया निर्माता झेप सा हो जाता, पर वो मट्ठर हुआ तो सिर हटाकर रोशनी के आगे थोड़ी देर के बाद अपना पंजा फैला देता और उसकी उंगलियां पर्दे पर नाचने लगती। इस कार्रवाई के जवाब में अक्सर मां की गाली आती और कभी कभी जवाब में दुगनी आवाज के साथ सूद सहित वापस भी लौटाया जाता। ये संपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम एक समृद्ध परंपरा के तहत आम जनता के मनोरंजन के लिए होता और तनाव में आने के बदले लोग हंसने लगते। फिर हंसी की आवाज सीटियों के शोर में खो जाती और लोग वापस फिल्म पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगते। अच्छा, फिल्म देखने वालों में कुछ दर्शक ऐसे भी होते थे जो फिल्म देख चुके होते थे,

अपने साथी को आगे की कहानी सुनाने का प्रयास करते और बदले में अगल बगल वाले की डांट भी खाते रहते थे। ए चुप बे, ए लेके जा इसको, समझ नहीं आ रहा क्या इसको। मगर उन बेचारों से रहा नहीं जाता और थोड़ी देर में फिर इसी काम में लिप्त हो जाते। अच्छा, कुछ अमजद खान साहब की जहमत से बचाने के लिए तेरा क्या होगा कालिया, या फिर अब गोली खा, जैसे संवाद गब्बर सिंह से पहले ही कह डालते। एक दशक तो ऐसा था तो सस्पेंस वाली फिल्म में लोगों का मजा खराब करने के लिए पहले ही जोर से चिल्लाकर मर्डरर का ऐलान कर देता। एक बार इसी वजह से उसकी अच्छे से कुटाई भी हुई। अच्छा, शोले एक बार दिवाली के समय लगी, इधर डाकुओं के बंदूक से गोली निकलती और उधर बालकनी में बम पटक फूट, मतलब यहां बंदूक से गोली निकली, वहां बालकनी में बम फूटा। गेट कीपर दौड़कर अंदर आता पर अंधेरे में किसे पकड़ता भाई। कुछ दर्शक बड़े पिन्ने किस्म के होते और जरा सा सीरियस सीन आने पर सुबकने लगते, और कुछ कंटिन्यूटी फॉल्ट पकड़ने के एक्सपर्ट होते और चिल्लाकर कहते, अबे समुद्र में कूदा तो शर्ट लाल थी, अब नीली कैसे हो गई। कुछ दर्शक जो होते वो जंप और जर्फ पकड़ने के विशेषज्ञ होते और ऐसा होने पर फौरन चिल्लाकर कहते, अबे काट दिया। उधर से रहस्यमय रोशनी वाले छिद्रों के पीछे से आवाज आती, अबे रील ही ऐसी आई है साले, हा? मुझे क्या बोल रहा है, चुपचाप देख। सिनेमा देखने के लिए टिकट लेना जरूरी होता था और टिकट लेने के लिए लाइन लगाना कोई आसान काम नहीं होता था। बचपन में देखा भाई, वो सिनेमा की लाइन जो हुआ करती थी बड़ी खतरनाक होती थी, और साइकिल स्टैंड से साइकिल निकालना तो और भी कितना मुश्किल काम होता था। तो जो कभी सिनेमा की लाइन में नहीं लगा, समझो उसका जीवन अकारक चला गया। कुछ लोग जो थे, मतलब पहला दिन और पहला शो, इस सिद्धांत पे यकीन रखते थे, भैया सिर पर कफन बांध कर निकल पड़ते थे। उचित सूचना के अभाव में माए ऐसे वीर बालकों की आरती भी नहीं उतार पाती थी, मतलब कि बेटा जा रहा है शहंशाह की टिकट लेने या उसकी टिकट लेने, रुक जा तिलक लगवा जा, है ना, आएगा भी या नहीं आएगा, दबकर निकल ना ले कहीं, बड़ा रिस्क रहता है ना। आरती भी नहीं उतार पाती थी, और ये काम कभी कभी सुबह सवेरे भी हो जाता था, जब किसी बहुप्रतीक्षित फिल्म के रोजाना 5-6 खेल होते थे। सिनेमा की लाइन के लिए ठंड, गर्मी और बारिश, सभी मौसमों का बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में भीड़ कुछ ज्यादा होती। पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने के लिए लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो जाता था। इतनी सकरी गली होती थी, मतलब थर्ड क्लास वाले जो है ना, मतलब उसमें तो एक ही एक आदमी जाएगा, उस पे चार चार लगते थे भाई साहब, ऊपर से तैर के जा रहे हैं और जाकर जो है टिकट ले रहे। बाकी बालकनी वालकनी का तो अपने अलग माहौल था, वो फैल के जाओ, अमीर आदमी है भाई, कार से आए हैं, नहीं स्कूटर से, उस समय कार बड़ी चीज थी। तो सिनेमा की लाइन के लिए ठंड, गर्मी और बारिश, सभी मौसमों को बहादुरी से मुकाबला किया जाता। गर्मी की छुट्टियों में कुछ ज्यादा ही होती। पहला दिन पहला शो वाला नौजवान कतार बनाने की लगी हुई रेलिंग पर सबसे पहले सवार हो जाता था। उसका एक पैर बुकिंग विंडो पर और दूसरा सामने वाली रेलिंग पर होता। एक हाथ से वो रेलिंग का सहारा लिया होता और कमीज को उतार कर दूसरे हाथों पर ऐसा कंधे पर लटका लेता। अंदर बनियान हो भी सकती थी और नहीं भी, मतलब कुछ तय नहीं होता था। बनियान ना होने पर भी वो बीच बीच में शर्ट से बदन को पोंछ लेता था, जिसके दो फायदे होते थे। पसीने से शर्ट के भीग जाने के कारण पंखा करते हुए वो ठंडी हवा फेंकता था और अंदर हॉल की सीलन भरी गर्मी में इत्र फुलेने का काम करता था। तब आज के समय वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता तो इसके रिपोर्टर आकर लोगों के मुंह में माइक ठूंस कर और पूछते कि आपको लाइन में लग रहा है, कैसा लग रहा है, नहीं नहीं आपको कैसा महसूस हो रहा है। शर्ट का पंखा हिलाता हुआ नौजवान कैमरे के आगे हिलाता हुआ कहता, जी तकलीफ तो है पर कोई बात नहीं, आगे सब ठीक हो जाएगा, और हो भी गया। अच्छा, सिनेमा की लंबी लाइन देखकर कुछ कमजोर लोगों के दिल टूट जाया करते थे। कुछ ऐसे नाजुक दिल भी होते थे जो परिस्थितियों का बहादुरी पूर्वक मुकाबला करने के बदले कायरता पूर्वक ढंग से पिक्चर देखे बगैर लौट जाते। कुछ लोग ऐसे मौकों पर नारी शक्ति की उपयोगिता को रेखांकित करते और घर से आई महिलाओं को लेडीज वाली छोटी लाइन में लगा देते। अच्छा, महिलाओं की लड़ाइयां देखी आप लोगों ने कभी टिकट के लिए, मतलब पुरुष क्या लड़ते होंगे बाल पकड़ के, जिसको हमें एमपी में कहते झोतरा। सिनेमा देखने की इस जंग में सब जायज था और कभी कभी नए आविष्कारिक उपायों का सहारा लिया जाता। एक बार जब विलंब से पहुंचने के कारण लंबी लाइन देखकर अपन ने रणभूमि से लौटने का मन बना लिया तो अपने एक मित्र ने इस बुजदिली के लिए खूब दुत्कारा। उसने मुझसे मेरे हिस्से के पैसे मांगे और जाकर लाइन के आसपास खड़ा हो गया। खिड़की खुल चुकी थी। थोड़ी देर में मैंने अपने मित्र को सज्जन से बातचीत करते हुए पाया और पता नहीं उसने ऐसा क्या मंत्र फूंक दिया कि हड़बड़ाए हुए लाइन से अलग हुए और उनका स्थान मित्र ने ले लिया। टिकट लेकर हम अंदर हो गए। मित्र ने कुटिल मुस्कुराहट के साथ बताया कि वो सज्जन ग्यारसी लाल हैं, कोऑपरेटिव में बाबू हैं, मैं उन्हें जानता हूँ,
वो मुझे नहीं जानते। मैंने जाकर उनसे कहा कि चचा आपका नाम ग्यारसी लाल है ना, उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा कहीं आपको कोई ढूंढने आया था, घर में किसी की तबीयत बिगड़ रही है। ठाके लगाते हुए मैंने कहा कि अभी पलट कर आएंगे और तुम्हारी तबीयत बिगाड़ देंगे। तब तक 16-17 जड़ी बूटियों वाला वीको वज्रदंती वाला एड शुरू हो चुका था। अच्छा, कुछ भ्रष्टाचार का सहारा लेकर ब्लैक में टिकट लेते थे। उन दिनों ब्लैक टिकट की चर्चा ब्लैक मनी से ज्यादा होती थी, जैसे इन दोनों चुनावों के रुझानों का आकलन सट्टा बाजार से किया जाता है। उन दोनों बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन इस बात से पता चलता था कि टिकट कितने में ब्लैक हो रही है। कई बार सिने मालिकों पर ब्लैक करने वाले इसे मिली भगत करने का आरोप लगते थे। आत्मनिर्भरता की दिशा में ये उन दिनों वैसा ही मशहूर रोजगार हुआ करता था जैसा इन दिनों पकौड़े बेचना। नागपुर की लक्ष्मी टॉकीज में जब मैंने चाचा भतीजा फिल्म देखी थी तो उसमें नायक धर्मेंद्र भी इस सम्मानित पेशे में लिप्त हुआ करते थे। ब्लैक से लोगों ने बिल्डिंगें खड़ी की हैं, एक एक फिल्म से लोगों ने बिल्डिंग खड़ी की है, वो दौर हुआ करता था। सबसे बड़ा धक्का तब लगता था जब आप लाइन में खड़े हों और अचानक हाउसफुल की तख्ती के साथ खिड़की बंद हो जाए। शायर ने शायद इसी मौके के लिए कहा होगा कि किस्मत की खूबी देखिए टूटी कहां कमंद, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया। कभी कभी ऐसे मौकों पर गेट कीपर से दोस्ती बड़ी काम आती थी। राजा हुआ करते थे भाई गेट कीपर, बात नहीं करते थे किसी से सीधे मुंह, भले ही आपके मोहल्ले में रह रहे हों, पता है कल पहुंचेगा बोलेगा टिकट चाहिए। गेट कीपर से दोस्ती ही बड़ी काम आती थी। तब के गेट कीपर का रुतबा आज के एडिशनल कलेक्टर से ज्यादा होता था। थर्ड क्लास में सीट नंबर नहीं होता था, भीड़ ज्यादा होने पर लकड़ी की अतिरिक्त बेंच लगा दी जाती थी। गेट कीपर इनमें हितग्राही को समायोजित कर लेता था, बदले में हितग्राही उसे कम से कम टिकट दर से आधी और अधिकतम श्रद्धानुसार किंतु विज्ञापित मूल्य से कम की मुद्राएं अर्पित करता था। इससे परस्पर सामाजिक सौहार्द में वृद्धि भी होती थी। तो हमारी शहर का जबलपुर का ये वाकया है, गेट कीपर ऐसा जो है अपना टॉर्च लेकर आता था, अब बेंच पर बैठने की व्यवस्था है, बैठा दिया है, चार ही बैठ सकते हैं, पांचवा नहीं बैठ सकता, लेकिन वो बैठाएगा। अब जो है वो टॉर्च लेकर पहुंचा है वहां पे, हाँ चल खिसक खिसक खिसक, अरे कहाँ खिसके यार भैया, बैठ तो गए यार, अब कहाँ बैठेंगे यहाँ पे, अरे कह बैठने दे, अरे कहाँ बैठा, पैसा तो दे दिए बैठने दो ना, अरे जगह का भैया देखो हम एक उस पर बैठे हैं यार, अरे खिसक खिसक, नहीं खिसकता था तो क्या गेट कीपर क्या करता था, वो खिसकाने के बाद कितने टेक्निक वाले होते थे, गेट कीपर पर जाता था, खिसक बनेगी जगह, अरे नहीं बनेगी यार भैया, गेट कीपर जो होता था वो बेंच में, ये बेंच है तो बेंच के उसमें ऐसा बैठता था, दीवार से अपने दोनों पैर सटाता था, उसमें ताकत लगती थी, सबसे साइड वाला जो है वो नीचे जिसको लेकर आया उसको यहां पर बैठा दिया। तो ये वाले मामले हुआ करते थे। तो इन पंक्तियों के लेखक का सौभाग्य ये रहा कि वो सिनेमा के पोस्टर लिखने वाले पेंटर का शागिर्द था। उस्ताद जो मूलतः क्रिएटिव आर्टिस्ट थे और 30 रुपए मासिक वेतन के साथ जब कभी मन हो मैं शागिर्द फिल्म देख लेते थे, लेने की शर्त पर पोस्टर बनाने का काम करते थे, मूडी थे, जब तक 5-6 बार बुलाया नहीं आता हाल की ओर रवाना नहीं होते थे, पर एक बार निकल गए तो मन लगाकर पोस्टर बनाते थे। कभी कभी फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के सिर के पीछे तख्ती लगाकर कटआउट जैसा बना दिया था, जिसकी नगर में उस समय बड़ी चर्चा थी। बॉबी के लिए उन्होंने गजब की कैलियोग्राफी की थी। उनके साथ हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में उस्ताद शागिर्द कोटे में देखी, आधी अधूरी मिलाकर जितेंद्र की लोक परलोक मैंने कम से कम 12 बार देखी होगी। फिल्म देखने के लिए हम 9 से 12 वाला सेकंड शो चुनते थे क्योंकि भीड़ इसमें कदरन कम होती थी। 6 से 9 वाला फर्स्ट शो प्राइम टाइम होता था। महिलाएं दोपहर के भोजन के बाद रात को खाने की तैयारी के बीच 3 से 6 वाला मैटिनी शो चुनती थीं। 4 खेल होने पर स्कूल छोड़कर आने वाले प्रतिभाशाली बालक गुरुवार को 12 से 3 वाला शो भी देखते थे। इस दिन के चयन का यह कारण होता था कि स्कूल में इस दिन आम कपड़ों में आया जा सकता था। ये योजना खास तौर पर उन गरीब छात्रों के लिए थी जिनके पास यूनिफॉर्म की एक ही जोड़ी हो और वो उसे धो ना सकें। पर जैसा कि दीगर सरकारी योजनाओं में होता है, इस योजना का लाभ भी समान रूप से सभी उठाते थे और सिविल ड्रेस में होने के कारण होनहार छात्र सिनेमा के टिकट से वंचित होने से बच जाते। आन मिलो सजना, धड़कन, एक फूल दो माली फिल्मों के नाम मुझे अच्छी तरह से याद है। 7-8 बरस की उम्र में देखा होगा या शायद इससे पहले। फिल्म का कोई दृश्य याद करने की कोशिश करता हूं तो कुछ याद नहीं आता, कहां देखा यह भी याद नहीं। एक दो दृश्य आंखें बंद करने के बाद थोड़ी देर को लहराते हैं फिर गुम हो जाते हैं। ब्रीफकेस से निकलने हुए नोट को छोड़ते हुए दिखाई देते हैं, कहीं कोई गहरे कुएं में गिर गया है, सब कुछ बस धुंधला सा है, आंखों के आगे कोई साफ तस्वीर नहीं झलकती। जो साफ दिखता है वो संपूर्ण रामायण का दृश्य है। हनुमान की भूमिका में दारा सिंह है,
रावण के दरबार में आसन नहीं मिलता तो

0: पूंछ से गुंबद जैसा बनाकर उसी में बैठ जाते हैं। अशोक वाटिका में मचाए उत्पात से रावण क्रोधित है। अच्छा, ये मैंने नोट किया है कि वानर जो है फल खाते कम है, उत्पात ज्यादा मचाते हैं। मित्र राजेंद्र चंद्रकांत रॉय कहते हैं कि जिसे हम उत्पात कहते हैं वो वानरों की सदाशयता है। बंदरों की हिरण से अच्छी दोस्ती होती है। कोई जानवर शिकार पर आए तो वे हिरणों को आगाह कर देते हैं। उनकी उछल कूद इसलिए होती है कि पत्ते झरे और हिरण उसे चरें। यह उनकी आदत हो जाती है। बहरहाल, बात संपूर्ण रामायण फिल्म की हो रही थी जो मेरे जहन में स्पष्ट रूप से अंकित है। यह 70 के मध्य काल होगा। उन दिनों चंबल के बिहड़ों में डाकू काफी मात्रा में पाए जाते थे, इसलिए वह स्वभावतः फिल्मों में भी प्रचुर मात्रा में दिखते थे। पान सिंह तोमर के आते आते डाकुओं ने अपना ठिकाना बदल लिया और वो दिल्ली मुंबई में शिफ्ट हो गए। कुछ NRI किस्म के हो गए और सरहद पार ठिकाने बदलने लगे। जाहिर है कि डकैतों के घिसे पिटे प्राचीन तरीकों से चिपटे हुए नहीं रह सकते थे। 70 के दशक वाले पुराने डाकू दो किस्म के थे, जैसे कि हिंदी पट्टी में रंगतर्मी कलाकार वगैरह होते हैं, एक प्रोफेशनल और दूसरे एमेच्योर। प्रोफेशनल डाकू है वो गांव या शहर आकर डकैती करते थे, अपनी ड्यूटी करने के बाद चुपचाप बिहड़ लौट जाते थे। वो थोड़ा संजीदा किस्म के होते थे और अपने पेशे की गरिमा को बनाए रखते थे। और एमेच्योर डाकू जो होते थे उनकी दिलचस्पी डकैती में कम, नायिकाओं को छेड़ने में ज्यादा होती थी। वो थोड़े छिछोरे किस्म के होते थे और जंगल, बाग, पनघट, बावड़ी, नदियां इन्हीं तरह के आसपास में मंडराते रहते थे। ऐसा मालूम होता था कि डकैती इनका अंशकालिक कार्य है। अलबत्ता दोनों ही किस्म के डाकुओं का यूनिफॉर्म एक ही होता था, नुकीले जूते, सफेद धोती, गहरे रंग का कुर्ता और कुर्ते पर कारतूसों वाली आड़ी बेल्ट, हाथ में दुनाली। अच्छा, कुछ शौकीन मिजाज डाकू रंगीन पगड़ियों या साफे का भी शौक फरमाते थे। ये आवागमन के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। इनके अलावा घोड़ों की सवारी करते हुए आम जीवन में मैंने सिर्फ बारात के साथ दूल्हों में देखा है। कारण शायद यह हो कि प्रकारांतर में वो भी डाकू ही होते हैं और दहेज के रूप में मोटी रकम और माल असबाब की डकैती करते रहते हैं। लेकिन डाकुओं की एक बात है भाई, डाकुओं की जितनी फिल्म देखो हर फिल्म में भाई संगीत प्रेमी मिलते हैं। ये मतलब क्लासिकल सुनते हैं, मतलब अगर सही दिशा इनको मिली होती तो सोचो, मतलब संगीत की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमाते वो लोग, अच्छे ट्रेंड सिंगर म्यूजिक फील्ड का कुछ ना कुछ होते। मतलब म्यूजिक के कितने अच्छे अच्छे गाने हैं ना, जब तक है जहाँ जाने जहाँ, मैं नाचूंगी, है ना, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, दर्शन भी है और दुआ देके परेशान भी हो जाती हूँ, क्या बात है। चलो, तो जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन जी नाम, उनके बिना तो नाम इंडस्ट्री का कैसे। इसके बारे में भी एक बात बड़ी वो है, हम जब छोटे थे, जब फिल्में नहीं भी देखते थे, कोई पूछता था फेवरेट एक्टर कौन है तो बोलते थे अमिताभ बच्चन। ये नाम इतना वृहत हो गया है, हम बोलते थे अमिताभ बच्चन। जिसने फिल्म नहीं भी देखी है, मनोरंजन जगत से सिनेमा से नहीं भी मामला हो जिनको, वो नाम लेता था अमिताभ बच्चन। तो जंजीर फिल्म के जरिए अमिताभ बच्चन के आगमन ने अपनी छोटी छोटी फिल्मों में डाकुओं की मोनोपाली को तोड़ा। अमिताभ युवाओं के क्रोध और गुस्से के प्रतीक थे। जंजीर के बाद दीवार में उनका गुस्सा और गाढ़ा हो जाता है और वो कभी कभी और सिलसिला में रोमांटिक हो जाते हैं। नटवरलाल और याराना में कॉमेडी भी करते हैं। उसके बाद फिर सिनेमा की एक नई धारा उभर कर सामने आती है, अर्धसत्य का पुलिस इंस्पेक्टर। जंजीर के पुलिस इंस्पेक्टर से ज्यादा तार्किक और वास्तविक लगता है और गुस्सा इतना है कि रामा शेट्टी का गला दबोच लेता है। जाने भी दो यारो जैसी क्लासिक फिल्म आती है जो संभवतः हिंदी की एकमात्र सटायर फिल्म है। बाद में और बनी होंगी लेकिन है ये फिल्म दर्ज फिल्म है। ये हिंदी सिनेमा के राग दरबारी के रूप में सामने आती है। गोविंद निहलानी, सई परांजपे, केतन मेहता, MS सथ्यू, सुधीर मिश्रा, आनंद पटवर्धन, नसीर, ओम पुरी, पंकज कपूर, फारूक शेख, स्मिता पाटिल, शवाना आजमी वगैरह, ये सब मिलकर कुछ ऐसा रचने लगते हैं कि हिंदी सिनेमा की बनी बनाई स्थापनाएं, अवधारणाएं धराशायी होने लगती हैं। पर ये लंबे समय तक नहीं चल पाता। टेक्नोलॉजी उधर घात लगाए बैठी होती है। टेलीविजन और VCD का आगमन बॉक्स ऑफिस की कमर तोड़कर रख देता है। सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल जो हैं वो सूने होने लगते हैं। हाउसफुल वाली खिड़कियों पर काई जमने लगती है। सिनेमा हॉल के मालिक कोई कला प्रेमी तो है नहीं कि वो धरोहर को बचाने की फिक्र करें। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मौके की जगह है। हॉल मॉल में बदल जाते हैं। बेशक पर्दा यहाँ पर भी है पर वो 60 पैसे वाला थर्ड क्लास नहीं है। वो माहौल, वो सिनेमा जीने वाला, वो 60 पैसे वाला दर्शक भी नहीं है जो आखिरी आदमी की श्रेणी में आता है। उसकी अनुपस्थिति में उसका कंटेंट, उसका सरोकार, उसकी चिंताएं, उसका देश, समाज सब गायब हो जाता है। यहां वो नया दौर नहीं चल सकता जो तांगे वालों को मोटर गाड़ी वाले की बराबरी पर लाकर खड़ा कर देता है। यहां 3 इडियट्स ही चल सकती है जो जरूरत पड़ने पर गरीब का मजाक उड़ा सके। खैर, सिंगल स्क्रीन सिनेमा वही दौर था, दौर की बात थी। हम भाई मिस तो करते हैं सभी लोग, क्योंकि वो थर्ड क्लास था, लाइन में लगना, वो जिया हुआ समय, सिनेमा देखना भी उत्सव हुआ करता था। याद आता है रिश्तेदार जब आया करते थे, अगर सिनेमा हॉल घर के पास हो तो पहले वो घर आते थे, साइकिल या अपनी जो भी गाड़ियां हो वो रखा करते थे, घर आकर पहले चाय नाश्ता करते थे, उसके बाद सिनेमा देखने जाते थे, फिर वापस आते थे, अपना वाहन लेकर जाते थे, वैसा जुड़ाव बना रहता था। लेकिन बाजार के साथ साथ जो है वो चीज़ें नहीं बची। तो बस यही है, ये शेयर करने का मतलब यही था, एक दौर जो है हम फिर से जी लें, याद कर लें, चीज़ों को आनंद लें। बाकी सिनेमा का क्या है,
1: तो जनता की विशेष फरमाइश पर जयंती ने एक बार आपके सामने फिर ऋषि कपूर, रंजीता, 4 खेलों में लैला मंजू, लैला मंजू दोस्तों देखना ना भूले, लैला मंजू हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, लैला मंजू रोजाना 4 खेलों में आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में।
2: ये उन दिनों की बात है, तो उन दिनों की बात का मजा हमने लिया
3: जो दिनेश चौधरी के लेख का नाट्य रूपांतरण था।
2: जी हाँ,
3: और जिसे प्रस्तुत किया था जाने माने अभिनेता नरोत्तम बेन ने,
2: और इसका शीर्षक था ये
3: उन दिनों की बात है।
2: इसी के साथ समय हो रहा है आज के विविधा कार्यक्रम के पूरा होने का।
3: उम्मीद है आज का विविधा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, और आप अपनी प्रतिक्रियाएं विविध भारती की फेसबुक पेज पर देना नहीं भूलें।
2: इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए जयंत पात्रीकर
3: और मंदाकिनी जोशी को नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
4: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।

0: रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का

विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों का

कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। महाराष्ट्र के नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिचके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके इलाज के लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, TB, एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हिमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। गुरिंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है।

मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी। अभिमान फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर और मनहर की आवाजों में। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

आप सुन रहे थे आकाशदीप फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को शुरू में ढाला चित्रगुप्त ने। गंगा की लहरें इस फिल्म का गीत है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में।

0: एस डी वर्मन की तर्ज थी आशा भोसले की आवाज। बंबई का बाबू फिल्म का ये गीत था, रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

जो सुल्तानपुरी के बोल थे लता मंगेशकर की आवाज़ ममता फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रोशन की तर्ज थी। और इस गीत के पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया बाबू फिल्म का गीत, किशोर कुमार अलका याग्निक की आवाज़ें थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत था।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। तो अपने रेडियो सेट को श्रोताओं जरा करीब लाइए, सुनिए कि आपको पुकारता है विविध भारती पर प्यारे प्यारे गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर, जहां होती हैं हमारी इबारतें और आपकी बातें, थोड़ी थोड़ी सी तलखी, कुछ कुछ प्यार, थोड़ा तकरार और बेशक हम और आप मिलकर तय करते हैं सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है, इसी की बात हमने आज की इबारत में की है। तो आपके लिए पढ़ देते हैं आज की इबारत। वैसे हमारे जो फेसबुक के साथी हैं वो तो देख ही चुके हैं कि आज की क्या इबारत है, और जो साथी नए जुड़ने वाले हैं उनसे हम बता दें कि आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते पर भेज सकते हैं अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। और अब

भी होता है जो जरूरी नहीं कि इस मौसम के साथ साथ चले। ये तो दिल का मौसम है, कभी खुशियों में लहराता है तो कभी रूठों को मनाता है, मन के फूल खिलाता है और सबको प्यार सिखाता है। तो चलिए चलते हैं आज इस अलबेले सफर पर, देखते हैं कि इस सफर पर आज किस किस से मुलाकात होती है। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है, सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

एक समय ऐसा था श्रोताओं, जब साइकिल पर खूब सवारी की जाती थी और देखा भी नहीं जाता था कि भाई फासला कितना है, यानी फासला थोड़ा भी हो सकता था, ज्यादा भी हो सकता था। तो साइकिल के बारे में आपका क्या कहना है, साइकिल से जुड़ी हुई बातें अगर आप चाहें तो हमसे जरूर साझा करें। आप सुन रहे थे जॉय मुखर्जी पर फिल्माया ये गीत, जो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। इशारा फिल्म का ये गीत था, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी, मुकेश का गाया ये गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आज खुशगवार मौसम में प्रकृति की खूबसूरती के दिलों की बात होने वाली है। ये बिल्कुल सही है कि जब दिल खुशगवार होता है तो हमारे आसपास की प्रकृति जैसे हरी भरी वादियों, कलकल करती अविरल नदियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते झरनों की आवाजें दिल को आशिकाना बना देती हैं, जिससे हर चीज में खूबसूरती नजर आने लगती है। वैसे अगर कहा जाए तो सुंदरता देखने वाली चीज में नहीं बल्कि देखने वाले वालों के मन में होती है। इसलिए तो कहा गया है कि अगर मन चंगा हो तो कठौती में भी गंगा बसती हैं। यही कारण है कि उदास मौसम के विपरीत खिले हुए मौसम में हर चीज दिल को लुभाती है। आज की इबारत में ढूंढते रह जाओगे।

वाली बात नजर आती नहीं आ रही। आपने इशारों इशारों में सब कुछ लिख दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने कुछ गीत भी सुझाए हैं। वैसे हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम को देते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि दिल, मौसम, आशिकाना, बिंदिया, आवाज़, तस्वीर, शायद, कायनात, तरन्नुम, तमन्ना, कुदरत, प्यार, राज, मुश्किल, मुमकिन, खफा, बहाना, घर, दीवाना, बादल, बेकरार, अच्छा, चलते। और कुछ गीतों की सूची भी इन्होंने दी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सभी श्रोता मित्रों को प्रणाम, आइए चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में कुछ रोमांटिक, कुछ ठंडे गीतों से इस दोपहरी को यादगार बनाते हैं। वैसे तो सूर्य देवता अपनी तपिश से सारी दुनिया को जलाने की ठान कर बैठे हैं, हमारी विविध भारती ने भी ठान रखा है अपने गीतों की ठंडक से सबका मनोरंजन करने का। बस इंतजार है 1 बजे का। जी हाँ, तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और अगर आप नहीं सुन रहे तो बस फटाफट आ जाइए रेडियो के पास, और कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है। और एक और श्रोता लिखती हैं, आपकी जो पंक्तियाँ प्रेम के उस अनंत सफर का दर्पण है जहाँ हर मौसम एक नई दास्तान सुनाता है, आंखों में सजे सपने, बिंदिया की चमक और कायनात की खूबसूरती मिलकर एक ऐसी गूंज पैदा करते हैं जो सीधे दिल को छू लेती है, बादलों की तरह बेकरार करके जाने। और अच्छा, तो हम चलते हैं का वो आखिरी मोड़ दिल को एक खूबसूरत की कसक और उम्मीद से भर देता है। ये एहसास दिलाता है कि भले ही दूरियाँ हों लेकिन इंतजार का ये सफर अपने आप में कितना हसीन है। जी हाँ, और बिल्कुल इस तरह हसीन है दिल का सफर, जब मन होता है दिल किसी और भी निकल लेता है, जहाँ दिल को सुकून मिलता है। और ऐसा ही सफर आज कुछ हम तय कर रहे हैं।

श्रोताओ, साइकिल की यादें तो आपको बतानी ही हैं, साथ साथ आप ये भी बताइए कि ये जो गीत है वो एक टेंट के पास फिल्माया गया है, ऐसी कोई याद आपकी है क्या? क्योंकि टेंट में भी आपने कभी ना कभी रात या दिन जरूर बिताए होंगे।

हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि खुशनुमा मौसम मन को सुकून देता है, हल्की ठंडी हवा, खिलते फूल और बादलों की छांव दिल को नई उमंग से भर देती है। ऐसे मौसम में पुरानी यादें और दिल में बसी कोई खास तस्वीर बार बार मुस्कुरा उठती है। दिल में बसी तस्वीर केवल किसी चेहरे की नहीं होती, बल्कि उन प्यारे लम्हों की भी होती है जो जिंदगी को खास बना देते हैं। प्रकृति का सुंदर रूप इंसान को जीवन की भाग दौड़ से कुछ पल राहत के देता है और मन को शांति का एहसास कराता है, और खुशगवार मौसम उन यादों को और भी खूबसूरत बना देता है। जी हाँ, और तभी तो हम ऐसे मौसम में खास प्रकृति की ओर चल देते हैं, और तब हम ये नहीं देखते कि मौसम कौन सा है, क्योंकि हमारे दिल का मौसम जो कह रहा होता है कि भाई अब चलिए कहीं और चलें। एक हमारी और श्रोता बताती हैं, जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा के पास एक साइकिल थी, उसे साइकिल पर बैठकर हमारे पापा सभी को स्कूल छोड़ देते थे। मुझे और मेरे दो भाइयों को मेरे पापा साइकिल पर ले जाया करते थे, और पूरी फैमिली पांच जने साइकिल पर ही जाया करते थे, कहीं भी जाते थे। और फिर जब मैं 12वीं कक्षा में आई तब मुझे स्कूल की साइकिल मिली थी, तब मैं साइकिल चलाया इन्होंने, और इन्हें बहुत खुशी हुई। क्या बात है। एक और श्रोता लिखती हैं कि जब पैर पैडल पर होते हैं और ठंडी हवा चेहरे को छूती है तो ऐसा लगता है कि मानो हम वक्त से थोड़ा आगे निकल आए हैं। साइकिल की सवारी सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह जाने का जरिया मात्र नहीं, बल्कि ये अपने आप में एक एहसास है। बचपन की पहली आज़ादी के एहसास से लेकर आधुनिक दौर में पर्यावरण को बचाने के आंदोलन तक साइकिल हमेशा से इंसानी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा रही है। एक और श्रोता लिखती हैं, सुंदरता आईने में नहीं इंसान के स्वभाव में दिखाई देती है। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर दिल खूबसूरत ना हो तो सुंदरता अधूरी लगती है। असल खूबसूरती मुस्कान, सच्चाई और अच्छे व्यवहार में छुपी होती है, जो दूसरों के दिलों में जगह बना लेती है, वही सच में सबसे सुंदर होता है। सुंदरता रंग या चेहरे से नहीं, इंसान की सोच और उसकी सादगी से पहचानी जाती है। और कुछ लोग साधारण दिखकर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि उनकी रूह बहुत सुंदर होती है। जी हाँ, जब रूह सुंदर होती है तो ज़्यादातर देखने में ऐसा आता है कि मौसम चाहे जो भी हो, लोग चाहे जैसे भी मिले, बातें चाहे कोई भी कहीं जाए, लेकिन सुंदर लगता है और सब कुछ अच्छा लगता है। मन अच्छा है तो सब अच्छा लगता है, और यही है दिल का मौसम। एक और श्रोता लिखते हैं, वाकई में दिल का मौसम खुशगवार हुआ था जब मैं स्वयं परिवार सहित जून 2024 में कश्मीर गया था। मौसम तो आशिकाना था ही, और धर्मपत्नी की बिंदिया जब चमकती थी और मेरे दिल की आवाज़ भी लहरा कर कहने लगती, हर पल मजबूर था कि कश्मीर कुदरत का नायाब करिश्मा है। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जी हाँ, अगर फिरदौस बर्रोए ज़मीं अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त।

इस गीत के संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओं, और पाकीज़ा फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, मीना कुमारी पर फिल्म आया गया, उस गीत के संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, क्या बात है, आपने जिस खूबसूरती से पुराने सदाबहार गीतों की पंक्तियों उनके भावों और उनके मुखड़ों को एक धागे में पिरोया है, उसे पढ़कर दिल सच में बाग बाग हो गया। ये सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर गोल्डन एरा का एक म्यूजिकल सफरनामा। आपके इस खूबसूरत पैराग्राफ को गाने के बाद आज के मुख्य शब्द जो हैं और उन पर आधारित सदाबहार गाने कुछ इस तरह निकल कर आते हैं, और बहुत सारे गीतों की बात इन्होंने लिखी है, उसमें से बहुत सारे गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। जी हाँ, इनमें ये गीत भी है, मौसम है आशिकाना। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में खूब साइकिल चलाई, बहुत बार साइकिल से गिरा, चोट खाई, पर साइकिल की सवारी नहीं छोड़ी, अब साइकिल की जगह स्कूटर ने ले ली है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली साइकिल मुझे 1974 में मिली जब कक्षा 8वीं में था, वो भी सेकंड हैंड 75 रुपये में खरीदी गई थी। जी हाँ श्रोताओं, और आगे लिखते हैं कि उस समय लगा जैसे मुझे हवाई जहाज मिल गया हो, इधर उधर बहुत चक्कर लगाया करता था। नई चीज़ें जब आती हैं तो कुछ ऐसा ही होता है, और ख़ासकर जो साइकिल थी उसका क्रेज़ तो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस गीत में कलाकार जॉय मुखर्जी, यानी पहले गीत की इन्होंने बात करी है, मुखर्जी साइकिल पर सवार हैं, और जिन लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमत ज़्यादा लग रही है वो साइकिल पर सवार हो सकते हैं। जी हाँ, जहाँ तक कीमत की बात है, वो प्रकृति से तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। साइकिल पर सवारी प्रकृति को पूरी तरह से महफूज रखती है, तो अक्सर जब हम साइकिल चलाते हैं तो इस बात का जरूर हमें ख्याल रखना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों की दुनिया और खुशगवार मौसम में प्रीतम से मिलन अत्यंत भावपूर्ण मिलन श्रृंगार होता है, जहां प्रकृति और प्रेम का अद्भुत सामंजस्य होता है। ठंडी हवाओं का चलना, बादलों का अदखेलियां करना, एक संगीतमय मादकता वातावरण में घुली सी जाती है। प्रिय का स्वप्न में आना प्रेमियों के मन में विरह की पीड़ा को मिटाकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति से भर देता है। एक और श्रोता लिखते हैं, कुछ गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे दिल को सुकून की बारिश मिल गई हो, कुछ गाने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और दिल में ढेर सारी शांति छोड़ देते हैं, कुछ धुनें सुनते ही पुरानी यादें धीरे से सामने आ बैठती हैं, ऐसे गीत सुनकर लगता है जैसे कोई बहुत अपना पास बैठा हो, कुछ गाने दिल को इतना अच्छा लगता है कुछ गाने इतने अच्छे लगते हैं कि उन्हें बार बार सुनने का मन करता है, जैसे नीले गगन के तले जिस पथ पर चला छोड़ दे सारी दुनिया, और ये सारे गीत इन्होंने लिखे हैं, जो गीत इन्होंने अंदाज लगाए। वैसे हमारे आज जो श्रोता लोगों ने गीतों की जो लिस्ट भेजी है वो ज़बरदस्त है, और उसमें बहुत सारे गीत जो हैं आज के कार्यक्रम से मिलते हैं।

एक श्रोता लिखते हैं कि मैं कल से एक लंबी यात्रा पर हूँ, गाड़ी की चाल तो सीधी रखे हूँ पर दिल लहरा के ही चल रहा है। कुदरत के हसीन नज़ारों को देखकर दिल का मौसम भी आशिकाना सा हो गया है। हम सबकी तरह कुदरत भी सबसे बोलती है कि हमें तुमसे प्यार है, मगर उसकी ये आवाज़ कानों में भले सुनाई नहीं देती तो उसे दिल की गहराइयों से महसूस करने पर ही समझा जा सकता है, और ये उसी को महसूस हो सकती है जो प्रकृति को प्यार करे। जी हाँ, तो आप बताइए कि प्रकृति के लिए आप क्या करते हैं? क्या आपने पेड़ लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो वो कितना बड़ा हुआ है हमें बताइए, और किस चीज़ का पेड़ है? एक इन्होंने ही, जिनका अभी मैंने जिनकी बात पढ़ी, उन्होंने बहुत सारे गीतों की बात करी है। पहले मिले थे सपनों में, दिल लहरा के चल, बिंदिया चमकेगी, जो बात तुझ में है, देखते हैं कौन सा गीत आता है। तो एक और श्रोता लिखते हैं, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, लेकिन दिल का सफ़र तो सभी जान लेते हैं, सभी समझ लेते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैडम जी, आज के सुरीले सफ़र में सभी फेसबुक साथियों के साथ पुष्पमाला पहनकर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। 10 बजे के तापमान 31 डिग्री पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य स्थल पर तैनात होकर शाम अवकाश होने तक अपना कार्य पूर्ण कर सकुशल अपने परिवार के साथ खुशियां मनाएं, और शुभकामनाएं लिखी हैं इन्होंने। एक और श्रोता लिखती हैं कि 2 दिन से सच में दिल का मौसम खुशगवार बना हुआ है, हालांकि गर्मी का कहर बना हुआ है, लेकिन अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा करना एक आत्मिक शांति देता है और दिल कह उठता है मौसम है आशिकाना। भाई, हमारे तमाम श्रोताओं ने बहुत सारी अपने दिल की बातें लिखी हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में स्कूल की तरफ से एनसीसी कैंप राजगीर में लगा था, उस दौरान एक रात टेंट में गुजारनी पड़ी थी, बहुत मज़ा आया था। जब अपने दोस्तों के साथ पहली बार घर से बाहर एक टेंट में रात गुजारी, वो दिन आज भी बहुत याद आता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार किया है तुम बताना, और इन्होंने और भी बहुत सारे गीत लिखे हैं। और वैसे आप कोशिश करिए, कोई ना कोई गीत तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें से तो कोई गीत नहीं मिलता। अपनी कोई यादगार तस्वीर आप बता सकते हैं।

रोशन की तर्ज थी फिल्म ताजमहल का ये गीत आप सुन रहे थे। प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया, साहिल ध्यानवी की रचना थी। हमारी श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर कभी पुरानी नहीं होती, जब देखो उतनी ही नई नकोर लगती है, मगर तस्वीर में वो बात कहाँ जो तुम में है। ये सारी प्रकृति को देखो तो जीने की तमन्ना बरबस सिर उठाने लगती है। काश ये पेड़ पौधे भी बोलते, हमसे कुछ कहते, हम सब नहीं जानते कुदरत अपने कितने अंदर कितने राज समेटे हैं। आप चाहे जितना सोच लीजिए इस जीवन के बारे में, मगर बिना प्रकृति से जुड़े कुछ भी संपूर्ण नहीं है। ये बादल, ये दीवानापन, ये बेकरारी और कुछ अंतहीन सपनों के साथ आज चलते हैं एक और सुरीले सफर पर। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आपकी सुगम और सुंदर लिखावट देखकर मौसम के साथ दिल भी आशिकाना बन गया है। कुदरत का प्यार, जन्नत की तस्वीर जीने की तमन्ना बढ़ा रही है। यही आस नाराज बादलों का छुपा हुआ राज जानकर उन्हें सपनों में नहीं तो धरती पर सचमुच का सुरीला सफर करने को कह रही है। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखती हैं, ये मौसम रंगीन समा, और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं, बिंदिया चमकेगी वगैरह। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तो दिल का मौसम खुशगवार हो जाएगा, दिल भी झूम उठेगा और कहेगा लहरा कर चल दिल्ली में, क्योंकि गाना ही दिल्ली में फिल्माया गया है। खैर, पैराग्राफ को पढ़कर ही पैर थिरकने लग गए हैं कि कौन से गीत बजेंगे। मौसम तो बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन इन्होंने और भी अपनी बातें लिखी हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं और दिल का मौसम जैसे गीत आज की इबारत में शामिल हो सकते हैं। जी अभी चलने का समय नहीं हुआ है श्रोताओं, तो आप चलिए नहीं बल्कि कार्यक्रम से जुड़े रहिए। एक और हमारे श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं श्रोताओं, आपको इस गीत के बाद बताते हैं।

वहीदर रहमान जी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म गाइड से, और आपको बताना है कि इसका जो आखिरी अंतरा है वो किस ऐतिहासिक किले में फिल्माया गया है। और एक और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपके दिल का मौसम कभी ये कहता है कि राजस्थान चलें और ऊंट की सवारी करें। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी लिखी हुई इबारत के चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत भी शामिल, जो बात तुझ में है, और मेरी इबारत के बैक टू बैक दो गीत शामिल हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि जी हमने कई पेड़ लगाए हैं और अभी ज़रूर लगेंगे। हमारे घर में हमने गमलों में भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं। सुबह सुबह जब उठकर फूलों को खिला हुआ देखते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और उस मन भावन को भी अपने जो है घर का फूल चढ़ाते हैं, भगवान को भी। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने आम का पौधा लगाया था, 5 साल हो गए, आज बहुत बड़ा हो गया है, मालदा आम भी लगाए हुए हैं। जी हाँ, आम का तो मौसम। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत सुंदर है, खूबसूरत गानों की तरफ इशारे भी कर रही है, समझ में तो आ रहे हैं पर मैं लिख नहीं रही हूँ, सुनने का ही मजा लूंगी। ऐसा मत कीजिए, आप लिखिए भी जरूर। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं, लाहौर जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और निकलने वाला हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम खुशगवार हो ना हो, सपनों में मिलेंगे, तस्वीरों से बात करेंगे तो आशिकाना दिल लहरा के चलेगा, कुदरत के ललाट पर सूरज रूपी बिंदिया चमकती है, कायनात के इस रूप को देख जीने की तमन्ना उठती है, राज़े दिल छुपाना मुश्किल होगा तो बहाने से बताएंगे कि बादल बेकरार होके दीवाना होकर बरसेगा। और बहुत लंबी इबारत है। श्रोताओं, क्या आपको मौसम प्यारे लगते हैं?

सुरीला सफर कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। कुदरत फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में हेमा मालिनी और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था मजरू सुल्तानपुरी के बोलते राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि हमारे यहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार है, गर्मी भी है और धूप भी और मंद मंद हवा के झोंके भी आ रहे हैं, क्या पता शाम तक बारिश भी हो जाए। कुल मिलाकर सफर गीतों के साथ जिंदगी का भी सुहावना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कोरोना काल में ली गई साइकिल जैसे जीवन का हिस्सा ही बन गई। सुबह शाम एक दो घंटे जब तक साइकिल न चलाऊं चैन ही नहीं आता। सेवानिवृत्ति के बाद टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। जी हाँ, टाइम पास की जहाँ तक बात है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इससे जो एक एक्सरसाइज होती है वो बड़ी अच्छी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वैसे अभी मौसम तो खुशगवार नहीं है, लेकिन दिल का मौसम तो हमारे हाथ में है। सुरीला सफर में गाने सुनकर मौसम खुशनुमा हो जाएगा। आज इस इबारत में बहुत से गाने नजर आ रहे हैं और कुछ गीतों को भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं, साइकिल चलाना मैंने कभी नहीं छोड़ा, आज भी साइकिल से बाजार घूमने जाता हूँ, घुटनों का व्यायाम हो जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं, पाकीज़ा फिल्म के संगीतकार गुलाम मोहम्मद थे और इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जो थी वो मीना कुमारी नहीं रही। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने बहुत साइकिल दौड़ाई है दिल्ली में, पूरा रिंग रोड नाप दिया जो पूरे दिल्ली के क्षेत्र को जोड़ता है।

श्रोताओ, आप फिल्म पहचाने और संगीतकार बताएं, और ये भी बताएं कि आपको कभी ऐसा लगा कि किसी खास जगह को ढूंढने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ी।

हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में भी लिखा है। सूरज और चंदा फिल्म का गीत है मोहम्मद रफी की आवाज़ में और रीटा अक्सर और संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, राजस्थान तो नहीं गई लेकिन अभी हाल में गुजरात के दीव में हमने ऊंट की सवारी की, थोड़ा डर भी लगा जब वो खड़ा होता और फिर बैठता है। एक और श्रोता लिखते हैं, फिल्म गाइड का गीत मेरी लिस्ट का पांचवा गीत है। एक लिखते हैं कि चित्तौड़गढ़ फिल्म में किले में फिल्माया गया ये गीत है। एक और श्रोता ने लिखा है, बचपन के दिनों में हमारे पास ऊंट होता था जो कुएं से पानी निकालने का काम के काम आता था और हम उस पर बैठकर घर से खेतों में और वहां से फिर घर आते थे। एक और श्रोता लिखती हैं कि हाँ, मेरा जाने का मन तो करता है राजस्थान, कभी शायद जा पाऊँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर में हुआ था गाइड फिल्म का फिल्मांकन गीत का।

आन मिलो सजना इस फिल्म का गीत राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया। आपके सभी कमेंट्स सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सुखविंदर सिंह की आवाज में फिल्म स्टैनली।

हितेश सोनिक का संगीत अमोल गुप्ते के लिखे बोल सुखविंदर सिंह की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म सैंडी का डब्बा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है शान और आमिर खान की आवाज में फिल्म तारे जमीन पर से।

0: शंकर एहसान लॉय का संगीत, प्रसून जोशी के लिखे बोल, आमिर खान और शान की आवाज में गीत सुना आपने फिल्म तारे जमीन पर से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक लेख साझा किया। इस लेख में बताया गया है कि किस तरह सिक्किम के खांग चेनजोंगा की पांच धरोहर 2000 से

0: 2047 तक विकसित सिक्किम का लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह लेख खांग चेनजोंगा को सिक्किम की भूमि, स्मृति और चेतना के रक्षक के रूप में चित्रित करता है और इसके सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में भी चर्चा हुई और क्वाड बैठक से पहले हिंद प्रशांत क्षेत्र प्राथमिकता बना हुआ है। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते का जल्दी होना जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। इससे पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने सिंगरौली जिले के विकास के बारे में चर्चा की
1: और ये आने वाले समय की दृष्टि से हम इसका मास्टर प्लान बना रहे हैं सिंगरौली के लिए और विकास के लेकर के मध्यप्रदेश सरकार के पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत जल्दी उनके रिजल्ट भी आएंगे। और जिस प्रकार से हमने अपने निवेश और रोजगार को लेकर के गत वर्ष काम किया था उसके बलबूते पर ये पूरे हमारे आसपास के जिलों को भी रोजगार यहाँ मिले, इस तरह का प्रबंधन कर रहे हैं।
0: भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले का उच्चतम न्यायालय ने कल स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ सुनवाई कर सकती है। ट्विशा के शव का आज एम्स भोपाल में दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम हाईटेक इक्विपमेंट के साथ भोपाल पहुंची है। इससे पहले आरोपी समर सिंह को कल अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर बना रहेगा। लोगों को फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम है। विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जांच केंद्रों GSTC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि नए नियमों के तहत ये केंद्र वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल और डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर की जाँच भी शामिल है। इसका उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना, व्यवस्था में तकनीक के उपयोग और वैश्विक मानकों के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बढ़ावा देना है। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहले स्थान पर है। अब तक लगभग 100,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल स्थित रेल उत्सव हॉल मदन महल में 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 211 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नर्मदापुरम जिले की ग्राम पंचायत मलोथर में प्रशासन आपके द्वार अभियान के तहत रात्रि चौपाल आयोजित की गई। प्रभारी कलेक्टर ने ग्रामवासियों से संवाद कर शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। और रांची में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नीतिका आकरे ने महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार

0: पांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
1: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
0: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
0: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
2: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी
3: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
3: पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांग

0: अंशु पांडा काफी आगे चल रही हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं, कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करसियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करसियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करसियोंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र के नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्त स्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। ये धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो जमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ है जागृति शर्मा।
2: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रेसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। खुशी पलों में होगा कार्यक्रम सदाबहार नवमी।

आप सुन रहे थे इशारा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था।

0: तलत महमूद की आवाज में सुजाता फिल्म का गीत था। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत सचिन देव बर्मन का था।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ

मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल सुरों में आप सुन रहे थे दो चोर फिल्म का गीत।

मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुर में ढाला चित्रगुप्त ने। लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म थी ऊंचे लोग। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना

0: नहीं है वल्ला जवाब।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म में किशोर कुमार की आवाज आपने सुनी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: तुम इसको खेल समझे हो, मगर एक दिन दिखा देंगे मोहब्बत।

0: मोहब्बत इसको कहते हैं इस फिल्म का गीत था, मुकेश और आशा भोसले का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने।
1: तेरी दिल में जिस दिल से

0: जो ही शमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में।
1: फिल्म माया का दो गाना था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मंजू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला सलील चौधरी ने। यही थी आज के सदाबहार कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। श्रोताओं,

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। तमाम व्यस्तता के बीच कहीं दोपहर में ठंडे शरबत की ताजगी है और खस की खुशबू और ऐसी ही ताजी हवा के झोंके सा आपके चुने हुए गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत आ चुका है आपके रेडियो सेट पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आज मनचाहे गीत कार्यक्रम में किन किन श्रोताओं के मनचाहे गीत शामिल हो रहे हैं। मनचाहे गीत प्रोग्राम में अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

आन मिलो सजना, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहा जिला यमुनानगर हरियाणा से जयपाल धीमान, यशपाल धीमान, विनोद और राजीव धीमान। इसी गीत के लिए फरमाइश की रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। और इस गीत को सुनना चाहते थे जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला अदवंत, नीलेश अदवंत, मयूरी अदवंत, कल्पेश अदवंत और संगीता अदवंत।

एक बार मुस्कुरा दो इस फिल्म में आशा भोसले मुकेश की आवाजें आपने सुनी। एस एच बिहारी के बोलों को सुर में ढाला ओपी नैयर ने। इस गीत को सुनना चाहा दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश से गंगाराम पांडे, तीर्थराज पांडे, दिलीप शर्मा, ध्रुवराज पांडे और इनके बहुत से साथी। इसी गीत को सुनना चाहा सिकंदर अली खान, बदरुद्दीन शमसुद्दीन की बाड़ी के पास से, और ये पत्र आया बीकानेर राजस्थान से। एक और श्रोता ने इस गीत की फरमाइश की जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से। ये हैं चंदू हातोले, सीमा हातोले, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से, बीपी गौतम, सरिता, अनन्या, कुश, रिंकू टिंकू, रीना, ऐश्वर्या, श्रेय, आप सभी की फरमाइश थी।

खय्याम की बनाई तर्ज पर इस गीत को गाया लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यश दास ने। त्रिशूल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिर लुधियानवी का लिखा। रामलीला मैदान सचिंदी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मीनू त्रिपाठी और शिवांश अनूप सिंह और अभिजीत सिंह की ये फरमाइश थी। हेतु रांची से प्रवीण कुमार और इसी गीत को सुनना चाहा गुरई बुरीवली वेस्ट मुंबई से अंशिका ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत।

चोर मचाए शोर इस फिल्म का दो गाना था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। गणेश कुमार की फरमाइश है ये पुणे से और भरत यादव काजल शर्मा विकास सक्सेना इनकी फरमाइश है बदायूं उत्तर प्रदेश से। और ये हमारे श्रोता हैं तहसील तिलहारा अकोले महाराष्ट्र से विनोद कुमार आड़िया, भारती पारस पायल, श्वेता और उर्वीबेन आड़िया।

ये गीत आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी और इस गीत की फरमाइश की हंडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी और इसी गीत की फरमाइश की लीला बेन, स्मिता बेन, भारती, निधि, सेजल, मनाली ने। ये हमारे श्रोता थे तेलहारा महाराष्ट्र से। और अब आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज के प्रोग्राम में सुनिए उषा सक्सेना का लिखा नाटक चंदन वृक्ष।

अरे भाई आज शनिवार की शाम है, कोई डिनर के लिए जाएगा, कोई लोकल गार्जियन क्या, कोई पिक्चर जाए।

0: जूड़ा? अरे ये तो एकदम अजंता की मूर्तियों जैसा केश विन्यास है।
1: वो दिखो
0: कहाँ?
1: तूने शायद शैम्पू किया है। वाह कितने खूबसूरत बाल है।
0: एकदम वर्षा की घनघोर घटाओं की तरह।
1: सुमन सुमी वो देख सुमन देखो कहाँ। कितनी अच्छी लग रही है
2: सच में।
1: सफेद शरारा सूट और हवा में लहराती सफेद चुन्नी, क्या बात है।
0: अरे यार ऐसे लग रहा है जैसे कोई हंसनी तैरती हुई चली जा रही है।
1: तंग आ गई मैं तुम्हारी कविता से। न कोई थ्रिल है न कोई एक्साइटमेंट
0: है। क्यों नहीं? अरे तुम तो हो थ्रिल एक्साइटमेंट का जीता जागता रूप। गोरी गोरी दुबली पतली एक प्यारी सी बालिका जैसे
1: कटनार की गली यही कहेगी ना। ले समोसा का।
0: गर्म गर्म खिला रहे हो।
1: हाँ तो फ्रेंड्स मिस सुमी आपको अपनी एक नई कविता सुनाने जा रही है। ये कविता इन्होंने अपने प्रिय दोस्त चंदन के लिए लिखी है। बस ये भी चंदन जैसी है पर जरा सांप से बच कर है ना माय डियर फ्रेंड।
0: रीमा तू नहीं सुनेगी
1: तो सुनिए आप सब इनकी नई रचना। तो शुरू हो जाइए मिस सुमी।
0: अरे यार समोसा खाने
1: कोई नखरा वखरा नहीं चलेगा। कम ऑन।
0: ओ रीमा अच्छा अच्छा तो सुन बस। खुशबू बिखेरता महकाता पवित्र करता नंदन, कितना प्यारा कितना सुंदर है ये वृक्ष चंदन। ये चाहता है इसे आंखों में आंज लूं, शब्दों में बांध लूं, मन में समेट लूं, कल्पना से संवार दूं, कर लूं वंदन हे वृक्ष चंदन।
1: लो मेरी तो गाड़ी आ गई भाई। मैं तो चली। चलेगी समी?
0: आज नहीं भैया आते होंगे उनका इंतजार करूंगी।
1: ओके बाय बाय फ्रेंड
3: बाय।

0: अरे नमस्ते भाई साहब।
1: अरे तू रीमा, लगता है संगत का असर आ गया है। हाय हेलो नहीं, नमस्ते। आज वो तुम्हारी कबूतरी नहीं आई?
0: कबूतरी? What do you mean? You mean सुमी? देखिए भाई साहब, आप मेरी दोस्त का अपमान कर रहे हैं। अरे थोड़ी भावुक है बस, बच्चों जैसी मासूम है, हंसती है तो सुरीले तार झंकृत होते हैं, बोलती है तो जैसे कोयल कुहकती है, और चलती है तो
1: लगता है कोई हाथी झूम झूम कर चल रहा है।
0: अच्छा भैया, फिर आपने उसकी बेइज्जती की?
1: अरे भाई गजगामनी कहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
0: अच्छा भाई, तो भाई आप उसकी इतनी बातें क्यों करते हैं, कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है?
1: चक्कर और उससे? अरे बाबा डर लगता है। आती है तो कहती है, डॉक्टर साहब एक नया गीत लिखा है, सुनिए। क्या करूं तुम्हारी दोस्त है, झेलना पड़ता है उसे। लिखती है, कितना मोहक कितना सुंदर है इन फूलों का जीवन, हंसना खिलना और शर्माना, महकाना धरती का कड़कण।
0: अच्छा और क्या कहती है?
1: कहती है, खिलती कलियां झूमती लताएं, तपस्वी से चंदन वृक्ष, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं, जिस दिन बाग में न जाऊं वे उदास हो जाते हैं।
0: और आप कहिए तो प्रपोज कर दूं?
1: नहीं रीमा, बहुत भोली है वो, अधखिली अनछुई ओस में नहाई पावन कली की तरह, जिसकी पलकों में न जाने कितने सपने हैं। मैं इंतजार करूंगा।
0: समझ गई भाई साहब, मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगी। अभी तो वो भी मगन होगी अपने भैया के साथ।
2: स्वामी बिटिया जी, वो भैया जी आए हैं।
3: अरे भैया आप, घर में सब लोग ठीक तो हैं? और डैडी की तबीयत?
4: बहुत अच्छी है, घर में सब लोग अच्छी तरह से। वो तुझे मेरा तार नहीं मिला था क्या?
3: तार? वो तो नहीं मिला। खैर अब तो आप खुद ही आ गए हैं, बता दीजिए क्या लिखा था तार में।
4: यही कि रात की ट्रेन से हम लोगों का रिजर्वेशन है।
3: रिजर्वेशन?
4: हाँ, हमें आज ही बांदा जाना।
3: लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टियों में एक महीना बाकी है, और फिर मुझे परमिशन भी नहीं मिलेगी।
4: मैं तुम्हारे वार्डन से बात कर चुका हूँ, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, ठीक 8 बजे मैं टैक्सी लेकर आऊंगा।
3: लेकिन भैया अचानक ये सब क्या हो रहा है, मैं इतने दिन क्लासेस कैसे मिस करूंगी।

0: बताओ ना भैया, क्या बात है?
1: तो सच कह दूं? तो सुन, पापा ने तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर दी।
2: ब्याह?
1: इसी माह की 25 तारीख को तेरी शादी है, और इसीलिए मैं तुझे लेने आया।
0: ये तुम क्या कह रहे हो भैया? देखो भैया, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता।
1: ये मजाक नहीं सुमी, सच है। घर में मेहमान भी आने शुरू हो गए।
0: भैया, मुझसे पूछा भी नहीं और सब कुछ तय कर लिया।
1: देख सुमी, परेशान मत हो, तू तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। अरे आगरे का रईस घराना है, लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, 2 बार बाहर भी हुआ है।
0: ओ भैया,
1: सब ठीक ही है। और देख, रही तुझसे पूछने की बात, तो अपने खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है, बड़े बूढ़े जो भी ठीक समझते हैं वही करते हैं।
0: हाँ, तभी तो आप भुगत रहे हैं। रईस घराने की लाडली बेटी से पापा ने आपका ब्याह कर दिया और आपकी जिंदगी।
1: सुमी बस प्लीज, दुख की रग मत छेड़, सब अपना मुकद्दर है। पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनके घर वालों से मिल चुका हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं, और लड़के की बहन मंजू वो तो बहुत ही प्यारी
0: है।
1: अच्छा सुन, मैं चलता हूँ, तू तैयार है ना? हाँ,
0: सामान बांध लो, सब लाट साहब हैं, उसे बिना पूछे सब कुछ तय हो गया। कहते थे एमए कराएंगे और अब भी ये भी नहीं कर पाऊंगी। लड़का इंजीनियर है, अरे तो कोई और लड़की नहीं मिली, मेरा ही करियर खराब करना था। चल बेटा, चढ़ जा सूली पर। एक खत तो लिख दू रीमा को। प्यारी रीमा, तेरे चंदन वृक्ष को सर्प घेरने वाले हैं। मतलब मेरा ब्याह हो रहा है इसी 25 को। पहले से आ जाना, नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी और नहीं ब्याह करूंगी। सुमी
3: विजया जी, चलिए भैया जी आ गए हैं।

0: Dari mana? Dari mana?
1: अरे सुमी सुमी देख तेरी बारात आ गई। ए सुमी मैं भी तेरा दूल्हा देखा। नहीं रे मुझे छोड़कर मत जा।
2: क्यों?
1: मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
2: अरे घबराहट कैसा? सभी का ब्याह होता है। अरे शीशे में एक बार अपनी छवि तो देख ले। मैं बिल्कुल अप्सरा लग रही है।
1: छोड़ मुझे रूमा। शीशे में भी मुझे वही चंदन वृक्ष और उससे लिपटे हुए सांप दिखाई दे रहे हैं। मेरा क्या होगा रूमा?
2: सब बढ़िया होगा। अरे कुछ दिनों के लिए बस अपनी कविताएं भूल जा। अब तू एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है ना।
1: ठीक है।

0: मैं भी चलू?
1: अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों, शोमी के आने तक रुक जाती बेटी।
0: नहीं अंकल, रुक तो जरूर जाती, पर आज का रिजर्वेशन है और भैया स्टेशन आएंगे।
1: अच्छा बेटी ये बताओ
0: अंकल,
1: शोमी का दूल्हा तुम्हें कैसा लगा?
0: अंकल ये सब ब्याह से पहले पूछा जाता है, जो बिंद गया वही मोती। सुमी खुश रहे बस यही कामना है मेरी। अच्छा चलती हूँ, सुमी की यात्रा शुभ हो और वो अपनी एक नई जिंदगी में खो जाए।

0: भैया वैसे भाभी है बहुत खूबसूरत। भैया पापा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह क्या कहना है, पारुल दीदी के पैरों की धूल भी नहीं है ये। इसे कह दो मंजू इसे आईएस बनना है, आईएस समझी?
0: जरूर बनेगी भैया, भला तुम्हारा कहना कौन टाल सकता है ना भाभी?
2: अरे तार आताई आती दीजिए ना, जोड़ी की आती तार जोड़ी है।
0: आइए भाभी अब उधर बैठिए। आइए भैया
2: तुम भी चलो।
1: नहीं मैं आंगन में जा रहा हूँ भाभी ताई जी और बुआ जी के पास।
0: मुबारक हो लल्ला जी।
3: अरे भैया दुल्हन है कि एकदम चांद का टुकड़ा,
2: किस्मत वाले हैं हमारे भी भैया।
0: अच्छी हो जी, चाय पी लीजिए भैया। थक गए भैया आप लोग। अरे आप भी चाय पीजिए।
1: क्या कहा, मैं थक गया हूँ, इतनी जरूरी मीटिंग बुला रखी है मैंने, ऑफिस का सारा काम पड़ा है, ये कितनी सारी फाइलें निपटानी है और तुम कहती हो मैं थक गया हूँ। ये चाय ले जाओ और उस लड़की को पिला दो जो मेरे कमरे में बैठी है।
0: वो भाभी है भैया, अभी परसों ही तो तुम्हारे साथ उनका ब्याह हुआ है, हम लोग ही तो उन्हें विदा करा कर लाए हैं। कितनी प्यारी है भाभी।
1: भाभी अच्छा मजाक है, किसी को भी सजा कर बैठा दिया और वो तुम्हारी भाभी हो गई। ये भी भाभी है, ये भी भाभी है। कितनी सारी भाभियां हैं चारों तरफ, भाभी भाभी भाभी। वाह लो लो चाय पियो, लो लो भाभी तुम भी पीनो, तुम भी पीनो, तुम भी पीनो।
3: अरे इसकी शादी क्यों कर दी गई? हे भगवान अब बहू का क्या होगा? डॉक्टर ने कहा था कुंवारी की चांद सी बहू है, आते ही ग्रहण लग गया, हाय क्या होगा।
4: अरे बंधी भी तो पागल के साथ।
1: क्या कहा? अरे मैं पागल हूँ?
4: अच्छा
1: पागलों की बारात है, पागलों की। मैं पागल, मेरा मनुआ पागल, पागल मेरी प्रीत रे। ये मुझे क्या पहना दिया, हार अंगूठी, ये लो ये लो ये लो, लूटो लूटो, पागल का ब्याह हुआ है, झूमो नाचो गाओ।
0: भैया भैया ये क्या कर रहे हो भैया? भाभी बुआ पकड़िए ने, मैं बाबूजी को बुलाती हूँ।
1: छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे मुझे छोड़ दो छोड़ दो। देखो देखो मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो, तुम सब पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं
5: हूँ, क्या
1: मैं पागल नहीं
0: बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी।
5: क्या है मंजू बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो?
0: भैया को फिर दौरा पड़ा है बाबूजी, अनशन बोल रही हैं।
5: क्या कह रही है?
0: कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कपड़े फाड़ रही हैं, चाची बुआ साबुन ही पकड़े हुए हैं।
5: घबरा मत बेटी, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ, उसे डॉक्टर क्या तुरंत ले जाना होगा। ऐसा कर तू जल्दी डॉक्टर वर्मा को फोन कर दे।
0: अच्छा
5: भाभी, राहुल विकी तुम लोग इसे लेकर पीछे बैठो, मंजू तुम बेटे बहू को संभालना।
0: अच्छा बाबूजी।
5: घबरा गई होगी, हम लोग इसे लेकर अस्पताल तुरंत जा रहे हैं।
0: ठीक है बाबूजी। भाभी ताई जी संभालिए भैया को। भाभी भाभी ये क्या आप रो रही हैं? भैया ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है भाभी, ये लीजिए पानी पी लीजिए।
3: नई जिंदगी की शुरुआत, वो भी इस ढंग से। मंजू जी क्या हो गया आपके भैया को? क्या इसकी वजह मैं हूं या फिर

0: ऐसे दौरे इन्हें पहले भी पड़ चुके हैं। सच बताइएगा मंजू जी, आपको मेरी कसम।
1: सच ही बोलती हूँ भाभी, मेरे भैया जन्म से ऐसे नहीं हैं।
0: तो फिर?
1: बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, हर इम्तिहान में टॉप करते थे। इतनी छोटी उम्र में अच्छी नौकरी भी मिल गई, बाहर भी घूम आई हैं। लेकिन अचानक ही हमारे परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई।
0: ट्रेजेडी?
1: हाँ भाभी, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया। भैया उन्हें बहुत प्यार करती थी और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। 10 दिनों तक ना सोए और ना ही किसी से बात की। उसके बाद ही पहला अटैक पड़ा, इलाज किया गया, ठीक हो गई, मेहनत की और नौकरी भी मिल गई।
0: वहाँ ठीक रहते हैं?
1: हाँ भाभी, ऑफिस में बड़ी तारीफ करते हैं लोग उनकी, काम भी बहुत करते हैं।
0: और डॉक्टर्स क्या कहते हैं?
1: उम्मीद दिलाते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक रहते हैं, तभी तो उनका ब्याह किया गया है। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे अचानक ही दौरा पड़ गया होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
0: नहीं मंजू जी, अभी भूख नहीं।
1: तो लेट कर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ। शायद बाबूजी आ गए हैं।
0: कितनी सुंदर जगह ब्याह किया है अपनी लाडली बेटी का। रईस घराना, शानदार हवेली, 4-5 गाड़ियां, ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सा पागल पति। अरे टेटी, इससे अच्छा होता अगर आप मेरा गला घोट देती। जीते जी मुझे मारने की क्या जरूरत थी टेटी? रीमा, रीमा तो सच कहती थी, इस चंदन वृक्ष से संघर्षों के सर्प लिपट गए हैं। बड़ा डर लग रहा है मुझे।
1: भाभी सो गई मेरी भाभी, कैसा निश्चल भूला चेहरा है, कुछ घंटों में ही कुंबला गया है। किस सम्मोहन ने बांध दिया है मुझे इस मासूम ने, मुझे ही कुछ करना होगा। लगता है बाबूजी आ गए हैं। भगवान, भैया ठीक हो गए हूँ। बाबूजी क्या हाल है भैया का?
2: क्या बताऊं बेटे, बहुत ही वायलेंट हो गया था।
1: हैं?
2: हाँ, अगर सावधानी न बरती जाती तो शायद शायद वो नर्स का गला ही खोल देता।
1: बाबूजी?
2: हाँ, उसे इंजेक्शन देने जा रही थी और वो इंजेक्शन बड़ा ही कष्टदायक था बेटा। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहा है मुझे?
0: पाप क्या होगा बाबूजी?
2: क्या कह सकता हूँ मैं, फिलहाल तो इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। राजेश बेटा।
3: जी बाबूजी।
2: कल सुबह सब जगह फोन करके डिनर कैंसिल करने की सूचना दे देना।
1: लेकिन बाबूजी, भाभी के मायके वाले ट्रेन से आ रहे हैं, चल ही दिए होंगे। बाबूजी, भैया की शादी करके आपने ठीक नहीं किया।
2: उस समय तो ठीक था बेटा, डॉक्टर की राय से ही तो सब कुछ हुआ था।
1: उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक भी हो सकती है और बीमारी बढ़ भी सकती है, इसमें रिस्क है। हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबूजी।
2: अरे बेटे की मोहब्बत को तुम लोग क्या समझोगे?
1: ठीक कह रही हैं आप, उसके लिए एक क्या कई सुमी की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है।
2: मंजू, मंजू,
1: अगर आपकी बेटी के साथ भी यही होता तो?
2: चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप में आता है पढ़ देती है।
1: सच कह रही हूँ, इसलिए आप सहन नहीं कर सकते। कितनी मासूम लड़की है, उम्र में भी मुझसे छोटी, उसकी सिसकियां, उसका रोना, उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बाबूजी।
2: अब तो बस एक ही उपाय है बेटी, शाम को उसके मायके वाले आ रहे हैं, सोचता हूं उसे उनके साथ भेज दूंगा, शायद उसका वहां मन बहल जाए। जब रितेश ठीक हो जाएगा तो उसे बुलवा लूंगा।
1: ठीक है, मैं भाभी को मायके जाने के लिए राजी कर लूंगी। अब आप भी आराम कीजिए।
2: ठीक।
3: अरे आगे आप लोग, सुमी भी आई है। डिनर कैसा रहा? सुमी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? रितेश कहाँ है?
4: मम्मी प्लीज, के सब बातें एक ही साथ पूछ लेंगे। सुमी बहुत थक गई है, उसे आराम करने दीजिए।
3: अरे क्या हुआ सुमी? अरे तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देखूं तो? हाँ, अरे तुझे तो बड़ा तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। सुमी चल तू अंदर लेट जा बेटा। अरे जाना जल्दी से डॉक्टर को ले आ।
4: अरे हाँ बुलाता हूँ, आप उसके पास बैठिए।
0: चंदन
3: बेटा
0: छोड़ दो मुझे।
3: बेटा क्या हो गया मेरी सुनी बेटी?
4: आइए डॉक्टर साहब, देखिए कितनी तेज बुखार है।
3: हाँ देखिए डॉक्टर साहब कितना तेज बुखार है।
5: इत्मीनान रखिए, मैं देख लेता हूँ। अरे भाई इसको तो बुखार है, ऐसा करता हूँ मैं इसे एक इंजेक्शन फिलहाल लगा देता हूँ, और ये दवाएं आप बाजार से मंगवा लीजिएगा, चार चार घंटे पर देते रहिएगा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा।
3: ठीक है ठीक है,
5: और घबराने की कोई बात नहीं है।
3: ठीक है जा बेटा दवाएं ले आ।
4: थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। सुमी सो गई है मम्मी, आप उस कमरे में चलिए, डैडी यहाँ बैठ जाएंगे।
3: ठीक है,
4: आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आइए।
3: हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है?
4: मम्मी हमें धोखा दिया गया है।
3: धोखा? कैसा धोखा?
4: हाँ मम्मी धोखा, वो बात यह है कि रितेश को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, कई महीनों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा। वो तो कल शाम को ही फिर से उसे दौरा पड़ा, अब हॉस्पिटल में।
3: अच्छा,
4: उसके ड्राइवर ने हमें सब कुछ बता दिया मम्मी, नहीं तो हम तो धोखे में रहते।
3: नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भगवान ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा राकेश, मेरी मासूम बच्ची सुमी, ये क्या?
4: देखिए मम्मी इस तरह घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा। मैंने और डैडी ने तय कर लिया।
3: क्या?
4: सुमी अब वहां नहीं जाएगी। रितेश वायलेंट हो जाता है ममा, तो जान पर भी हमला करता है। अब हम सुमी को नहीं खोना चाहते। मम्मी एक बार सुमी ठीक हो जाए तो उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देंगे, रीमा उसकी केयर करेगी, और रही ससुराल वालों की बात तो उनसे हम निपट लेंगे।
3: अच्छा।
4: अब ठीक है ममा, आप सुमी के पास जाइए।
3: ठीक है।
1: वर्ष बीत गए अपने आप से लड़ते हुए। वाह सुमी चौधरी वाह, बाहर मुखौटा पहन रखा है एक गंभीर प्राध्यापिका का, लेकिन अंदर छटपटाती है भोली भाली सुमी। क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था? भाग्य ने दुख भोगने के लिए मुझे ही क्यों चुना? अगर रीमा और डॉक्टर राजन न होते तो क्या होता मेरा? मैं तो टूट चुकी थी, और
0: मैंने तुझे बदले में

0: गिरा दिया, रीमा को दुख और डॉक्टर साहब को तड़प। आखिर आखिर वो क्यों तप रहे हैं एक टूटे हुए इंसान के लिए? मुझे हर वक्त समझाती रहती है, पर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं?
1: अंदर आ सकता हूं?
0: ओ, आप आइए आइए, बैठिए ना। रीमा का कोई खत आया? कैसी है वो? और जीजा जी और बच्चे तो ठीक है ना?
1: सब ठीक है, तुम कैसी हो सुमी?
0: अच्छी हूँ। सुना है आप बाहर जाने वाले हैं।
1: यहाँ रहकर भी क्या करूंगा सुमी? एक बात कहूँ सुमी, जिंदगी अनिच्छा से जी जाए तो बोझ बन जाती है, हर लम्हा बोझिल हो जाता है। अभी वक्त है सुमी, ये घेरा जो तुमने अपने चारों ओर बना रखा है उसे तोड़ दो, तोड़ दो सुमी। आज आखिरी बार कह रहा हूं।
0: कैसे तोड़ दो? ये दुनिया, ये समाज मुझे जीने देगा?
1: समाज, समाज, फिर वही समाज। क्या दिया है समाज ने तुम्हें? घुटन, तनाव और दुख, तिल तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया है तुम्हें, और लोग भी जल रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? हार गए हैं हम भी, क्या मिलेगा शिलाओं से टकराने से? चलता हूं, गुड बाय सुमी।
0: राजन,
1: सुमी
0: रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत थक गई हूं
1: सुमी।
0: और राजन,
1: ओ सुमी, मैं जीत गया सुमी, मैं जीत गया। शायद चंदन वृक्ष से सांप हट गए हैं
0: और बिखर गई है मादक गंध।

अभी आप सुन रहे थे नाटक चंदन वृक्ष। इसकी लेखिका थी उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवा भाग। बीते चार हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। ये है रीकैप एपिसोड 1।
1: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार मुंबई आ गए थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है। यहाँ कोलीवाड़ा में जाम थे
2: जी,
1: तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
2: साइन में,
1: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T157
2: जी।
1: तो टी मतलब होता है टट्टी,
2: अरे
1: ओरिजिनल टट्टी थी वो।
2: ओह गॉड।
1: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया। और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई होली आई कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया, छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा करता था
2: जी
1: कि फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, डायरेक्टर बाय रमेश तलवार, म्यूजिक बाय कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
2: जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है,
1: ना ना वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड में लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा था उनके दिल में, उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मैं, मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका नाम है सौतेला। तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया, कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सिलेक्ट हो गया। और मद्रास एवीएम में जो है उसकी शूटिंग थी।
0: एपिसोड 2 में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
1: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तेफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो का, राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त
2: बिल्कुल।
1: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृष्ण साहब से, कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है, मुझे असिस्टेंट रख लेंगे, एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आँख से, तो मैं काफी आगे चलूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर कृपा ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो, मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रखो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी चार असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बीआर चोपड़ा ने कहा पांचवा असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
2: जी।
1: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
2: यस
1: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है पांच आने में, फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुरला एक आने का टिकट, वहां जाता पांच आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, अठन्नी में
2: काम बन जाता था,
1: काम बन जाता।
2: कौन कौन सी फिल्में देखी
1: सब होगी? कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो मैंने देखी है, बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें, तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे, यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया इसको जबरदस्ती पांच पांच रखकर कोने में बैठा सब आगे चले। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मैं गया मिलने,
2: जावेद साहब ने,
1: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए
2: हाँ
1: फिर बोलिए। और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं, आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा। मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
2: हाँ बिल्कुल,
1: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
2: वो भी आपके दोस्त।
1: अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिंपल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी।
2: जी जी।
1: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में।
2: हाँ।
1: तो पिक्चर को बिल्टअप मिलता है ये उनके जहन में था। और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त थे। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था। खराब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी। मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही। और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
0: तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना।
1: करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बाप रे।
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में। और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में। और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
2: और सलमान खान ड्रॉप हो गए।
1: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
2: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत याद
1: देखते हैं। नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही है ये सबसे हटके होगी।
2: बिल्कुल। और थी भी वो
1: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
2: बड़ी स्टार कास्ट,
1: अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े

0: तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत के चौथे एपिसोड में ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प था।
1: तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया। उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ, लेकिन इसमें चेंजेस होंगे। नया न्यू कमर था राइटर,
0: जी जी जी,
1: उन्हीं का नाम है राइटर, है राइटर, स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर ले तो। सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल,

0: वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलस्ट्रेटेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का लड़का,
1: हाँ,
0: तो हमको एक विलन का नया नेगेटिव करेक्टर मिल गया।

0: तो चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है।
1: अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूँ जो आपने सेलिब्रिटीज के साथ किए हैं, जैसे शबाना आजमी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ, जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है।
2: जी, सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक।
1: खूबसूरत
2: खूबसूरत। पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे। तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा बांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश से कहो पूछ लो, तो मेरे पास कोई आया जो भी ऐसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा। तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, प्ले स्क्रिप्ट बताई और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है, अच्छा है प्ले, सब बहुत अच्छा था। और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर।
1: जी जी,
2: मैंने कहा ये जो इधर टेंटम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, मेरे हो रही होगा ये नहीं होगा, मेरे नाटक में नहीं होता।
1: जी जी जी,
2: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ।
1: जी,
2: नाटक में अमेरिका में बैठे तो मैं क्या करूँगा। तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब में काम करता वो, और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती हैं, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उसने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5, फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने।

0: चमन आजमी वाला प्ले
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस फूड डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में

0: प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर सरदी साहब का, और फिर वो मैंने एक बनाई थी NFDC के लिए पिक्चर, तेरा नाम मेरा नाम, न्यू कॉमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो वो आया, उसने कहा कि मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला, ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको सूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है
1: जी
0: जो इसमें ठीक रहेगा? पहले जिया जी के पास पूछते हैं, अगर वो करने के लिए हाँ कर दें। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का ABCL के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहे हैं, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं अमित जी से भी बात कर लीजिए, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज में। बोले सब्जेक्ट सुनाओ, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया। और उन्होंने मुझसे कहा, ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे? मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे, अपने ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहें, और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती हैं, मैं भी अपने लोगों को भी बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटे कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूँगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटों का, टूर का। बोले ठीक है। रिहर्सल हुई, हमने शो रखा भाईदास में, प्राइवेट शो, जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सब ने, हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई, सब ने देखा, लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उन्होंने रमेश जी आप ही करिए।
2: अरे वाह।
0: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था, ये आप ही करिए कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप, करिए आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो मेरे दर्शन करनी शुरू हो गया और फिर हमें अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
2: वाह वाह वाह।
0: उन्होंने कहा रोल मेन जया जी का, लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में, आप जब जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतजार होता है, क्योंकि वो जया जी थ्रो प्ले में और मेरा कभी कभी बीच में आता था मैं 3-4, तो सबने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में ही है लेकिन लाफ्टर लाफ्टर आते हैं मेरे आने पर, ऑल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी, वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए। अमेरिका से फिर गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली। क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुँह मांगा दाम, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, फिर डायरेक्टर को भी इस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको, जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई, तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैं तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? प्ले करूँगा, रोल करूँगा। कब करना चाहोगे? कौन सी क्या स्क्रिप्ट सुनाओ। और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना, और वो प्ले अच्छा है, आज तक चल रहा है वो भी। और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो चार ही कैरेक्टर है, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ। वो प्ले भी हिट हुआ, आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी, अमित जी के ना इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो तीन बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गुरड़िया से आप कमर्शियल बातें कर ले।

जय जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेट में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जय जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज्यादा है। बोले आप 6 इंच के जूते पहन लो। और मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशो का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोइट्री के ऊपर उनकी कहानी, लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था और वो हमने प्ले खेला। शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे? बोले तुम पूछो भाई, मैं नहीं बोलूँगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा, पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूँगा और पोइट लगूँगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए। लेकिन जो फिर तो उनके राइटर्स उस प्ले के, वो चाहते थे कि वो रोल करें खुद। तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूँगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले। शबाना जी को ये थोड़ा करूँगा कि अब आपके साथ ये करेंगे। तो लगा फिर मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, समथिंग राइटर ने। शौकत भाभी ने अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियां बज रही हैं, ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, मैंने शबाना इस पे हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो? मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहें कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है। तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा, अच्छा बनेगा? मैंने कहा उसमें बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें भी आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशो का मसीहा भी किया है हमने, और ये भी है, बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए, जावेद साहब से कहिए लिखे। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोले मैं नहीं कहूँगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी? आप अपने ढंग से, आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनके उनकी स्क्रिप्ट को फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए। तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया, और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए, तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करनी पड़ती है, शबाना की और वो, तो आप किसी और, तो आप कंवलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।

0: अमित जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट रहे हैं, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेस और इन दिनों जो कुछ नाटक आप करें उनके बारे में बताइए।
1: देखिएगा, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा हैं, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिलके, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शोज करते रहते हैं। तो इप्टा में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
0: सबसे पुराना है।
1: पुराना है मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था, उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है, और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है श्याम का, उसमें कैरेक्टर का नाम श्याम है, तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना छुलवार या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती थी, तो मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी रात में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे।

0: वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सचदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये टाइम यहाँ से शुरू किया था। अब जो था मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में। ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब, जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिगमेलियन पे था प्ले। तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लग गए, सब लोग हिंदी में सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नज़दीक नज़दीक की है, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिश हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी। वो बन गया। जब एंड तक पहुंच गए फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी कर ली। वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मेरे मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया। रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लग गया, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता, बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है। और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
1: वाह वाह,
0: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कंवलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी है उसकी।
1: जी जी जी, काबुली वाला भी चल रहा है।
0: काबुली वाला अलग है, काबुली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी विमलराज की बेटी वो आई, परीक्षित थानी के संग आई थी। उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा वो करके, मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीजें लेके एक स्क्रिप्ट बना के आपको सुना दूंगा। और परीक्षित थानी से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, क्योंकि बलराज सहनी ने रोल किया था। उन्होंने नहीं यार मैं अभी अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करनी, वो टाइम अलग था, अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है, तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी कभार करता।
1: मैंने देखा है क्यूट प्ले है।
0: हाँ बहुत अच्छा है। तो लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

0: स्क्रिप्ट जो बनाई है फिल्म से लेके बनाई है और उसका हमने एक वर्सल स्टेज पे क्या हो सकता है उतना करके जमा लिया अपना और चलता है। लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जाहिदा हेना करके एक पाकिस्तान की राइटर है, उन्होंने काबलीवाला लौट आया इन्हीं करेक्टर को लेके लिखा था और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बता। तो मैं एज इट इज जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबलीवाला जो एक्टरों के साथ अच्छे ये सोलो पढ़ती है काबलीवाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एक आध बात कर लिया, फिर लुबना सदीकी ने एक आध बात कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो बार मेरे साथ करो और स्टेज पे पढ़ो, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और ये उसके सारे बीज जो है काबलीवाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबलीवाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल और उनका इलाज करने वहां गई है। ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा हूँ। तो वो पोर्शन हमने काबलीवाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी, बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूँ, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका वो तो भी ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।

0: ये थी रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवा भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज उजाले उनकी यादों की।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो, या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको

0: लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको आईवी लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है, एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में, हमें थोड़ा प्रिकॉशन केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
2: कहीं बेख्याल हो कर यूही तूलिया।
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल,
3: जाने
1: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदा।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आप सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर कहा कि साइकिल चलाने से स्वास्थ्य और प्रदूषण के समाधान के साथ ही ईंधन की बचत भी होती है। श्री मांडविया ने कहा कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जांच केंद्रों GATC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। गंगा दशहरा पर्व के पावन अवसर पर 25 मई को जल गंगा संवर्धन अभियान को जन भागीदारी आधारित बनाने के लिए प्रदेश के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में व्यापक जल संरक्षण गतिविधियों और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे जन जन को इस पुनीत कार्य से सीधे जोड़ा जा सके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धावक गुरिंदर वीर सिंह को एथलेटिक्स फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गुरिंदर वीर सिंह 10.10 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। और IPL क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में जारी है। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 5:02 हुए हैं। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिव।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे गर्मी के मौसम में लू से बचे विषय पर। साथ ही हमारा दूसरा विषय है मरकोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों, इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 खास बातों का पालन करने और राष्ट्र के हित में योगदान देने पर। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझ कर करें विषय पर। वार्ताकार है प्रज्ञा गौतम। साथ ही क्रम जीवन आलोक में हमारा चर्चा का विषय रहेगा जैसी संगत वैसी रंगत। और दोस्तों, हम आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं गर्मी के मौसम में लू से बचे विषय पर। दोस्तों, गर्मी के मौसम में लू से बचाव आवश्यक है। गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज धूप, उच्च तापमान और कई स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आता है। इस मौसम में यदि सही सावधानी न बरती जाए तो शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। सही खान पान, पर्याप्त पानी का सेवन और दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव कर हम स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पानी की मात्रा अधिक से अधिक लेनी है। शरीर से पसीने के रूप में पानी की कमी तेजी से होती है, जिससे डिहाइड्रेशन यानी जल की कमी हो जाती है। इससे बचने के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आवश्यक है। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, फलों का रस जैसे तरल पदार्थ भी शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। तरबूज, खरबूज, खीरा और संतरा जैसे पानी से भरे फल भी हमें अत्यंत लाभ प्रदान करते हैं। दोस्तों, गर्मियों में खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाहर का तला भुना और मसालेदार भोजन कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि यह पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालता है। इसके बजाय हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। हरी सब्जियां, दालें और सलाद का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, इस मौसम में धूप से बचाव भी अत्यंत आवश्यक है। तेज धूप में अधिक देर तक रहने से लू हीट स्ट्रोक लग सकती है, जो गंभीर समस्या बन सकती है। इसलिए दोपहर के समय खासकर 12 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचना चाहिए। यदि बाहर जाना जरूरी हो तो सर ढककर, हल्के ढीले कपड़े पहनकर, धूप का चश्मा लगाकर या छाते का उपयोग करके जाना चाहिए। इससे शरीर को धूप के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। दोस्तों, गर्मियों में पर्याप्त आराम और नींद लेना भी बेहद जरूरी है। अधिक गर्मी के कारण शरीर जल्दी थक जाता है, इसलिए दिन भर में थोड़ा विश्राम करना और रात में पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। साथ ही हल्का व्यायाम, योग करना भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। गर्मी में चिड़चिड़ापन और थकान बढ़ सकती है, इसलिए शांत रहने, सकारात्मक सोच रखने और ठंडी जगहों पर समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए। संगीत सुनें, किताबों को पढ़ें और परिवार के साथ समय बिताएं, जिससे मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान होती है। दोस्तों, हम कह सकते हैं गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल करना कोई कठिन कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव से संभव है। यदि हम पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित आहार लें, धूप से बचाव करें, तो हम इस मौसम में भी स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं और लू से अपने आप को बचा सकते हैं। साथियों, अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय मरकोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर चर्चा करने का। दोस्तों, मरकोर एक खूबसूरत और दुर्लभ जंगली बकरी है, जो अपने लंबी और मुड़ी हुई सींगों के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रजाति मुख्य रूप से भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्राणी की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मरकोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, मरकोर की आबादी पिछले दशकों में बहुत कम हो गई है। इसका मुख्य कारण शिकार, प्राकृतिक आवास का विनाश और घरेलू पशुओं के साथ चराई के लिए संसाधनों की प्रतिस्पर्धा है। ग्रीन बेल्ट के संरक्षण के प्रयासों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से ही यह प्रजाति अब धीरे धीरे बढ़ रही है। दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य लोगों को इस प्राणी और इसके आवास के महत्व के बारे में जागरूक करना है। साथियों, इस दिन का महत्व केवल मरकोर की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। यह दिन हमें पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को भी याद दिलाता है। मरकोर शाकाहारी होते हैं और वे

पहाड़ी क्षेत्रों में वनस्पतियों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसलिए मारखोर की सुरक्षा केवल एक प्रजाति को बचाने का नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण और जैव विविधता की सुरक्षा का संदेश देती है। मारखोर के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कई गांवों ने संरक्षण के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी दिखाई है। वे अपने इलाके में राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों का ध्यान रखते हैं। इन क्षेत्रों में पारंपरिक शिकार को नियंत्रित करने और पर्यटन के माध्यम से आय बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। इस प्रकार स्थानीय लोग संरक्षण के साथ साथ आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मारखोर की सुरक्षा के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर जैसी संस्थाएं सरकारों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मारखोर की आबादी पर नजर रखती है और कानूनों का पालन सुनिश्चित करती है। यह सहयोग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जंगली जानवरों की सुरक्षा केवल एक देश तक ही सीमित नहीं रह सकती। दोस्तों, कह सकते हैं कि मारखोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस केवल एक प्रतीकात्मक दिन नहीं है बल्कि यह हमें प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और जैव विविधता के महत्व का एहसास कराता है। यह हमें सिखाता है कि प्रजातियों की सुरक्षा में हमारा योगदान आवश्यक है और हमारे छोटे छोटे प्रयास भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। मारखोर की सुरक्षा न केवल इस सुंदर प्राणी के लिए जरूरी है बल्कि हमारे पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मारखोर का अस्तित्व हमें आशा, धैर्य और प्राकृतिक सुंदरता की याद दिलाता है। इसे संरक्षित करना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा दायित्व भी है। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

0: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में। हमारे अगले विषय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 खास बातों का अनुसरण करें और राष्ट्र हित में योगदान दें पर चर्चा करने का। दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 प्रमुख अपील जनता से की। उन्होंने कहा, ईंधन का बचाव करें, विदेश यात्रा से बचें, सोने की खरीदारी कम करें, वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं, खाद्य तेल का उपयोग कम करें, रासायनिक उर्वरकों में कटौती करें, साथ ही वोकल फॉर लोकल का पालन करें। दोस्तों इन सभी बातों का मुख्य उद्देश्य खपत को कम करना है। साथियों हम सभी अगर इन बातों का अनुसरण करते हैं तो इससे हमारा ही फायदा है। जैसे ईंधन का बचाव अगर होता है तो पेट्रोल डीजल का उपयोग हम कम कर पाएंगे, इससे हमारा खर्चा कम होगा। और इसका एक उद्देश्य यह भी है कि इससे हमारी मुद्रा विदेश में जाने से बची रहेगी। दोस्तों अब समय हुआ है क्रम वार्ता में आपको विषय सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझ कर करें पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार है प्रज्ञा गौतम।
1: आज के इस आधुनिक युग में सोशल मीडिया हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हमारे दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने से लेकर व्यवसायों को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुए हैं। साथियों सोशल मीडिया विभिन्न प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है जो अपने उपयोगकर्ताओं के बीच विचारों एवं सूचनाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करती है। दोस्तों सोशल मीडिया की व्यापकता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि लगभग 5 अरब से भी अधिक लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जो विश्व की लगभग 62% आबादी के बराबर है। साथ ही सोशल मीडिया ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो उपयोगकर्ताओं को सामग्री बनाने और साझा करने, दूसरों के साथ बातचीत करने और समुदाय बनाने की अनुमति देते हैं। हालांकि सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। साथियों आज हम सोशल मीडिया के समझदारी पूर्वक उपयोग के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों डिजिटल युग में सोशल मीडिया के फायदे निर्विवाद हैं, जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डालते हैं। दोस्तों वैश्विक संपर्क को बढ़ावा देने से लेकर एक शक्तिशाली मार्केटिंग टूल के रूप में काम करने तक सोशल मीडिया भौगोलिक सीमाओं को पार करता है, लोगों को एक साथ लाता है और हमारे संवाद करने को एक नया रूप देता है। दोस्तों सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम विश्व के किसी भी क्षेत्र में बैठे अपने दोस्तों और परिजनों से वीडियो कॉल करके जुड़ सकते हैं, उनके साथ होने का अनुभव कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं साथियों, व्यवसाय एवं उद्योग जगत में भी सोशल मीडिया के साधनों के कारण क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं। दोस्तों वर्तमान समय में शिक्षा क्षेत्र में भी सोशल मीडिया का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। इसके माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी सुलभता से करते हैं। निसंदेह सोशल मीडिया तेज गति वाले डिजिटल युग में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है, जो हमारे जुड़ने, संवाद करने और जानकारी प्राप्त करने के तरीकों को नया आकार देता है। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया ने जहां कनेक्टिविटी के लिए कई लाभ और अवसर प्रदान किए हैं, वहीं यदि इसका इस्तेमाल बिना सोचे समझे किया जाए तो इसके कई दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। साथियों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अध्ययन करते समय विद्यार्थियों का ध्यान भटकता है और बच्चे, यहाँ तक कि बड़े विद्यार्थी भी पढ़ाई करते हुए अन्य मनोरंजक चीजें देखने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों किसी भी वायरल पोस्ट या संदेशों के माध्यम से फर्जी खबरें और दुष्प्रचार करना बहुत आसान है, जिससे गुमराह होने की अधिक संभावना रहती है। साथ ही व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने और डेटा चोरी जैसी घटनाओं से उपयोगकर्ता की गोपनीयता से समझौता होता है और दोस्तों कई बार तो यूजर को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ता है। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग का सबसे बुरा प्रभाव पारिवारिक रिश्तों पर पड़ा है। लोग सार्थक रिश्तों के स्थान पर सोशल मीडिया पर जुड़े रिश्तों को अधिक समय और महत्व देने लगे हैं। आजकल हम देखते हैं कि एक ही घर में सभी सदस्य साथ बैठकर भी अपने अपने मोबाइल पर व्यस्त हैं, जो कहीं ना कहीं पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद हानिकारक है। इससे लोगों की वास्तविक रिश्तों और खुशहाली में बाधा उत्पन्न होती है। साथियों, गुमनाम और फेक अकाउंट्स के माध्यम से मशहूर हस्तियों सहित जनसाधारण को ट्रोल करना, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने जैसी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। इसके साथ ही फर्जी अकाउंट बनाकर पहले लोगों से दोस्ती करना, उन्हें अपने जाल में फंसाना और बाद में ब्लैकमेल करने जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इन सब का कारण कहीं ना कहीं लोगों का लापरवाही से सोशल मीडिया का उपयोग करना है। जैसे अनजान लोगों से दोस्ती करना, उन पर भरोसा करना लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी में डालता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय व्यतीत करना आजकल बहुत आम बात हो गई है। ऐसे में लोगों से व्यक्तिगत संपर्क, संचार और सामाजिकता कम हो रही है, जिससे व्यक्ति सबसे कटकर अकेला रहना पसंद करने लगा है। साथियों, एक अध्ययन से पता चलता है

0: विशेष रूप से किशोरावस्था में सोशल मीडिया का उपयोग उनके आत्मसम्मान, चिंता और अवसाद का कारण भी बन रहा है। परफेक्ट सेल्फी प्रस्तुत करने तथा लाइक और कमेंट प्राप्त करने के लिए पोस्ट पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से दूसरों के साथ अवास्तविक तुलनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे चिंता और अवसाद बढ़ता है। सोशल मीडिया घोटाले और धोखाधड़ी फैलाने में भी जिम्मेदार हो सकता है। फर्जी खबरें, फिशिंग हमले और फर्जी योजनाएं सामाजिक माध्यमों से आसानी से फैल जाती हैं, जो वित्तीय धोखाधड़ी का कारण भी बनती हैं। आए दिन हम सुनते और पढ़ते रहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से नौकरी देने का झांसा देकर लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। साथियों, इसमें दोष सोशल मीडिया का नहीं है, दोष हमारी लापरवाही का है, जो हम भ्रमित सूचना पर भरोसा कर धोखाधड़ी का शिकार बन जाते हैं। साथियों, सोशल मीडिया का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव छोटी उम्र के बच्चों पर पड़ रहा है। इनके अत्यधिक उपयोग के कारण बच्चे इसके आदि हो गए हैं, जिससे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और जिद्दी हो रहा है। ऐसे में अभिभावकों को चाहिए कि उन्हें मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रखकर वास्तविक जीवन जीना सिखाएं। हम यह बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि सोशल मीडिया या उसका उपयोग खराब है या हानिकारक है। निश्चित रूप से इसने हमें कई सुविधाएं प्रदान कर हमारे जीवन को आसान बना दिया है, किंतु दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया ने वैश्विक रूप से जोड़ने का काम तो किया है, लेकिन यदि इसका अत्यधिक इस्तेमाल किया जाए या बिना सोच विचार के किया जाए, तो निश्चित ही इससे गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ऐसे में दोस्तों, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि सोशल मीडिया के सभी माध्यमों का उपयोग अपने हित के लिए करें, ना कि इनके आदि बनकर स्वयं को सोशल मीडिया का गुलाम बनाएं, बल्कि इसका उपयोग अपने जीवन को तरक्की के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए करें। दोस्तों, सोशल मीडिया के साथ ही अपने परिवार को भी पर्याप्त समय दें। यदि घर में बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि वे कम से कम इसका उपयोग करें और आपकी देखरेख में ही करें। साथियों, वर्तमान समय में सोशल मीडिया कुछ सीमा तक हमारे लिए आवश्यक भी है, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि इसका इस्तेमाल ही ना करें, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार सुविधा के लिए सावधानी पूर्वक और सीमित मात्रा में ही करें। अंत में कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात पूरी करूंगी। सोशल सोशल करते हो, क्या सोशल मीडिया पर ही मरना है? बाहर निकलो इस जाल से तुम, अब कुछ ख्वाब हकीकत करना है। चाहत रखो जीने की तुम, सब कुछ करके दिखलाओगे। सोशल मीडिया से दूर तो जाओ, ख्वाब हकीकत पाओगे। बैठे हो तुम दोस्त बनाए सोशल के हथियारों से। हुई जरूरत अगर तुम्हें तो हो जाओगे बेकारों से। सच कहती हूँ मान लो कहना दूर रहो बहकावे से। जीना है जीवन अच्छा तो साथ चलो अपनाने से। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अंत में बस यही कहूंगी दोस्तों, समय बहुत अनमोल है, इसे सोशल मीडिया पर व्यर्थ ही बर्बाद ना करते हुए अपने और अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित के लिए अच्छे कार्य करने में लगाएं।
1: दोस्तों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता, विषय सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझकर करें पर। वार्ताकार थी प्रज्ञा गौतम। दोस्तों, अब समय हुआ है क्रम जीवन आलोक में हमारे आज के विषय जैसी संगत वैसी रंगत पर चर्चा करने का। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका जीवन समाज के बीच ही विकसित होता है। वह जिन लोगों के साथ रहता है, उनके विचारों, व्यवहार और आदतों का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। इसी सत्य को दर्शाने वाली कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत, अर्थात मनुष्य जिस प्रकार की संगति में रहता है, उसका स्वभाव और चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। अच्छी संगति मनुष्य को ऊंचाइयों तक पहुँचा सकती है, जबकि बुरी संगति उसे पतन की ओर ले जाती है। दोस्तों,

संगति का प्रभाव सबसे अधिक बच्चों और युवाओं पर पड़ता है। बचपन और युवा अवस्था सीखने की अवस्था होती है। इस समय व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखता है। यदि बच्चे अच्छे मित्रों और संस्कारी लोगों के संपर्क में रहें, तो उनमें अच्छे गुण विकसित होते हैं। वे ईमानदार, मेहनती, अनुशासित और विनम्र बनते हैं। इसके विपरीत यदि उनकी संगति गलत लोगों से होती है, तो वे झूठ बोलना, आलस करना, अनुशासनहीनता जैसी बुरी आदतें सीख जाते हैं। साथियों, अच्छी संगति हमें सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और प्रेरणा प्रदान करती है। अच्छे मित्र कठिन समय में हमारा साथ देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। वे हमें मेहनत करने, अपने लक्ष्य पर ध्यान देने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। विद्यालय और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए अच्छी संगति विशेष रूप से आवश्यक होती है, क्योंकि यही समय उनके भविष्य की नींव को तैयार करता है। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में संगति का अर्थ केवल प्रत्यक्ष मित्रों तक ही सीमित नहीं रह गया। सोशल मीडिया, इंटरनेट, मनोरंजन के साधन भी हमारी संगति का हिस्सा बन चुके हैं। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका भी हमारे विचारों, व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें सकारात्मक सोच, ज्ञानवर्धक चीजों को अपनाना चाहिए और नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहिए। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण सत्य है। मनुष्य का चरित्र और भविष्य उसकी संगति पर बहुत हद तक निर्भर करता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे लोगों की संगति अपनानी चाहिए और बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। अच्छी संगति जीवन को सुख, सफलता और सम्मान से भर देती है, जबकि बुरी संगति जीवन को दुख और असफलता की ओर ले जाती है। दोस्तों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति।

एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम। मैं सागर हूँ।

0: निगम सागर प्रस्तुत करता है,
1: मैं सागर हूँ।
0: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
2: सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर।
0: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
3: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी।
0: मैं सागर हूँ। इस प्रोग्राम में स्वीकार कीजिए साहिबा
4: और नासिर का
0: नमस्कार। सागर का हर चौराहा, हर गली अपने में कई कहानियाँ समेटे हुए है। ऐसी ही कुछ कहानियाँ हम आपसे साझा करेंगे इस प्रोग्राम में। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं, तो हमें लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9302911960 पर। इस कार्यक्रम में शामिल हैं सागर वासियों की पुरानी यादें, आजकल के उनके अनुभव और सुझाव भी। नाम क्या है?
5: चंद्रकांत दड़िया।
0: चंद्रकांत जी, बताइए कि पुराना सागर और अभी हम परिवर्तन देख रहे हैं, क्या परिवर्तन पाए?
5: बहुत परिवर्तन है, चीजें लगातार बदल रही हैं, प्रोग्रेसिव हो रही हैं। टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वी आर फार बेटर देन अर्लियर। अभी रोजगार के अवसर भी समझ आने लगे हैं, एजुकेशन के मामले में भी सागर काफी आगे निकल रहा है, स्पोर्ट्स में भी हम धीरे धीरे अच्छा कर रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ स्टाइल काफी चेंज हुआ है।
0: और ये जो सड़कों वगैरह की स्थिति है,
5: बहुत अच्छी है। इसमें नो डाउट के सड़कें पिछले 10 साल में बहुत ही बेहतर हुई है, लगातार बेहतर होती जा रही है।
0: जो स्वच्छता की बात है वहाँ
5: मच बेटर मैम, मच बेटर। अगर मैं बोलूँ तो पिछले 10 साल में या 15 साल में बोले तो जमीन आसमान का फर्क, तो आई लाइक इट।
0: ओके, और यहाँ जो स्पॉट्स बने हैं, कुछ सेल्फी पॉइंट बने हैं,
5: ग्रेट, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सागर की लोकल अथॉरिटी द्वारा। लोगों को हैंग आउट करने के लिए भी टाइम मिल रहा है, घूमने के लिए लोग पहले की तरह घरों में नहीं बैठे हैं, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं।
0: अच्छा, तो कुछ पार्क्स हैं जो

0: बहुत जल्द मैम, बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच,
1: थैंक यू।
2: आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक स्थानों की देखभाल की। श्रोताओं, सार्वजनिक स्थानों की देखभाल करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है। जैसे पार्क, सड़क, सार्वजनिक शौचालय, अस्पताल, स्टेशन, यहाँ सभी जगहों पर स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखना हम सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे हमें ही सुविधा होती है। छोटी छोटी बातों का हम ख्याल रखें, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डाल, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से या पीक डालने से या गंदगी फैलाने से हम बचें। जो हमारे पार्क हैं उनमें जो पेड़ पौधे लगे हैं, फूल हैं, उनको कोई नुकसान न पहुंचाए। स्थानीय स्तर पर स्वच्छता अभियानों में हम हिस्सा लें और दूसरों को भी जागरूक करें। दीवारों पर लिखने से या उन्हें गंदा करने से हम एकदम दूर रहें। स्वास्थ्य की दृष्टि से हम यह सुनिश्चित करें कि पार्क और अन्य सार्वजनिक स्थान एकदम सुरक्षित बने रहें, जिससे वहां बेहतर वेंटिलेशन हो और रोशनी भी सही आए। हम छोटे छोटे उपाय अपनाकर सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ और सुरक्षित रख सकते हैं। अधिक जानकारी देते हुए हमारे साथ हैं नगर निगम कमिश्नर महोदय श्री राजकुमार खत्री जी।
3: पहले मैं जो है आपको शौचालय के बारे में जो है बताना चाहूंगा। बेसिकली यहाँ मेरी आम नागरिकों से इस बात की जो है अपेक्षा भी है और अपील भी है कि जो आपकी शासकीय जो भी संसाधन है या प्रसाधन है वो आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, और जैसे घर में अपनी चीज़ों का उपयोग करते हैं उसी तरीके से साफ सफाई और उनकी सुरक्षा दोनों का आप लोग जो है बेहतर उपयोग करें। क्योंकि बाहर से आने वाले लोग भी उनका जो है उपयोग करते हैं और आप लोग भी उसका जो है उपयोग करते हैं। नगर निगम के द्वारा उनकी लगातार जो है सफाई की जाती है, बट कई बार देखने में आता है कि कुछ लोग उसमें लापरवाही बरतते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जाके एक थोड़ा सा नगर निगम और शहर की छवि को कहीं ना कहीं थोड़ा सा धक्का लगता है। उस दिशा में हम आम नागरिकों को हमने काफ़ी जागरूक किया है और अब उन चीजों में काफी हद तक हैबिट्स में सुधार हुआ है। दूसरा बड़ा पार्ट है हमारे जो येलो स्पॉट, रेड स्पॉट और ब्लैक स्पॉट, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि येलो स्पॉट हमारे वो स्पॉट होते हैं जो सामान्यतः लोग यूरिनल वगैरह करते हैं और उसके बाद वहां पर जो येलो स्पॉट जो है क्रिएट हो जाते हैं, तो वो उनको हम लोग लगातार रिमूव कर रहे हैं। लोगों को इस बात के लिए जो है समझाइश दी जा रही है कि जो यूरिनल बने हुए हैं या जो टॉयलेट्स बने हैं या सामुदायिक शौचालय बने हैं उनका उपयोग करें, खुले में जो है यूरिनल ना करें। रेड स्पॉट को लेके, चूँकि खासकर सागर में आपने देखा होगा पान खाने की जो है प्रथा काफ़ी है, तो हम इस पे हमने जोर दिया है कि लोग अपने पीक दान रखें। खासकर इसको लेके हमने ऑटो वालों के साथ एक भी MOU हम लोग उन लोगों के साथ करने वाले हैं। पान वालों के पास भी जाके हमने एक इस बात को जो है उनको समझाया है और इसको एक हमने एक नया कॉन्सेप्ट भी लाया है नगर मित्र का। नगर मित्र का मतलब जो सागर की साफ सफाई में जो योगदान देते हैं, तो वो लोग अब इसमें थोड़ा सा बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रहे हैं। ब्लैक स्पॉट ऐसे स्थान थे जो बरसों से जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता था, जहाँ पर सफाई नहीं होती थी और देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, ऐसे सारे स्थानों को लगभग अच्छे खूबसूरत स्पॉट के रूप में सागर नगर निगम के द्वारा जो है डेवलप किया जा रहा है और एक सतत प्रक्रिया है। आगे भी हम इस दिशा में जो है प्रयास करेंगे।
2: श्रोताओं, हमारे नगर में कितने सारे पेड़ पौधे लगे हैं, हमें उनको सुरक्षित रखना है और उनकी देखभाल करनी है, क्योंकि पेड़ पौधों के महत्व को तो आप हम सब पहचानते हैं।

0: ब दिन सागर और भी सुंदर होता चला जा रहा है। इसकी और भी कहानियों को समेटकर हम जल्द ही आपसे फिर मिलने आएंगे अगले अंक में। तब तक इजाजत दीजिए साहिबा को
1: और नासिर को।
0: नम

0: नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से। अपने सागर से जुड़ी कुछ और बातें लेकर आएंगे हम अगले अंक में।
1: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
2: सागर को बनाए अपने सपनों का सागर।
1: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
0: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी। मैं सागर हूँ।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नगर निगम सागर।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। संगीत सरिता में सुनिए भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज में ये गजल। कलाम है कातिल राजस्थानी का और संगीत दिया है भूपिंदर सिंह ने।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम संगीत सरिता में। लीजिए अब सुनिए चंदन दास की आवाज में गजल। कलाम है आमिर का और संगीत दिया है चंदन दास ने।

0: अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में गजल कलाम है निदा फाजली का, संगीत दिया है जगजीत सिंह ने, लेकिन पहले सुन लेते हैं संदेश।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ, संपर्क करें 07582472000।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस समझ गया।
3: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ, संपर्क करें 07582472000।

कार्यक्रम संगीत सरिता अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक मतों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फलता में मतदान में धांधली होने के बाद इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। यहाँ इस महीने की 21 तारीख को मतदान कराया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान

0: मन घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 वर्षीय ट्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। ट्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के साथ 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की चेतावनी दी है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और खेलों में मुंबई में IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने तीसरे ओवर में 2 विकेट पर 18 रन बना लिए हैं। वहीं कोलकाता में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग। ये फिल्म रिश्ता कागज का लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राजेश रोशन का संगीत।

0: उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ों में आप सुन रहे थे सावन कुमार टाक का लिखा ये गाना, संगीत राजेश रोशन का था, फिल्म थी कहो ना प्यार है। इसी के साथ आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: तराने

एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार गीत। सदाबहार गीत में सुनिए यसुदास की आवाज में यह गीत। फिल्म का नाम है चित्त चोर। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी के महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
2: एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम सदाबहार गीत में। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत, फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है जतिन ललित ने।

आकाशवाणी सागर से आप सुन रहे हैं सदा बहार गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है लव स्टोरी। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है आर डी वर्मन ने।

इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार गीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग में सुनिए केशव सुल्लेरे के स्वर में ये लोकगीत।

जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
2: एक बार फिर आपका स्वागत है बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में। लीजिए अब सुनिए विष्णु पटेरिया के स्वर में ये हास्य लोकगीत।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा कि श्री डोभाल और श्री रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के प्रति फिर प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर है। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। फलता सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री त्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को

सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े रहें। कोलकाता में IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसी बीच मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

8 बजे से कार्यक्रम डगर विकास की विषय जल जीवन मिशन, ये कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:15 पर। चित्रपट संगीत सुनिएगा आज रात्रि 8:30 पर। समाचार संध्या का समय होगा रात्रि 8:45। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत सुनेगा रात्रि 9 बजे से। रात्रि 9:30 पर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले होंगे। आज रात्रि 11 बजे से होंगे हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार सुनिएगा रात्रि 11:05 पर। कल सुबह 6 बजे से सुनिएगा हिंदी में समाचार। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुनिएगा कल सुबह 6:05 पर। श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ होगा कल सुबह 6:30 पर। भूले बिसरे गीतों का आनंद लीजिए कल सुबह 6:40 पर। संस्कृत में समाचार होंगे सुबह 6:55 पर। हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह सुनिएगा 7 बजे से। कृषि संकेत का समय होगा सुबह 7:05। कल सुबह 7:10 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार। मन चाहे गीत सुनिएगा कल सुबह 7:20 पर। संगीत सरिता सुनिएगा सुबह 7:45। लोक संगीत सुनिएगा कल सुबह 8:15 पर। कार्यक्रम बिंदिया सुनिएगा कल सुबह 8:30 पर। सुबह 9 बजे से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले होंगे। कल सुबह 9:50 पर समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार। जिले की चिट्ठी सुनिएगा कल सुबह 10 बजे से। सुबह 10:05 पर समय होगा कार्यक्रम फोन करें लोक गीत सुने। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा 11 बजे से। विविध भारती सेवा के कार्यक्रम सुनिएगा कल सुबह 11:30 पर। आकाशवाणी मध्य प्रदेश सुनिएगा कल दोपहर 2 बजे से। दोपहर 2:15 पर समय होगा दोपहर समाचारों का। विविध भारती के कार्यक्रम सुनिएगा कल दोपहर 2:30 पर। कार्यक्रम युववाणी सुनिएगा कल शाम 5:02 पर। संगीत सरिता का समय होगा शाम 5:30। कल शाम 6 बजे से सुनेगा विविध भारती सेवा के कार्यक्रम सदाबहार की सुनेगा कल शाम 6:30 पर। लोक रंग का समय होगा शाम 6:45। हिंदी में समाचार सुनेगा 7 बजे से। प्रादेशिक समाचार सुनेगा कल शाम 7:10 पर। लोक रंग का समय होगा शाम 7:20। कार्यक्रम ग्राम सभा सुनेगा कल शाम 7:30। चित्रपट संगीत सुनेगा कल रात्रि 8 बजे से। संगीत सरिता सुनेगा रात्रि 8:20 पर। मन चाहे गीत सुनेगा रात्रि 9 बजे से। और रात्रि 9:30 पर समय होगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का। हिंदी में समाचार होंगे कल रात्रि 11 बजे और 11:05 पर समय होगा अंग्रेजी में समाचार होगा। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: हाँ, फीस की टेंशन।
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
3: वो कहाँ है
4: मिठाई?
5: आरबीआई कहता है
6: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
9: दिमाग चार्ज कर अपना।
10: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
9: देखा
8: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
10: अब क्या करोगे?
8: फ्री वाईफाई है ना?
9: बुद्धू सुधर जा।
10: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
8: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
10: आरबीआई कहता है
6: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर कल उज्जैन में कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भोपाल की त्रिशा शर्मा मृत्यु मामले में आज दिल्ली एम्स टीम ने किया दोबारा पोस्टमार्टम। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, अधिकांश शहरों का तापमान 45 डिग्री के आसपास। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एयर और यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि IIT मद्रास का विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेगा और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता और सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेगा। यह दल समग्र IT अवसंरचना की मजबूती, लॉगिन प्रमाणीकरण, उपयोगकर्ता पहुंच प्रणाली, भुगतान गेटवे की सटीकता और सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में सहायता करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के रूप में विशेष रूप से है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर 25 और 26 मई को उज्जैन में शिप्रा तट पर आयोजित परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्रद्धा, संस्कृति और जल संरक्षण के संदेश से जुड़े विविध आयोजन किए जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर 25 मई को प्रदेश भर में वहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रभात फेरिया, नदी एवं जलाशय परिक्रमा, साइकिल रैली, चुनरी अर्पण, पूजन तथा जल और नदियों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएगी। वहीं भारत भवन भोपाल में सदानीरा का आयोजन 27 मई से 2 जून तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत ग्राम खेरवा टोला जिला उमरिया में बाघ के हमले में एक महिला की मृत्यु और कुछ नागरिकों के घायल होने पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हमले में मृतक के परिजन को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। घायलों को निशुल्क उपचार और आवश्यक मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में आपका स्वागत है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार ने मेडिकल टीम से अनुरोध किया था कि वे एक बहुविषयक फॉरेंसिक, पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल दृष्टिकोण अपनाएं और उनकी उन चिंताओं की स्वतंत्र रूप से जांच करें। गौरतलब है कि 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर पंजीकृत अभ्यर्थियों का ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए परीक्षा प्रतिदिन 4 शिफ्टों में होगी। सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा के लिए भोपाल में केंद्र ION डिजिटल जोन, प्रेस्टीज, श्री जयराम एजुकेशन सोसाइटी, कोकता बाईपास, रायसेन रोड और ION डिजिटल जोन, RGPM सनखेड़ी, दानिशकुंज, कोलार रोड पर स्थित है। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को 11 मई को अधिसूचित किया गया था और यह इसी वर्ष जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। अगले 4 दिनों तक लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं से राहत मिलने की संभावना नहीं है। कल से शुरू हो रहे नौतपा के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं शहडोल जिले में झुलसा देने वाली गर्मी का असर जल स्रोतों पर भी दिखने लगा है। जिले का सबसे बड़ा बाण सागर बांध 56% तक खाली हो चुका है। छोटे बांधों की स्थिति और भी चिंताजनक है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से जारी है। उपवन संरक्षक अनादि बुधुलिया ने बताया कि अब तक कई क्षेत्रों में लक्ष्य का 50% से अधिक संग्रहण पूरा हो चुका है। नर्मदापुरम जिले में जनजाति कार्य विभाग द्वारा सबसे पहले सबसे दूर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत दूरस्थ जनजाति ग्रामों तक पहुंचकर आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग में सुनिए चंद्रभूषण पाठक के स्वर में ये लोकगीत।

0: साथियों नमस्कार। सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्धन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और कुल आदि ग्रामवासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000। जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
2: एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम लोकरंग में। लीजिए अब सुनिए हरि नारायण अवस्थी के स्वर में ये लोकगीत।

0: बुंदेली समाचार।
1: और अब लीजिए प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। हेलो ग्राम सभा कार्यक्रम में सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा चौरे। भैया बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस समय खेतों में सही प्रबंधन बेहद जरूरी हो जाता है। पानी की बचत, फसलों की सुरक्षा, पशुपालन, सब्जियों की खेती, कीट एवं रोग नियंत्रण और आगामी खरीफ फसलों की तैयारी, ये सभी विषय किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। और इसीलिए हमारे आज के हेलोग्राम सभा का विषय हमने रखा है ग्रीष्म ऋतु के समसामयिक कृषि कार्य। और आज आपसे बातचीत करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर के नेमा जी, जो कि प्रमुख वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं। आपको बता दें, डॉक्टर साहब फसल और खेती के बहुत जानकार हैं और इस क्षेत्र में काफी लंबा अनुभव रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार किसान भाइयों, और राधा जी नमस्कार।
1: नमस्कार सर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम होता है, जहां टेलीफोन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे विषय विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ग्रीष्म ऋतु के समसामयिक कृषि कार्यों से संबंधित आपके जो भी सवाल हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। डॉक्टर के नेमा जी हमारे साथ हैं। वैसे तो हमारे किसान भाई हमारा टेलीफोन नंबर जानते ही हैं, लेकिन जो नए किसान श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, उन्हें बता दें कि भोपाल का एसटीडी कोड है 0755 और हमारे फोन नंबर हैं 2669902 और 2660903। इन नंबरों पर आप हमें फोन करें और आज के विशेषज्ञ से सीधे बातचीत करें। और हमें संकेत मिल रहा है कि हमारे आज के पहले कॉलर फोन लाइन पर हैं, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा में।
3: जी नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते जी, अपना नाम बताएं, स्थान भी बताएं, कहां से बोल रहे हैं आप?
3: मैं जगत सिंह चौहान, ग्राम पिपलिया वराई, तहसील बेगौन, जिला रायसेन से बोल रहा हूं मैडम जी।
1: रायसेन से बोल रहे हैं जगत जी, बहुत बहुत स्वागत है हेलो ग्राम सभा में। जी बताएं, क्या सवाल है आपका?
3: जी ये बोल रहा हूँ, जब अभी मक्का बोना, जैसे मक्का बोना है
1: जी।
3: तो कौन सा बीज है कि जो 2-3 महीना में आ जावे अच्छो?
2: मक्का आप बोना चाहते हैं, देखिए ये इसमें आप लिख लीजिए अर्ली JM8 और JM12
3: जी,
2: और एक किस्म है भीमा
3: जी,
2: एक है जवाहर हाइब्रिड 2
3: जी।
2: ये इसमें से कोई भी किस्म आप चुन सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी सावधानी आपको ये रखना पड़ेगी कि आप अगर अकेले बोने वाले हैं, आसपास कोई किसान नहीं है, तो थोड़ा सा चौकीदारी की व्यवस्था आपको करना पड़ेगी, क्योंकि जानवरों से नुकसान इसमें ज़्यादा होता है। और इसमें एक इल्ली जो है, फाल वर्म कहलाता है, वो एक इल्ली का आक्रमण जो है इसमें देखा गया है, तो कृपया उसका ध्यान रखें कि उस इल्ली के नियंत्रण के लिए आप तैयार रहें।
3: जी सर।
2: जी
3: जी,
1: तो जगत जी को अपने सवाल का
3: मेरे,
1: जी जी कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप?
3: जी विपिन भाई साहब जी हैं, जहां भी हुए मुझे कॉल कर ले, मेरा नाम।
1: चलिए, लगता है कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में कनेक्शन हट गया अपना।

0: कि हल्की जमीन है कि मोटे की जमीन है। मोटे की जमीन से मतलब है कि काली अगर जमीन है तो उसके हिसाब से उनको अपनी जमीन का ध्यान रखना चाहिए। हल्की जमीन है तो उसमें 7 से 10 दिन के अंतराल पर उनको सिंचाई करना है, और अगर काली मिट्टी है तो उसमें थोड़ा सा अंतराल ज़्यादा हो सकता है, लेकिन समय समय पर उनको खेत का भ्रमण जरूर करना पड़ेगा, तभी उनको मालूम चलेगा कि हमें सिंचाई की आवश्यकता कब है।
1: बिल्कुल, यानी कि जमीन पर निर्भर करता है, हल्की पर अलग और काली मिट्टी पर अलग। जी तो हमारे साथ सर एक और कॉलर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, एक और कॉलर हैं, उनसे मिलते हैं, जानते हैं। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना।
2: हेलो
0: हेलो
1: हेलो जी, नाम बताएं अपना, कहां से बोल रहे हैं आप? आवाज मिल रही है आपको, आप सुन पा रहे हैं हमें?
2: हेलो
1: जी, नाम बताएं अपना।
2: संजू अहरवार, कुतरिया करकट, जिला सागर से बोल रहे दीदी जी।
1: जी संजू भैया, राम राम।
2: राम राम दीदी जी, राधा दीदी जी, नमस्ते।
1: नमस्ते भैया, नमस्ते, क्या हाल चाल?
2: ठीक है, अब गर्मी पड़ रही, सब आगे की तैयारी की उड़दा की किसान जान में कौन
0: थोड़ा जोर से बोल रहे
1: जी। संजू जी थोड़ा सा तेज बोलेंगे, आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी।
2: उड़दे की किस्म जानना चाहते हैं, उड़दा लगाना है,
1: उड़दा लगाना चाह रहे हैं, उड़द लगाना चाह रहे
0: हैं, उड़द लगाना चाह रहे हैं। हाँ तो ये तो बरसात बरसात के लिए है, उड़द आप लगा सकते हैं, लेकिन उसकी जो किस्म है उसका सही चुनाव आपको करना पड़ेगा। उसके लिए PU 31 करके एक किस्म है, प्रताप उड़द है, JU 2 है, JU 3 है, ये अपने यहाँ की वैरायटी है, JU 2 JU 3। तो और इंदिरा उड़द 1 करके है, ठीक है, और एक किस्म और नोट कर लीजिए, TJU 130। ये हमारे क्षेत्रों के लिए ये उड़द की किस्में बहुत अच्छी हैं। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे
1: संजू जी, कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप?
3: हाँ सोयाबीन की भी जानकारी, सोयाबीन भी लगाना है,
1: सोयाबीन भी लगाना चाह रहे हैं।
0: हाँ आपकी जो मिट्टी मिट्टी की हालत है वो कैसी है?
3: मिट्टी हालत ठीक है, ना ही पानी भरता है ना ही कुछ
0: नहीं, हल्की हल्की कम गहरी है, मध्यम दोमट है के गहरी काली है?
3: गहरी काली है सर,
0: गहरी काली है। तो उसके लिए PK 416, PUSA 16, PUSA 20 और JS 80 21। ये JS 80 21 जो है ये बहुत अच्छी वैरायटी है, इसका आप चयन कर सकते हैं, ठीक है।
3: महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी, जी। संजू भैया आपका भी ग्राम सभा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे कॉलर बहुत जागरूक हैं और अपने सजीव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से अपनी फसलों से जुड़ी जानकारी लगातार ले रहे हैं। और सर हम अभी बात कर रहे थे कि की सिंचाई की बात कर रहे थे, अब हम जानना चाहेंगे कि अगर हम खेत को लंबे समय तक नमी बनाए रखना चाहते हैं कि नमी बनी रहे, तो इसके लिए हमारे जो किसान भाई हैं वो कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं?
0: लंबे समय के लिए अगर हमें नमी की आवश्यकता है खेत में बनाए रखना है
1: जी,
0: तो सबसे बढ़िया साधन तो ये है कि पलवार जो है पलवार करते हैं तो उससे छाया बनी रहती है, तो उससे क्या है कि वाष्पीकरण जो है हमारे खेत से नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जमीन की तैयारी करके पाटा लगा के रख दिया जाए
1: जी,
0: तो उससे भी जमीन से जो है जल जल्दी उड़ेगा नहीं
1: जी,
0: सूर्य की गर्मी क्योंकि बहुत ज्यादा पड़ती है
1: जी,
0: तो ये मतलब उपाय है। तीसरी बात ये है कि जैविक खाद का और वर्मी कंपोस्ट का हमारे किसान भाइयों को लगातार उपयोग अगर वो करते हैं तो जल धारण क्षमता जो है वो हमारी भूमि की बढ़ जाती है, और हर 3 साल में अगर गहरी जुताई का जो है प्रयास करते हैं हमारे किसान भाई तो उससे भी जल धारण क्षमता हमारी जमीन की ज़्यादा हो सकती है।
1: बिल्कुल, तो किसान भाइयों याद रखें आपकी आपको पलवार लगाना है, पाटा का ध्यान रखना है, उसके साथ साथ सबसे जरूरी चीज सर ने कही कि जैविक खेती करना है और वर्मी कंपोस्ट का आपको इस्तेमाल करना है, और हर 3 साल में गहरी जुताई जरूर करना है अपने खेत की। बिल्कुल, और हमें संकेत मिल रहा है, एक और कॉलर हमारे साथ है। जी नमस्कार।
4: हेलो मैडम, नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?

0: अशोक पटेल बात कर रहे हैं, श्याम नगर बेगमगंज में।
1: अशोक पटेल कहाँ से बोल रहे हैं अशोक जी आप?
0: श्याम नगर बेगमगंज मैडम।
1: बेगमगंज से?
0: जी मैडम।
1: जी जी बताएं अशोक जी, क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप सर से?
0: मैडम सर से ये पूछना चाह रहे हैं, अभी गर्मियों में जो बेल वर्गीय फसलें लगी हैं मैम, तो इनमें रस चूसक कीड़ों की बहुत समस्या आ रही, तो इसके लिए जैविक निदान में क्या रहेगा सबसे अच्छा
1: जी?
0: और जो अपने जैसे विभाग पर वो चीज में मिल जाए।
1: जी जी
0: जी
1: सर अशोक जी पूछना चाह रहे हैं कि गर्मियों में ये जो कीट लग रहे हैं तो इनकी बहुत समस्या देखने को मिल रही है, तो इसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं?
2: गर्मियों में जो कीट लगते हैं तो उसमें कौन सा इल्ली लग रही है क्या, रस चूसक कीट?
1: अशोक जी थोड़ा सा आप आवाज आपकी बहुत, हाँ आवाज बढ़ा के थोड़ा सा बोले, बहुत धीमी आवाज आ रही है आपकी।
0: अब अच्छी आ रही मैम।
1: थोड़ा नेटवर्क में है आप?
0: जी मैम नेटवर्क में तो है हम।
1: जी हाँ बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं
2: आप? आपके यहाँ ये बताइए कि रस चूसक कीड़े हैं, सफेद मक्खी वगैरह है कि इल्ली वगैरह है, क्या है?
0: सर वो क्या है कि पत्ते ऑटोमेटिक कुकड़ जाते हैं ऊपर से,
2: पत्ते मतलब पत्ते सिकुड़ रहे हैं। ठीक है पत्ते सिकुड़ रहे हैं तो उसके लिए देखिए ऐसा है कि इमीडा क्लोप्रिड कल के एक रसायन आता है।
0: जी सर।
2: क्योंकि चूंकि कीट आ चुका है तो उसके लिए अपन नीम तेल का इस्तेमाल अभी नहीं कर सकते हैं, अगर शुरुआती अवस्था होती तो उसमें नीम तेल का अपन छिड़काव कर सकते थे, लेकिन अब जो है आपको इमीडा क्लोप्रिड नाम की जो इंसेक्टिसाइड है उसका जो है प्रयोग आप कर लीजिए तो उसमें आपका जो है फायदा हो जाएगा। जी
0: अच्छा
1: जी, तो अशोक जी आपको आपकी जानकारी मिल गई होगी। और सर अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर सब्जियों पे अगर हम आते हैं तो कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनकी खेती किसानों के लिए अधिक लाभकारी हो सकती है इस मौसम को देखते हुए?
2: इस मौसम में वैसे हमारे किसान भाइयों ने बेलदार सब्जियां जो है अपने खेतों में लगा रखी हैं, और कहीं कहीं पर क्या बोलते हैं बरबटी जो है, भिंडी है, इसका भी हमारे किसान भाई जो है उस चूंकि इसमें पैसा ज्यादा मिलता है तो ये अभी हमारे किसान भाइयों ने फसलें लगा ली हैं।
1: जी
2: जी। और इसमें ही जैसे करेला वगैरह है, कद्दू है, लौकी है, गिलकी है, तोरई है, तो ये सब्जियां जो है हमारे किसान भाइयों ने अभी लगा रखी है।
1: तो ये जो सब्जियां लगा रखी हैं इनकी वो देखभाल कैसे करें कि ज्यादा इनको मुनाफा मिले?
2: इसमें देखभाल उनको ये करना है, सबसे बड़ी समस्या जो है कीड़ों की
1: आती है,
2: जैसे अभी इनने बताया था कि सिकुड़ रही है,
1: सिकुड़ रही है जी,
2: तो इसी तरह से कई किस्म के कीट जो होते हैं वो हमारी इन सब्जियों को नुकसान पहुंचाते हैं। और एक फल मक्खी होती है तो फल मक्खी के कारण वो अपने अंडे जो देती है फलों में तो उससे टेढ़ी मेढ़े जो है फल हो जाते हैं और बाजार मूल्य जो है कम मिल पाता है हमारे किसान भाइयों को, तो उसके नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई इमीडा क्लोप्रिड नाम का जो है वो दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि उसके लिए जगह जगह अपन एक घोल बनाते हैं, गुड़ डालते हैं और थायमिथाक्सम करके एक इंसेक्टिसाइड है वो डालते हैं, तो इसका घोल बना के और उसमें थोड़ा सा अपन डाल सकते हैं सिरका।
1: जी जी।
2: उसके कटोरे जगह जगह सब्जियों के खेत में अपन टांग देते हैं तो ये जो फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी है, ये उसमें आके डूब के मर जाती है तो उससे उनका नियंत्रण हो जाता है।
1: जी जी जी बिल्कुल सर। तो आपने जैसा कि बताया कि बेलदार सब्जियां भी लगी हुई हैं उनका हमको निराकरण करने के लिए आपने जो दवाइयां बताई हैं उनका घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी नमस्कार।
3: जी मैं आपका बहुत पुराना श्रोता सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
1: राजेश नेमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो ग्राम सभा में।
3: जी और मेरा सवाल ये है
1: जी
3: कि ग्रीष्मकालीन समय में अक्सर खेतों में आग वगैरह लग जाती है।
1: आग लग तो जाती है खेतों में जी। हाँ।
3: खाली
1: जी पूरा करें क्या
3: पड़ता है क्या
1: जी पूरा फिर से दोहराए अपना सवाल।
3: मेरा सवाल ये है कि ग्रीष्मकालीन समय में खेतों में खाली खेतों में भी कई बार आग लग जाती है।
1: खाली खेतों में भी कई बार आग लग जाती है। हाँ।
3: तो क्या इसके

0: उर्वरा शक्ति पर कुछ प्रभाव पड़ता है, मिट्टी खराब होती क्या उससे?
1: राजेश नेमा जी जानना चाह रहे हैं सर कि जो ये खाली खेतों में भी कई बार आग लग जाती है, तो क्या हमारे उर्वरा शक्ति पे तब भी असर पड़ता है?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, आग लगती तो नहीं है, ये किसान जो है आग जानबूझ के लगा देते हैं कि ताकि नरवाई के कारण उनको कोई दिक्कत नहीं हो। आग नहीं लगाना चाहिए, और अगर आग लग जाती है तो उससे हमारी 10-15 वर्षों की मेहनत पे पानी फिर जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे मिट्टी से अपन ईंट बनाते हैं, भट्टे में रख देते हैं, तो उस ईंट के चूरे में क्या कोई चीज उत्पन्न की जा सकती है? नहीं की जा सकती। जल धारण क्षमता भी अगर पानी डालेंगे तो पूरा निकल के उसमें से निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है मिट्टी की भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। दूसरी बात यह है कि जल उसमें रुकता नहीं है। वो तीसरी बात यह है कि जितने भी जैविक जो कीट रहते हैं उसमें जीवाणु रहते हैं, ये जीवाणु जो है मर जाते हैं, और इस तरह हमारे उत्पादन के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो 15-20 सालों की जो मेहनत है, आपने मिट्टी को बनाया है, देसी खाद दिया है, वर्मी कंपोस्ट दिया है और फर्टिलाइजर दिया है, तो वो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है, उसका बड़ा विपरीत प्रभाव हमारे जो भूमि है उसके ऊपर पड़ता है।
1: जी जी, तो यानी कि किसान भाइयों को अपनी खुद की मेहनत पे पानी नहीं फेरना है, नरवाई नहीं जलाना है।
2: इसके लिए तो आजकल सरकार ने प्रतिबंध भी लगा दिया है, और किसानों को उसमें जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, और सैटेलाइट के माध्यम से आपके खेत का फोटो सरकार के पास पहुंच जाता है। तो इस चक्कर में नहीं रहे किसान के, कोई देख नहीं रहा है। हाँ, पूरा देख रहे हैं, और किसानों को पिछले साल सजा भी हो चुकी है और जुर्माना भी हो चुका है।
1: बिल्कुल, और हम तो ये कहेंगे कि किसानों को जुर्माने, ये सब तो बात की बात है, आप खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं, आप अपने खेतों
2: अपना नुकसान,
1: उर्वरा शक्ति खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर लाइन पर है।
2: हाँ
1: जी, नमस्कार।
3: नमस्कार महोदय, मैं ग्राम परसमा जिला मुरैना से अभिलाष सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
1: सर नाम अपना दोहराए प्लीज।
3: हरिविलास सिंह तोमर
1: जी। हरिविलास जी, स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद
1: जी, बताएं क्या सवाल है आपका।
3: मेरा सवाल विशेषज्ञ महोदय से है कि चूंकि हरी खाद का प्रयोग भी जैविक विधि में ही आता है, तो मैं जानना चाहता हूँ हरी खाद के प्रयोग के लिए कौन कौन सी फसलें बो दी जाए।
1: हरी खाद के प्रयोग के लिए कौन कौन सी फसलें बोई जाए, ये पूछना चाह रहे हैं आप?
3: जी
1: जी,
2: हरी खाद के लिए वैसे तो जो मूंग उड़द है इसको भी आप बो सकते हैं, जैसे ही उसके फूल आने लगते हैं तो उसको अपन बखर चला के मिट्टी में मिला देते हैं, और नहीं तो ढेंचा और सनई जो है इसका भी अपन बोनी करके और उसको भी मिट्टी में मिला देते हैं।
3: सनई और ढेंचा, इसकी समय कब है, कब बोने का बीज अगर तैयारी करें खेत की?
1: समय जानना चाह रहे हैं, सही समय कौन सा होगा बोने का, तैयारी करने का?
2: हाँ, उसके लिए आप अभी अभी चाहें तो अभी बोनी कर सकते हैं, अगर आपके पास में पानी की मात्रा है सही तो आप अभी उसके कर लीजिए, क्योंकि अपने यहाँ पर जो है 16 से 20 जून के बीच में पानी आने का समय रहता है।
3: जी
1: तो हरिविलास जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर के नेमा जी, अब आते हैं ग्रीष्म ऋतु के समसामयिक कृषि कार्यों पे। कौन कौन से वो कार्य हैं जो हमारे किसान भाइयों को शुरू कर देने चाहिए, आवश्यक तौर पर शुरू कर देने चाहिए?
2: जैसे ही अपनी फसल कटती है तो सबसे पहला तो अपन को उपाय ये करना है कि मिट्टी की जांच वो करवा लें, ताकि खरीफ में आपको खाद वगैरह जो है फर्टिलाइजर कितनी अपनी फसलों में देना है तो उससे ये तय हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ग्रीष्म ऋतु में जो जुताई, गहरी जुताई करते हैं मिट्टी पलटने वाले हल से, वो जरूर हर 3 साल में हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए।
1: सर बीच में आपको रोकना चाहेंगे, हम अपनी बात जारी रखेंगे। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना।
4: हेलो
1: हेलो, नमस्कार, नाम बताएं अपना।
4: अरे दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते,
4: हम भागचंद साहू जी बोल रहे हैं, गोकुल ग्राम परसों, तहसील मालसोन, जिला सागर।
1: भरत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सजीव फोन इन कार्यक्रम में, बताएं क्या सवाल है आपका।
4: दीदी हम ये पूछना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में

0: कमी उड़द की जैसे कमी बहुत देखने में आ रही है, तो ऐसी कौन सी वैरायटी है जो कि अपन वो हम किसान भाई लगा सकते हैं, अच्छी किस्म का बीज हो?
1: उड़द की सबसे अच्छी किस्म के बारे में आप जानना चाह रहे हैं?
0: हाँ बिल्कुल, यही जानना चाहते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब आपको नमस्कार कर रहे हैं।
2: भैया नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। और आपका प्रश्न जो है ये, आप पेन कागज लेके बैठे हो तो इंदिरा उड़द एक,
0: अच्छा अच्छा
2: ठीक है, JU 2 और JU 3, JU 2 और JU 3, इंदिरा उड़द एक और TU 31 हाँ, और TJU 130 एक प्रताप उड़द भी अच्छी किस्म है, तो ये हमारे प्रदेश के लिए ये अच्छी किस्में हैं, तो अपने प्रदेश के हिसाब से ही मैंने आपको ये किस्में बताई हैं, तो
0: बिल्कुल
2: इनमें से कोई भी आप उपलब्ध हो उसको लगाइए।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब
1: जी
2: जी,
1: तो भरत भैया को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब जैसे अभी अपन
2: बोल रहे हैं,
1: कुछ और पूछना चाह रहे हैं भरत भैया आप?
0: नहीं, भागचंद्र साहू जी।
1: अच्छा भागचंद्र साहू जी, जी माफ कीजिएगा, भागचंद्र बहुत माफ कीजिएगा जी। डॉक्टर साहब अभी हम क्योंकि बीज चयन की बात कर रहे थे, तो इस समय किसानों को किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो बीज का चयन कर रहे हैं?
2: इस समय सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो किस्म आप 8-10 साल से लगा रहे हैं उसको पहली दफा में, मतलब ये है कि उसको आप बदल दीजिए, उसके जगह जो अच्छी किस्म है उसका चयन करें। दूसरी चीज ये है कि एक ही फसल पे ना जाएं, एक ही फसल नहीं लेना है, 2-3 फसलें लेना है। अगर आपकी मजबूरी है कि एक ही फसल लेना है तो उस फसल की 2-3 किस्मों का चयन करें, जैसे सोयाबीन बोने वाले हैं तो उसकी 2-3 किस्में लीजिए, उड़द है तो उड़द की 2-3 किस्में लीजिए, ऐसा मूंग है उसकी 2-3 किस्में, अरहर है उसकी 2-3 किस्में लीजिए, मतलब एक किस्म के ऊपर निर्भर नहीं रहें, क्योंकि अगर कोई विशेष समस्या आती, भारी समस्या आती है तो नुकसान ज़्यादा हो जाता है।
1: जी जी जी,
2: तो ये हमारे किसान भाई जरूर ध्यान रखें।
1: बिल्कुल, और हमारे श्रोता लगातार हमें कॉल कर रहे हैं, एक और कॉलर फोन लाइन पर है। जी नमस्कार।
3: नमस्कार दीदी।
1: नमस्कार भैया, नाम बताएं।
3: गुड्डू चौबे बोल रहा, बमहरी ढूंढा जिला सागर से।
1: गुड्डू जी, जी गुड्डू जी क्या हाल चाल?
3: हाँ बढ़िया दीदी।
1: हाँ भैया, क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप सर से?
3: सोयाबीन चाहने हैं, कम दिनों में आ जाए जो अच्छी पैदावार, तो कौन सा सोयाबीन ले मैं?
1: गुड्डू भैया पूछना चाह रहे हैं सोयाबीन की कौन सी वो किस्म लें जो कम समय में जल्दी से तैयार हो जाए।
2: हाँ, शीघ्र पकने वाली आपको किस्म चाहिए है, तो शीघ्र पकने वाली आपको किस्म हम बता दे रहे हैं कि ये 85 से 98 दिन की अवधि की आपको बता रहे हैं। JS 71-5
3: जी,
2: JS 335 ये तो पुरानी वैरायटी हो गई है, इसको मत लगाइए। JS 90-41 JS 93-05 और एक इंदौर की किस्म है NRC 7 और JS 95-60। ये किस्में जो है ये कम दिन की है, 85 से 98 दिन में ये पक्के तैयार हो जाती हैं, और इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से लगाएंगे तो आपको फायदा होगा। इसमें 2-3 किस्में ऐसी भी हैं कि अगर पानी 1-2 दिन रुका भी रहता है तो उससे अपनी फसल को नुकसान नहीं होगा।
1: बिल्कुल, तो किसान भाइयों जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा सजीव इन फोन इन कार्यक्रम है, जहां आप टेलीफोन के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे विषय विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं, और हमारा जो आज का विषय है वो है ग्रीष्म ऋतु के समसामयिक कृषि कार्य। तो अगर आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो हमारे विशेषज्ञ KK नेमा जी हमारे साथ हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। हमारे किसान भाई हमारे टेलीफोन नंबर जानते ही हैं, लेकिन जो भी किसान श्रोता जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि भोपाल का एसटीडी कोड है 0755 और हमारे फोन नंबर है

0: 2660902 और 2660903। और हमें संकेत मिल रहा है एक और फोन लाइन पर, एक कॉलर हमारे साथ हैं। जी नमस्कार।
1: जी मैं उमा शंकर पटेल बोल रहा हूँ, पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से।
0: उमा शंकर जी पिपरिया से। जी बताएं क्या सवाल है आपका।
1: मैम मुझे तिली की किस्में जानना है सर से, कि जो जल्दी भी आ जाए और अच्छे से भी मिल जाए फसल हमें।
0: जी उमा शंकर जी, तिली की किस्में, तिल की किस्में जानना चाह रहे हैं जो जल्दी से आ जाए।
2: तिल की किस्म भैया पेन कागज है
1: जी।
2: हाँ लिखिए आप, TKG 21।
1: मैं लिख रहा हूँ।
2: TKG 22
1: जी।
2: JT 7 JT और कंचन 28 और कंचन 32
1: जी।
2: ये जो तीन चार किस्में मैंने बताई हैं, TKG 21 TKG 22 TKG 7 कंचन नंबर 28 और कंचन नंबर 32, इन किस्मों में से कोई भी आप तिल की किस्म प्राप्त करें और उसको लगाइए। और सागर, सागर अगर जा सकते हैं तो सागर कृषि विज्ञान केंद्र से भी आपको तिल की अच्छी किस्म मिल सकती है।
1: जी सर एक प्रश्न और था, वो हाँ तो भटा लगाए हैं सर, उसमें सफेद सफेद कीड़े लग रहे हैं उसके लिए।
2: हाँ भटा लगाए हैं, सफेद कीड़े लग रहे हैं तो उसमें अब चूंकि थोड़ी सी देर तो आपको हो गई है, लेकिन फिर भी आप उसमें थायामिथाक्सम
1: जी जी
2: है ना, थायामिथाक्सम का स्प्रे करिए या इमीडा क्लोप्रिड
1: जी जी,
2: इमीडा क्लोप्रिड का इस्तेमाल करिए। 100 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के मान से लगता है ये, इसका आप स्प्रे करिए। और चूंकि ये गर्मी का मौसम है तो ध्यान ये रखें कि या तो सुबह के शाम स्प्रे किया जाए या शाम के टाइम स्प्रे किया जाए, दोपहर में जहाँ तक बने दोपहर में स्प्रे अपन को छिड़काव या भुरकाव नहीं करना है।
1: जी सर।
2: जी,
1: जी सर धन्यवाद। ओके सर।
0: जी डॉक्टर साहब, ग्रीष्म ऋतु की फसल से संबंधित कोई सलाह या जानकारी जो हमसे छूट गई हो और किसान भाइयों के लिए जानना जरूरी हो।
2: हमारे किसान भाई सतत निगरानी करते रहें खेतों की, और सबसे पहले अगर कोई छिड़काव करना है तो नीम तेल का जो है छिड़काव हमारे किसान भाई करें।
0: जी जी, तो किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि नीम तेल का छिड़काव वो कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे साथ है डॉक्टर के नेमा जी हैं, जिनको जिन्होंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको भी मिल गए हैं। तो किसान साथियों याद रखिए, सही जानकारी और समय पर किए गए कृषि कार्य ही फसल को मजबूत बनाते हैं और हमें अच्छी पैदावार दिलाते हैं, इसलिए हमें अभी से कदम उठाने होंगे, है ना। और उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी है आपके खेत और फसलों दोनों के लिए बेहद काम आई होगी, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ सवाल जवाब का नहीं है, किसानों की अपनी ग्राम सभा है जहां हर सवाल और हर आवाज अपने आप में मायने रखती है। सर जाते जाते एक छोटा सा सवाल और आपसे पूछना हाँ। चाहेंगे कि ये जो भी महत्वपूर्ण कीट और रोग, क्योंकि अक्सर हमारे कॉलर पूछ रहे हैं, तो इनसे बचाव करने के लिए क्या एक छोटा सा कोई आप टिप्स देना चाहें, कोई सलाह देना चाहें।
2: इससे देखिए बचाव करने का तो ये है कि स्वस्थ बीज का अगर और स्वस्थ खेती अगर करते हैं हमारे किसान भाई तो उनको कीट और रोग जो है वो मतलब परेशान नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया कि ग्रीष्म ऋतु की हर 3 साल में जुताई करना है, तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का। और दूसरा ये है कि शुरुआती अवस्था में जैविक कीटनाशक जो हमारे किसान भाई तैयार करते हैं उनका प्रयोग किया जाए, NPB का प्रयोग करें, BT का प्रयोग करें, बेसिलस थुरिंजियंसिस का, ये जैविक कंट्रोल इनसे होता है, रासायनिक पे पहले नहीं जाना है।
0: जी जी, तो किसान साथियों आपको जैविक तरीकों को अपनाना है, डॉक्टर साहब का कहने का मतलब ये है। तो धन्यवाद सभी श्रोताओं का जिन्होंने हमें फोन किया या करने की कोशिश कर रहे थे। आभार डॉक्टर के नेमा जी आपका भी, आप यहाँ आए और इतना अमूल्य समय हमें दिया, किसानों को आपने इतना अपना समय दिया और उनके सभी सवालों के जवाब आपने दिए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों का, आप सब लोगों का भी नमस्कार और धन्यवाद।
0: बिल्कुल किसान भाइयों, ये था हमारा आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, जिसमें हमने विषय रखा था ग्रीष्म ऋतु के समसामयिक कृषि कार्य। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ थे डॉक्टर के नेमा जी। कार्यक्रम का संयोजन किया था चंद्रशेखर।

शिखर शर्मा जी ने कर्तव्यस्थ अधिकारी थी बबीता भंडारी और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया था राजू वासे और रेणु टोपो ने उद्घोष के रूप में हमारे साथ थे विजयकांत नायक जी और सूत्रधार के रूप में आपके साथ थी मैं यानी राधा चौरे आप दें आ गया नमस्कार राम राम।

0: अभी ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
3: नमस्कार, थैंक यू सोनू जी।
2: रोहिणी जी, ये जो अधिनियम आया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, ये अब क्रियान्वित होने जा रहा है 1 जुलाई से। सो इसके बारे में बहुत उत्साह है। आप हमें अगर बता सकें कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी उसकी जगह इसको लाया गया है, इसे एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है रोजगार आजीविका और ढांचे में, तो आप हमें बताएं कि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रावधान कौन से हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावी कह सकते हैं कि जिनके कारण हमें सुधार देखने को मिलेंगे हमारे पूरे रूरल इकोनॉमी में, रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में।
3: सोनू जी, आपने बिल्कुल सही कहा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे बहुत ही प्यार से विकसित भारत जी राम जी नाम से जाना जा रहा है, यह अधिनियम 11 मई को भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है और 1 जुलाई से इस अधिनियम का कार्यान्वयन होने जा रहा है। यह अधिनियम भारत के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और ग्रामीण रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में यह एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि इस गारंटी फ्रेमवर्क जो होता है रूरल एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें पहले एमजी नरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हमारे श्रमिक भाई बहनों को मिलता था जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अब वह गारंटी जो है वह 100 से बढ़कर जो है 125 होने जा रही है। सो 125 दिन का रोजगार हर एक वित्तीय वर्ष में इन ग्रामीण परिवारों को देने की गारंटी जो है, यह एक वैधानिक गारंटी है जो इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। दूसरे प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हम कहते हैं कि गारंटी है, गारंटी का मतलब ही यह होता है कि अगर गारंटी फुलफिल नहीं होती तो कुछ दिया जाता है। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर 15 दिन के अंदर किसी श्रमिक को काम मांगने पर अगर काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। अगर कोई श्रमिक भाई हमारा या बहन काम करती है तो 15 दिन के अंदर अंदर उनके बैंक के खाते में सीधे मजदूरी पहुंच जाएगी और यह वेजेस का जो रेट होगा, मतलब मजदूरी दर जो होगा, वह भी पहले एमजी नरेगा के अंदर जितनी मजदूरी मिलती थी उससे ज्यादा होने की संभावना है। कुछ ही दिनों में भारत सरकार मजदूरी दर भी नोटिफाई करने वाली है, तो बेहतर मजदूरी मिलेगी और बेहतर गारंटी मिलेगी। अब मैं आती हूँ दूसरे प्रावधान की ओर, जो कि लोगों के श्रम को एक सम्मान देगा और गांवों के विकास को जो है चालना देगा। आपको पता है कि एक्ट के नाम में ही विकसित भारत है, तो काम ऐसे होंगे जिससे कि पंचायतों का विकास हो। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स की बात इस एक्ट में कही गई है। कोई भी ऐसे अनप्रोडक्टिव काम नहीं लिए जाएंगे, ऐसे काम लिए जाएंगे जिससे कि ग्रामीण एरिया का विकास हो और ऐसे काम लिए जाएंगे जिसमें आजीविका के भी कई अवसर उससे पैदा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गाँव में कोई फूड प्रोसेसिंग का अगर कोई प्लांट लिया जाता है तो उससे और भी हमारे किसान भाई बहनों को आगे जाके आजीविका के अवसर उसे उपलब्ध हो सकते हैं। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां हैं, लखपति दीदियां बन रही है, उसमें से करोड़ों दीदियां, तो उनको भी आजीविका के कई साधन बनाने के लिए विकसित भारत जी राम जी के अंदर जो है वह काम लिए जा सकेंगे। 4 प्रकार के काम है मेनली। सबसे पहला, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं जल है तो कल है, वाटर सिक्योरिटी के काम जो है हमारे गाँव में बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि हमारा किसान भाई भी वहीं पर बसता है, तो जल सुरक्षा के काम हमारा कामों का पहला क्षेत्र है। दूसरे

0: काम जो होंगे वो कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे गांव में अगर बुनियादी ढांचा रहेगा, बुनियादी अवसंरचना रहेगी, तभी हमारे किसान भाइयों को या फिर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इकोनॉमी को भी चालना मिल सकती है। इसलिए कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यह एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। लाइवलीहुड रिलेटेड जिसकी मैंने हल्की से अभी बात की कि आजीविका मूलक गतिविधियां कई सारी करने के लिए विकसित भारत जी राम जी के एक्ट में प्रावधान है। और चौथा जो है, आपने देखा होगा सोनू जी, कई बार ये हो रहा है, आजकल ज्यादा हो रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जिसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं फ्रिक्वेंटली जो है फेस करना पड़ रहा है देश को, तो एक्सट्रीम वेदर से निपटने के लिए भी जो काम जरूरी है वह काम भी इसमें जो है लिए जाएंगे। तो एक तरीके से मैं अगर इसे सम अप करना चाहूंगी तो विकसित भारत जी राम जी में श्रम भी है, उसका सम्मान भी है, और उससे विकास की भी जो है एक इन्विसाज किया गया है। तो ऑल इन ऑल भारत देश के ग्रामीण एरिया के लिए विकसित भारत जी राम जी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विकसित भारत बनने की ओर जाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ।
1: जी बिल्कुल, ही आउटकम ओरिएंटेड है ये स्कीम, और ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा आप बता रही है चार प्रायोरिटी एरियाज में इससे विकसित होगा। एक और चीज जो है कि सेंटर ने नोटिफाई किया है ड्राफ्ट रूल्स, और उसमें उन्होंने पब्लिक फीडबैक मांगा है 30 जून तक की, कोई भी सुझाव हो या कोई आपत्ति हो, तो ये भी एक बहुत ही डेमोक्रेटिक अप्रोच है सरकार का जिसमें वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं।
0: बिल्कुल, जैसा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमें बॉटम अप मतलब गांव के लोगों को क्या चाहिए यह गांव के लोगों से हमें पता चलना चाहिए। इसलिए जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स भी बनेंगे वो भी ग्राम सभा ही बनाएगी। तो जो आपने नियमों के बारे में पूछा कि अभी हमने 22 तारीख को 8 ऐसे नियम जो बने हैं विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत, उन नियमों को हमने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, वाइडर कंसल्टेशन के लिए जो है पब्लिक डोमेन में डाला है, और हमारे भारत देश के ई गैजेट में भी वो पब्लिक हो चुके हैं। इसके माध्यम से हम फीडबैक मांगना चाह रहे हैं लोगों से, प्रैक्टिशनर से, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, जो श्रमिक इसमें काम कर रहे हैं उन भाई बहनों से, जो हमारे ग्राम रोजगार सहायक जो है जो कि यह योजना चलाने वाले हैं उनसे। तो ये एक वाइडर, या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमारे एकेडमिशियंस हो, या फिर जितना भी वाइडर पब्लिक कंसल्टेशन इसमें हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका है टू इंश्योर कि ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो बहुत ही स्मूथली हो जाए, ताकि हमें अच्छे कंस्ट्रक्टिव सुधार इसमें मिल जाएं। तो 30 दिन तक यह रूल्स जो है पब्लिक डोमेन में रहेंगे, और हम आपके इस कार्यक्रम के द्वारा मैं सभी से अपील करूंगी कि इन रूल्स के ऊपर आपके जो भी सुझाव होंगे वो हमने वेबसाइट का एड्रेस भी दिया है और कई सारे बाकी मोड्स भी है जिससे कि आप हम तक पहुंच सकते हैं और आपके सुझाव हमें दे सकते हैं, ताकि यह जो विकसित भारत जी राम जी है वो अपने एक होलिस्टिक रूप में लोगों के लिए बेहतर बने, यही हमारी इससे अपेक्षा है।
1: रोहिणी जी, बेहतर व्यवस्था की ओर सुचारू रूप से बदलाव हो, और सभी जो मौजूदा कार्य चल रहे हैं वो विधिवत पूरे हो, रोजगार सृजन ट्रांजिशन पीरियड जो है खासकर जून में वो निरंतर बना रहे, इस पर भी बल दिया जा रहा है, किस तरह की वित्तीय व्यवस्था या अन्य व्यवस्था की गई है?
0: सोनू जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है जिसे रिफॉर्म हम कहते हैं, और यह एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, तो इस बदलाव के टाइम, इस रिफॉर्म के टाइम यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इसमें जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हितधारक है जो कि हमारे श्रमिक भाई बहन है, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। जब ये ट्रांजिशन होता है, एमजी नरेगा यह स्कीम चल रही है पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से, तो इन 20 साल का यह जो एक चल रहा है उसको जब हम एक नए तंत्र में ट्रांजिशन करते हैं, तो यह भारत सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी तरह की दिक्कत या किसी भी तरह की छोटे से जिसे फ्रिक्शन पॉइंट कहते हैं, ये बिल्कुल भी हमारे श्रमिक भाई बहनों को उनका सामना ना करना पड़े। इसीलिए एक सुचारू और एक निर्बाध तरीके का एक ट्रांजिशन का प्लान भारत सरकार ने बनाया है, जिससे कि हमें इंश्योर कर रहे हैं कि जो श्रमिक आज, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगी कि 30 जून तक एमजी नरेगा रहेगा, 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा, तो मैं एक एग्जांपल ये देना चाहूंगी कि जो हमारा श्रमिक भाई अगर 30 तारीख को एक कार्य पर जा रहा है और वह कार्य अपूर्ण है, वो आगे भी चलता रहेगा, तो वह श्रमिक दूसरे दिन भी 1 जुलाई को भी जब विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा, तब भी बिना किसी दिक्कत के एमजी नरेगा का वह जो उसका जॉब कार्ड अभी उसके पास है उसी का सत्यापन हमने ऑल रखा है, तो उसी जॉब कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हुए वह आगे भी कुछ दिनों तक विकसित भारत जी राम जी में निर्बाध तरीके से काम पा सकेगा। यह हमने केवल इसीलिए किया है पीपल सेंट्रिक जो अप्रोच है प्रधानमंत्री जी का भी, सिटीजन सेंट्रिक, ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग की जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो जबकि ये ट्रांजिशन लाए अंडर विकसित भारत जी राम जी. बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों का ट्रांजिशन जो है वो भी स्मूथली मैनेज करने की कोशिश है, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट है कि श्रमिक भाई को इस ट्रांजिशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो. इसीलिए यह अपूर्ण काम भी जो है वो नए फ्रेमवर्क में माइग्रेट करके हम उसे जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को जो है बिल्कुल सुचारू रूप से निर्बाध तरीके से एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूअसली मिलती रहे, रोजगार कंटिन्यूअसली मिलता रहे,
1: और जो लंबित देनदारियां हैं उनका भी निपटारा सुव्यवस्थित तरीके से हो जाए.
0: बिल्कुल सही बात कही. यह भी एक ट्रांजिशन का इम्पोर्टेंट पहलू है कि एमजी नरेगा में राज्यों की कुछ देनदारियां होती है जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. यह ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने पिछले दशक में 10-12 साल में जो है 8-10 लाख करोड़ का खर्चा जो है एमजी नरेगा पर किया है, और कोविड में भी 1,11,000 करोड़ से ऊपर की बहुत बड़ी धनराशि भारत सरकार ने राज्यों को और श्रमिकों के खाते में पहुंचाई है. तो यह कमिटमेंट भारत सरकार की इसमें भी बनी रहेगी कि एमजी नरेगा में जितनी देनदारियां हैं उनका भी सुचारू रूप से जो है सेटलमेंट किया जाएगा. और इस वर्ष विकसित भारत जीराम जी में अगर आप देखें सोनू जी, तो 95,692 करोड़ का एक बड़ा वित्तीय प्रावधान जो है विकसित भारत जीराम जी के लिए भारत सरकार ने किया है. तो इस 95,692 करोड़, दैट इज द बजट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलॉटेड. तो इस धनराशि का उपयोग भी जो है लोगों को 125 दिन के एनहांस गारंटी देने के लिए भी किया जाएगा.
1: जैसा आप कह रही थी कि किसानों को, रूरल इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव है. एक जो पीक एग्रीकल्चर सीजन जो 60 दिन विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत काम नहीं होगा, इस एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बता सकती हूँ.
0: सोनू जी, जब मैंने कहा कि हमारे किसान भाई ग्रामीण एरिया में ही बसते हैं और वहाँ वहीं के श्रमिकों को हम ये रोजगार 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, तब यह देखना बहुत जरूरी था कि क्या इस एनहांस गारंटी की वजह से हमारे जो किसान भाई हैं, ऑलमोस्ट 86% जो हमारे किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं, जिन्हें स्मॉल एंड मार्जिन

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहित

0: Giome.
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: नमस्कार, थैंक यू सोनू जी।
1: रोहिणी जी, ये जो अधिनियम आया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, ये अब क्रियान्वित होने जा रहा है 1 जुलाई से, सो इसके बारे में बहुत उत्साह है। आप हमें अगर बता सकें कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी उसकी जगह इसको लाया गया है, इसे एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है रोजगार आजीविका और ढांचे में, तो आप हमें बताएं कि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रावधान कौन से हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावी कह सकते हैं कि जिनके कारण हमें सुधार देखने को मिलेंगे हमारे पूरे रूरल इकोनॉमी में, रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में।
2: सोनू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे बहुत ही प्यार से विकसित भारत जी राम जी नाम से जाना जा रहा है, यह अधिनियम 11 मई को भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है।
0: सुर्खियों में
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब आप सुनेंगे कार्यक्रम डगर विकास की। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।
4: डगर विकास की, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम जल जीवन मिशन के कार्यों पर केंद्रित है। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

0: नमस्कार, आज हम उस अंचल की यात्रा पर हैं, जहां रेवा की लहरें संस्कृति की कहानी सुनाती है। इंदौर की आधुनिकता से लेकर उज्जैन के महाकाल लोक तक और बुरहानपुर के ऐतिहासिक दर्रों से लेकर खंडवा के किशोरदा की यादों तक आज एक ही चर्चा है। वो चर्चा है जल जीवन मिशन की, एक ऐसा मिशन जिसने मालवा की पथरीली जमीन और निमाड़ की तपती धरती पर ठंडे पानी की फुहार पहुंचा दी। ये केवल पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों में विश्वास का रंग भरने की कहानी है।
1: हर घर में नल लग गई है, साफ सुथरा पानी है, मशीन लगी है, उसके बाद दिक्कत खत्म हो गई।
2: अब ये यहाँ सुविधा होने से बहुत आनंद है गाँव में।
3: अच्छा हो गया नहीं तो?
4: अभी तो अच्छी व्यवस्था होगी, अब नल चालू हो गए हैं ना।
3: अभी नल लगी है तो अच्छा सुकेज करिए सरकार ने।
5: जो टंकी से नल का पानी हो गया ना, बढ़िया हो गया,
3: नल लगी गया।
0: जब हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो गौरव से सीना तब चौड़ा हो जाता है जब बुरहानपुर का नाम आता है। जुलाई सन 2022 में बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। यहाँ के 254 गांवों के सभी 1,01,000 से अधिक ग्रामीण घरों में अब नल से शुद्ध जल पहुँच रहा है। मलय श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, PHED मध्य प्रदेश।
6: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देश का सर्वप्रथम हर घर जल प्रमाणित होने का पुरस्कार दिया गया है। उसके लिए ना सिर्फ बुरहानपुर, पूरा मध्य प्रदेश काफ़ी प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि हर घर जल प्रमाणित होना अर्थात बुरहानपुर जिले के पूरे 1,00,000 से अधिक ग्रामीण घरों में हमने शुद्ध जल टोटी के माध्यम से उपलब्ध कराया है। और ये पूरे प्रदेश के लिए इसलिए भी बहुत ही शुभ होगा और लोगों को मोटिवेट करेगा, क्योंकि ये हमारे राज्य के अन्य जिलों को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करेगा कि आज बुरहानपुर को ये सम्मान मिला है, कल मध्य प्रदेश के अन्य जिलों को भी ये सम्मान प्राप्त होगा।
0: बुरहानपुर के तत्कालीन कलेक्टर प्रवीण सिंह,
7: जब हमने ये काम शुरू किया था तब हम लोग लगभग 37,000 कनेक्शन बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में थे, और आज हमने जो जितनी भी पात्र जनसंख्या है जो JJM के मापदंड को पूरा करती है, लगभग 1,00,000 कनेक्शन ऐसे लोगों को दिए हैं। और बुरहानपुर की सबसे विशेषता ये है कि इन जल जीवन मिशन की योजनाओं को चलाने की जिम्मेदारी भी हमने ग्राम पंचायतों में महिला स्वयं सहायता समूह को दी है। इससे न केवल लोगों को पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि ये जल जीवन मिशन एक तरह से ग्राम पंचायतों में महिला सशक्तिकरण का जरिया भी बनेगा। और जल जीवन मिशन के साथ में हमने एक और महत्वपूर्ण भारत सरकार की स्कीम को जोड़ा है, वो है जल शक्ति मिशन। क्योंकि जल जीवन मिशन जो है वो जल शक्ति मिशन के बिना अधूरा है। जल शक्ति मिशन के तहत हम लोग जल जीवन मिशन के स्रोतों के चारों तरफ कुंडी, बावड़ियाँ, नए जल संरचनाओं का निर्माण, तालाब, पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, चेक डैम, स्टॉप डैम, गली प्लग और बहुत से जल संरक्षण की संस्थाओं पर काम कर रहे हैं। तो उससे ये जो जल शक्ति के तहत जो संस्थाएं बन रही है उससे जल जीवन मिशन का स्रोत में पानी बना रहेगा, और जब जल जीवन मिशन के स्रोत में पानी बना रहेगा तो उस पानी से हम गाँव में 12 महीने लोगों को पानी पिला पाएंगे। तो मेरा बुरहानपुर की जनता से अनुरोध रहेगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है, पूरे देश में इसका नाम हुआ है, तो हम लोग पानी को सहज के रखें, धरती के अंदर पानी को वापस जाने दें, क्योंकि जितना पानी धरती माता में होगा उतना ही हम पानी वापस ले आ पाएंगे। तो हम लोग बहुत ही समझदारी से काम लेंगे और अच्छे से जल जीवन मिशन और जल शक्ति मिशन में काम करेंगे।
0: लेकिन ये सफर आसान नहीं था। धार और अलीराजपुर की पहाड़ियों पर जहाँ रास्ता बनाना भी एक चुनौती थी, वहाँ पानी चढ़ाना नामुमकिन लगता था। यहाँ काम आए हमारे इंजीनियर्स और सोलर तकनीक। शुद्ध जल का अर्थ है बीमारियों से मुक्ति। आंकड़े बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में नल से जल पहुंचा है वहां जल जनित रोगों में 40% तक की कमी आई है। डॉक्टर योगेश शर्मा, जिला महामारी विशेषज्ञ, खंडवा।
8: पानी केवल जीवन नहीं बल्कि हर माँ की चिंता, हर बच्चे की मुस्कान और हर परिवार की सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी जरूरत है। एक समय था जब गाँव की पगडंडियों पर सिर पर मटके उठाए महिलाएं दूर दूर तक पानी लेने जाती थी। कई बार वही पानी बीमारियों का कारण बन जाता था। लेकिन अब घर घर पहुंचा स्वच्छ जल केवल प्यास नहीं बुझा रहा बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नई उम्मीद भी जगा रहा है। स्वस्थ जीवन की पहली आवश्यकता है स्वच्छ जल। वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कुओं, तालाबों और हैंडपंपों पर निर्भर रहे, जहां कई बार दूषित पानी के कारण डायरिया, टाइफाइड, पीलिया और हैजा जैसी बीमारियां फैलती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी को नल से जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, अर्थात हर घर जल। अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल योजना ने इस स्थिति में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है। घर घर नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचने का सबसे बड़ा लाभ लोगों के स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है। साफ पानी मिलने से जल जनित रोगों में कमी आई है, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। पहले महिलाओं और बच्चियों को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों खर्च होते थे। अब यह समय शिक्षा, रोजगार और परिवार की देखभाल में उपयोगी हो रहा है। श्रोताओं, स्वच्छ जल केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज की नींव है। जब पानी साफ होता है तो भोजन स्वच्छ बनता है, हाथ धोने और साफ सफाई की आदतें बढ़ती हैं तथा संक्रमण का खतरा कम होता है। मिशन की शुरुआत के बाद से ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में खंडवा जिले में जल जनित बीमारियां जैसे एक्यूट डायरियल डिसीज, टाइफाइड और कॉलरा या हैजा केसों की संख्या में बहुत बड़ी कमी दर्ज की गई है। एक्यूट डायरियल डिसीज के आउटब्रेक 2019 के पहले काफ़ी संख्या में हुआ करते थे, जिसमें कि लगभग 60% की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ में जो जॉइंडिस और टाइफाइड बीमारियां हैं, इनके आउटब्रेक वर्ष 2019 के बाद से जिले में एक भी आउटब्रेक रिपोर्ट नहीं किया गया है। और पिछले 2 वर्षों में कॉलरा या हैजा बीमारी का भी एक भी आउटब्रेक जिले में रिपोर्टेड नहीं है। इस प्रकार स्वच्छ जल उपलब्ध होने से जल जनित बीमारियों की संख्या और उनके आउटब्रेक में बड़ी कमी देखी गई है। नल से जल योजना सामाजिक और आर्थिक विकास का भी माध्यम बन रही है। स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम पानी की बर्बादी

0: आबादी रोकें, जल स्रोतों को स्वच्छ रखें और इस योजना को सफल बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। स्वच्छ पानी की हर बूंद अब केवल सुविधा नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य का संदेश बन चुकी है। जब घर के आंगन में नल से साफ जल बहता है तब बच्चों की मुस्कान, माताओं की राहत और परिवार की खुशहाली भी साथ बहती है। आइए जल को सहेजें, स्वच्छता अपनाएं और स्वस्थ भारत के इस सपने को मिलकर साकार करें।
1: जल जीवन मिशन ने महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम दिया है। उज्जैन संभाग में हजारों जल सखियां आज इस मिशन की रीढ़ है।
2: सरकार तरफ से नल जल की योजना आई है तो अपने सभी ग्रामवासियों को सभी को साथ देना है और सभी का साथ चाहिए
3: कि हमारे वार्ड क्रमांक एक में जो हमारे को जल कर वसूलना था उसमें से वार्ड क्रमांक एक के 1200 रुपए आ गए हैं, वार्ड क्रमांक दो में 790 रुपए आ चुके हैं और वार्ड क्रमांक तीन में 2780 रुपए आ गए हैं।
4: सभी को समझाइश दे रहे हैं कि जल कर अपने को जमा करना है जिससे अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। उनकी जो समस्या है उसके विषय में भी जो वो बताते हैं उसके निदान के लिए हम जलकर समिति को अवगत कराते हैं। जलकर समिति और हम साथ में जाकर के पानी के वेस्टेज नहीं जाने दें इसके विषय में भी हम सभी बहनों को भी समझाते हैं, सभी भाइयों को भी समझाते हैं। पानी की बचत करना है, पानी का दुरुपयोग नहीं होने देना है, नल अगर पानी भर जाए तो बंद कर देना है, ऐसी समझाइश भी देते हैं जलकर समिति द्वारा।
5: जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिन भी गाँवों में ये दिक्कत आ रही है, पहले से टंकी है या वाटर सप्लाई है और वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के कारण अगर पानी पीने में समस्या आ रही है, पानी घर घर पहुँचने में समस्या आ रही है, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक नई टंकी का निर्माण करेंगे यहाँ पर।

0: इंदौर और उज्जैन संभाग के हर घर से आती पानी की ये कलकल दरअसल आत्मनिर्भर भारत की धड़कन है। जहां कभी सूखे के कारण पलायन होता था, आज वहां हरियाली और मुस्कान है।
1: पहले हम कुएं से पानी पीते थे, पेट दर्द होने लग जाता था, बीमार होने लगते थे हम। नल जल का शुद्ध पानी पीने लग गए हैं, अब डॉक्टरी खर्च भी हमारा आधा हो गया है।
2: मजदूरी पहले से जवा तो भी नहीं था, पानी में दिन भर हो जाता, माने टाइम बहुत व्यस्त हो जाता पहले। और अब पानी हो गयो तो नल चालू करो, पानी भरियो और मजदूरी भी चले जावा।
3: जब से घर घर नल से जल आ रहा है तब से बहुत ही खुशहाली आ गई है और पूरा परिवार मजदूरी पे जा पाता है और शुद्ध पानी मिल रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है।
0: इस मिशन का लक्ष्य था हर घर जल, जिसे मध्य प्रदेश के इन जिलों ने एक जन आंदोलन बना दिया। पर याद रखिए, ये नल की टोंटी से गिरता पानी केवल एक सुविधा नहीं, एक अमानत है जिसे हमें आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है। प्रशासन ने रास्ता बनाया है, अब उस रास्ते पर जल संरक्षण के साथ चलना हमारा कर्तव्य है। विकास के ये रंग यूं ही खिलते रहे, अमृत की ये धारा यूं ही बहती रहे। आज की इस विशेष कार्यक्रम डगर विकास की में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए सफर पर, तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी और सहजते रहिए जीवन की सबसे अनमोल बूंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय रात के 8:30 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं
1: एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में सुनिए फिल्म दंगल से यह गीत, आवाज जोनिता गांधी की। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

लीजिए आप सुनिए फिल्म गजनी से गीत, आवाज़ है जावेद अली की, गीत लिखा है प्रशून जोशी ने और संगीत दिया है जावेद अली ने।

आकाशवाणी सागर से आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। लीजिए अब सुनिए अभिजीत की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है हासिल। गीत लिखा है इसरार अंसारी ने और संगीत दिया है जतिन ललित ने।

0: भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: We want peace and stability.
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
2: Importer of energy and much of it comes from that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने CPIM के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर

0: 708 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के

अधशव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्रिशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जाँच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए। इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड 102.6 MHz पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। DJ प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। मन चाहे गीत में सुनिए हेमलता और जसपाल की आवाज में। यह गीत फिल्म का नाम है नदिया के पार। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है कोटवा नारायणपुर बाबा बट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, कुमार राय, हैप्पी राय, दोहिवा नेवादा से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय ने। इसी गीत को पसंद किया है ताज मंजिल लखड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पनवार, बेनजीर कौसर साबिक, अलमास बानो, मोइन छोटू, शंकर लाल, वनीता और मोहम्मद हसनीन ने। इसी गीत को सुनना चाहा है बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रीतेश कुमार, राजेश्वरी उत्कर्ष चौहान ने। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।

अगली फरमाइश हमें भेजी है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा ने। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निकहत परवीन अब्बासी, शहनवाज, फरदीन सुहान, अरजान और अबान अब्बासी ने। जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचित, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली और सानवी देशमुख ने इस गीत को पसंद किया है। इसी गीत को सुनना चाहा है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी ने। साहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी मनवर ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म स्वदेश से ये गीत। आवाज़ है उदित नारायण, हरी नारायण और कैलाश खेर की। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है ईआर रहमान ने।

0: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: हेलो माँ, माँ तुम्हारी बहुत याद आती है और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
2: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
1: News on AIR?
2: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
1: अरे वाह माँ, कमाल है। News on AIR।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: एक बार फिर आपका स्वागत है फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम मन चाहे गीत में। अगली फरमाइश हमें भेजी है महाराष्ट्र से माया शिवांश चंद्रकला पोपलघट और देवीदास पोपलघट ने। जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंचोलिया ने। इस गीत को पसंद किया है पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल, शालिनी, तिवांशी, वाणी, आरबी खेड़ा, जीवन से है और इनके सभी परिवारजनों ने। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, जगदीश जोहरी ने। इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है नरवेल महाराष्ट्र से PS नभानकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मोहरेकर ने। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर लता मंगेशकर और SB बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। गीतकार हैं रावेंद्र और संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने।
6: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

अगली फरमाइश हमें भेजी है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरजीत रमेश साहू ने। बिहार से ही डॉक्टर डब्लू अंसारी, सोनम अदिबा, दानिश अंसारी ने। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद

आर्य, परमानंद आर्य ने बक्सर से ही, राज एस डी अंसारी और आसमा अंसारी ने इसी गीत की फरमाइश भेजी है। सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान और इरफान खान ने, दमोह से पीहू, काना, सृष्टि, राम, मोहिनी, पूजा, पवन, गगन, खुशबू और इनके सभी परिवारजनों ने, छत्तीसगढ़ से नसीब मोहम्मद, हबीब और इरफान मोहम्मद ने इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है। जनकपुरी सहरानपुर से जोन रोजी और विलिस ने, तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म तालसी गीत। आवाज़ है अलका और उदित नारायण की, गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत दिया है ER रहमान ने।

इसी के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई, ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों, मजनू सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं, और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। तुम्हें बस तुम्हें साथ लेकर चलना है जीवन की हर राह पर, हर कदम पर, क्योंकि अधूरे हैं तुम्हारे बिना सारे सपने, क्योंकि तुमने रंग भरे हैं जीवन के हर खांचे में। तुम्हारे होने से गीत बन गई है ये जिंदगी, सुर खोले हैं तुमने अपनी मुस्कानों से।

मन की उड़ान धरती और आसमान के परे है। मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से। बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन, तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता रहा सदियों से। सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन का सुकून।

तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते चले जाना।

0: छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये गाना।
1: उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकरा।
0: हम अभी हाजिर हुए।

दुनिया की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए। इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका इंतजार करती है।

दुनिया की जुल्मतों और परेशानियों के बीच चमकता रहे मुस्कान का सूरज, सीने में जब दर्द का तूफान उठे तो भी छलक न पड़े आंखें, होंठों पर पड़ी मुस्कान की चादर छिपा ले सब कुछ, सिर्फ तुम्हें पता हो कि क्या चल रहा है मन के भीतर। दुनिया के लिए मुस्कान हमारा परचम है।

अक्सर जिंदगी में चीजें देर से मिलती हैं या नहीं मिलती, अक्सर नहीं ही मिलती कुछ चीजें दुनिया में। ये कमियां, ये तकलीफें, ये अड़चने जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। कई बार दर्द भी दिल के भीतर फूल खिलाता है।

छाया गीत में आज नक्श लाहिलपुरी के नगमे थे। फिल्मों के नाम फिल्म तुम्हारे लिए, फिल्म

0: और फिल्म आहिस्ता आहिस्ता
1: माना तेरी नजर।
0: आज का चाय गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। विविधा विविधा विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
4: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
3: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
5: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
6: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
7: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
6: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said, government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, that is UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said, the UCC will not infringe upon any tribal rights. The National Testing Agency, that is NTA, today postponed the Common University Entrance Test undergraduate, that is CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid al-Zuha, that is Bakrid holiday, as per the government notification. The agency informed that revised exam dates for affected candidates will be announced soon. NTA also advised candidates to regularly visit its official website for the latest updates. The Central Board of Secondary Education, that is CBSE, today extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12th board examinations by one more day until tomorrow. CBSE said that the decision was taken to provide adequate time to students for submitting requests. The board advised candidates to avail of this extended timeline and submit their applications accordingly. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has given directions to depute a team of professors and technical experts from Indian Institute of Technology, that is IIT Madras and IIT Kanpur, to assist the Central Board of Secondary Education, CBSE, in ensuring a glitch-free re-evaluation process. The decision has been taken in view of the developments and concerns raised by students and parents regarding the CBSE post-result services portal. In Karnataka, 8 members of a family, including 7 women, drowned in the Thatte Hakalu River in Uttara Kannada district today. The mishap occurred when they were collecting freshwater mussels and were swept away by strong currents. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the incident. Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. Chief Minister Siddaramaiah also announced an ex gratia of 5 lakh rupees for the next of kin of each deceased. The India Meteorological Department, that is IMD, has forecast that severe heat wave conditions are likely to persist over central and northwest India for the next 7 days. The weather agency also issued a red alert for severe heat wave conditions over East Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh and Vidarbh for tomorrow. At the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers continued their impressive run, securing 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam's Da Nang today. And that is the end of this news bulletin.
8: FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। हमारा आज का प्रसारण अभी यहीं संपन्न होता है। कल सुबह 5:00 बजकर

0: And that is the end of this news bulletin.
1: FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। हमारा आज का प्रसारण अभी यहीं संपन्न होता है। कल सुबह 5:00 बजकर